मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 सितंबर 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56:38 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज।

0: की प्रगति के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं हो

0: होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गैया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
3: ओ, 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ईश्वर की कृपा और संरक्षण का भाव मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और धैर्य प्रदान करता है, और जब हमें ये अनुभूति होती है कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा का अटल छत्र है, तो जीवन की राह भी

आने वाली कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। इसी विश्वास, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से भरा ये भजन सुंदर सुनते हैं। कुछ क्षण अपने मन को प्रभु की भक्ति में समर्पित करते हैं।

राम नाम का मोती मन के श्रृंगार के समान है। ये पवित्र नाम जीवन में शांति, श्रद्धा और भक्ति का प्रकाश भरता है। जब प्रभु श्री राम का नाम हृदय से लिया जाता है तो मन के सभी विकार दूर होने लगते हैं और भीतर एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है।

भक्ति के संसार में माँ की महिमा का अपना अद्भुत संसार है। जब भक्त सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है तो उनके भीतर विश्वास, साहस और शक्ति का संचार होता है और माँ अपने भक्तों की रक्षा करने वाली, अधर्म तथा दुष्टता का नाश करने वाली शक्ति के रूप में ही पूजित है।

प्रभु श्री राम का नाम केवल एक नाम नहीं बल्कि आस्था, मर्यादा, सत्य और आत्मिक शांति का प्रतीक है। राम के स्मरण मात्र से ही मन में असीम शांति का अनुभव होता है। जिस मन में राम का नाम बस जाता है वो मन संसार में रहते हुए भी शांति पाता है, और जिस हृदय में राम की आस्था जग जाती है वहाँ निराशा भी आशा में बदल जाती है। सुख में राम, दुख में राम, संघर्ष में राम और विश्वास में भी राम। भक्त के लिए तो जीवन की हर धड़कन में प्रभु का नाम समाया है, और आइए महसूस करते हैं उस शांति को जो राम नाम के साथ हमारे भीतर उतरती है।

0: इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर। विचार बिंदु, आज सुनिए राजा राम मोहन राय के विचार।
1: राजा राम मोहन राय का जन्म 12 मई 1772 को बंगाल के राधानगर स्थान में हुआ था। उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया। सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उनके विचार बहुत उदार हो गए थे। उन्होंने सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धर्म की स्थापना की। ये धर्म ब्रह्म समाज नाम से प्रचलित हुआ। इसमें उन्होंने एक ईश्वर की मान्यता पर जोर दिया। किसी भी तरह के अंधविश्वास, जादू टोना या कुप्रथा को इसमें स्थान नहीं था। उपनिषदों को उन्होंने अपने धर्म का आधार बनाया। साथ ही उन्होंने हिंदू समाज में फैली तमाम कुरीतियों को जड़ से मिटा डालने का संकल्प किया था। 5-6 साल की छोटी उम्र में ही उन दिनों बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे। बाल विवाह की इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने जनता का आह्वान किया। जनता से ये अपील की कि वे खुद इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन जनता तो मानो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे उठाने के लिए भारी धमाकों की जरूरत थी। पति के मरने के बाद सती विधवा नारी को उन दिनों जिंदा आग में झोंक दिया जाता था। राममोहन राय ने इस समस्या के हर पहलू का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि इस कुप्रथा को जारी रखने में घर के मुखियाओं का भी पूरा हाथ होता है। पति के मरने के बाद विधवा औरत के भरण पोषण का पूरा भार उन पर आ पड़ता है। इस भार से बच जाने के लिए वे उस कुप्रथा को जारी रखना ही ज्यादा पसंद करते थे। पति की मृत्यु के बाद समाज में विधवा स्त्रियों का घोर अनादर किया जाता है। उनके सिर के बाल कटवा दिए जाते हैं। उन्हें कोई भी गहना पहनने नहीं दिया जाता। सफेद किनारी वाली धोती के अलावा कोई रंगीन कपड़ा वे नहीं पहन सकती। लोग उनकी छाया से छू जाने में भी पाप समझते हैं। राममोहन राय ने इन सब पहलुओं पर ध्यान दिया। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने दो तरह के अभियान चलाए। एक अभियान अंग्रेज सरकार द्वारा कानून बनवाने का और दूसरा जनता में इसके खिलाफ वातावरण तैयार करने का। वे ये जानते थे कि आज का सभ्य और पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बर्बर कुप्रथा का कभी समर्थन नहीं कर सकता था। उनका विश्वास था कि यदि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए और उन्हें अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी दी जाए तो वे भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के कल्याण में अपना योगदान दे सकती हैं। अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए वे प्राचीन भारत की लीलावती, मैत्रेयी आदि विदुषी नारियों का उदाहरण दिया करते। इन नारियों ने अपनी विद्वत्ता से सारे भारतवर्ष का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया था। स्त्रियों को अपने पिता की संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं था। राममोहन राय ने स्त्रियों के सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए उन्हें संपत्ति पाने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया।

0: विधवा विवाह में भी वे कोई दोष न मानते थे। यदि एक पत्नी के मरने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है तो स्त्री ऐसा क्यों नहीं कर सकती? इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए आवश्यक सभी पहलुओं पर ध्यान दिया।
1: अभी आप सुन रहे थे राजा राम मोहन राय के विचार। कार्यक्रम था विचार बिंदु। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुने डॉक्टर केडी जोशी से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत। विषय है मत्स्य पालन का वैज्ञानिक तरीका।
1: किसान भाई खेती किसानी में लगा बाटे ना, खेती किसानी के साथ साथ भाई दुई पैसा आमदनी खातिर और भी काम करत हैं, चाहे वो बाग बागवानी हो, चाहे पशुपालन हो या मत्स्य पालन हो। काफ़ी किसान भाई मत्स्य पालन का भी काम करत हैं। आज जोन बातचीत का विषय बा वो मत्स्य पालन का वैज्ञानिक तरीका के बारे में बा, जे पे बतावे खातिर विशेषज्ञ के रूप में आए बटन श्री केडी जोशी जी। जोशी जी आपका कार्यक्रम में स्वागत बा। एक जानकार मनई होए के नाते हम आपसे जानना चाहब कि हमार किसान भाई अगर मछली पालन करे चाहते हैं तो ओकर वैज्ञानिक तरीका का है, बतावें आप।
2: धन्यवाद, ये बहुत ही सामयिक विषय आज आपने लिया है
1: जी।
2: क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, सारे तालाब सारे झील जलाशय पानी से भरे हुए लबालब भरे हुए हैं
1: जी, जी,
2: तो मछली पालन के लिए मछली के संग्रहण के लिए एक बहुत ही उपयुक्त समय है। जो आपका प्रश्न है कि मछली पालन का वैज्ञानिक तरीका क्या है, इसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। यूं तो हमारे देश में मत्स्य पालन प्राचीन समय से किया एक मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाया गया है और दे रहे हैं, लेकिन जो परंपरागत मत्स्य पालन है वो अपने तरीके से लोग करते थे। अभी उसमें काफी कुछ सुधार हो गए हैं, वैज्ञानिक तरीके उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो उसमें अति सघन से लेके अर्ध सघन तक मत्स्य पालन का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें उसी के अनुसार उत्पादन, अगर हम सघन मत्स्य पालन की तरफ ले जाएंगे तो उत्पादन 10 टन प्रति हेक्टेयर से भी के आसपास उत्पादन होता है। अगर हम उतना सघन नहीं रखते हैं तो उत्पादन की मात्रा कम प्राप्त होती है।
1: तो जो नहीं वैज्ञानिक तरीका भाई, हमें ज़्यादातर उत्पादन पे जोर दिया गया, अच्छी पैदावार हो, मछली अच्छी हो, तो अगर ये सब काम करे चाहतीन किसान भाई तो एक लिए शुरुआत कैसे करे चाहे का करे चाहे, बताएं आप।
2: मछली पालन की शुरुआत करने से पहले जो भी किसान भाई हैं सुनिश्चित कर लें कि उनके पास 3 चीज़ें होना आवश्यक है। एक तो या तो तालाब हो या तालाब बनाने लायक उनके पास जमीन हो, दूसरा पानी की समुचित व्यवस्था हो, और तीसरा बीज कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, इसकी व्यवस्था किसान भाई कर सकें। तो 3 चीज़ों को लेकर हम मत्स्य पालन की तो और आगे बढ़ सकते हैं।
1: तो एक तो बताएं कि आप अगर पहले से तालाब बा, मूल जगह तालाब नहीं है और जमीन बात कौन जगह पे तालाब बनावे तो ज्यादा ठीक रहे।
2: अगर पुराना तालाब है उसको भी मत्स्य पालन के लिए थोड़ा सा उपयुक्त बनाने के लिए उसको का जो तला है बॉटम है उसको बराबर करने की कोशिश करें, जिससे कि जब जाल लगाएगा किसान भाई तो उसको सारी की सारी मछलियां पकड़ने में आ जाए, इसलिए बराबर रखना चाहिए। तालाब का आकार आयताकार होना चाहिए, जैसे गैसलाई का डब्बा जैसे है या टेबल है, उस तरह से आयताकार तालाब बनाए। 3 भाग लंबाई तो 1 भाग चौड़ाई इस तरह से बनाए। अगर तालाब नहीं है और उनके पास खेत है जिसमें नीची जमीन है जिसमें पानी भरता है, इसमें तालाब बनाना चाह रहे हैं, तो कम से कम जो व्यावसायिक मत्स्य पालन के लिए जो तालाब की न्यूनतम आकार है वो कम से कम 1 एकड़ के आसपास होना चाहिए, और भी थोड़ा सा कम हो तो 2000 स्क्वायर मीटर तक का कम से कम तालाब होना चाहिए, तब आप मत्स्य पालन ठीक से कर सकते हैं।
1: 1 एकड़ मतलब आपका कहा है, मतलब 1.5 बीघा होता है।
2: हाँ,
1: अगर 1 बीघा भी रहे तो काम
2: तब भी काम कर सकते हैं, लेकिन जितना आपको उत्पादन ज्यादा लेना है तो उसके लिए बड़ा आकार होना चाहिए। और तालाब बनाने से पहले एक चीज सुनिश्चित करना चाहिए, तालाब की मिट्टी जहां पर आप जिस जमीन में तालाब बनाना चाह रहे हैं उसकी मिट्टी तालाब बनाने के अनुकूल हो, उसमें पानी का रिसाव कम से कम हो।
1: अच्छा।
2: उसके लिए देखना है कि चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। अगर रेतीली मिट्टी होगी तो सारा का सारा पानी रिसाव से चला जाएगा, तो मछली पालन के लिए ये जमीन ज्यादा उपयुक्त नहीं रहेगी।
1: तालाब खुदाई करते समय क्या ध्यान देख चाहे, अगल बगल भी ऊंचाई हो चाहे कौन बातन में ज्यादा ध्यान दे चाहे।
2: तालाब की गहराई जो है करीब 6 से 8 फीट तक गहराई होना चाहिए और आयताकार तालाब बनाना चाहिए, और ये अच्छा रहेगा कि जब तालाब की खुदाई कर रहे हो तो

0: जो ऊपर की मिट्टी है, ऊपर की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है उसको, और उसमें दोमट मिट्टी रहती है, चिकनी मिट्टी रहती है, उसमें पानी रिसाव कम होता है, उस मिट्टी को इकट्ठा एक जगह रख दें और जब तालाब आपका खुद जाए उसके बॉटम में उसके तल पर ये सारी मिट्टी को फैला दें और उसको दबा दें, उससे पानी का रिसाव कम होगा और जो उपजाऊ मिट्टी है वो आपके तालाब को उपलब्ध रहेगी। और उसमें बंधे बनाने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे बरसात में बाढ़ आती है जिसमें बाहर की अवांछित मछलियाँ भी उसमें आ जाती है, पानी ज़्यादा आ जाता है, तो एक मजबूत बंधा उसके चारों तरफ होना चाहिए जिससे आपकी मछली बाहर न जा सके और बाहर का अवांछित पानी आपके तालाब में ना आ सके।
1: यानी ये व्यवस्था करे के चाहे कि बाहर का जो पानी तो आवे लेकिन और भी मछली जो जंगली होती या सोस होती वो न आवे के चाहे।
0: बाढ़ का पानी नहीं आना चाहिए, बाढ़ का पानी आएगा तो सारी मछली आपकी बह के चली जाएगी, इसलिए उसको भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि बाढ़ का पानी तालाब के अंदर ना घुसे।
1: नहीं तो ज़्यादा पानी हो जाए
0: तब भी दिक्कत है। दिक्कत ये भी होगी कि आपके पानी के साथ बाढ़ के साथ मछली का बीज भी आपका बह के चला जाएगा।
1: अब तालाब खुदाई हो जाए तो ओकरे बाद का करे के चाहे?
0: तालाब खुदाई के बाद आप उसको तालाब को मछली के बीज संग्रहित करने के लिए तैयार करें।
1: अच्छा,
0: तालाब में अच्छा ये रहेगा, तालाब खुदाई के बाद उसको कुछ दिन सूखा छोड़ दें, बरसात से पहले तालाब की खुदाई हो जाना निश्चित कर लेना चाहिए, मई जून में बरसात जब सूखे का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तब तालाब की खुदाई कर लें। और तालाब अगर पुराना तालाब है सूखा है तो उसमें एक बार जुताई कर लें, जुताई करने के बाद उसमें 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर डालना चाहिए उसकी उपजाऊपन बढ़ाने के लिए। 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर एक साथ नहीं डालना है, उसको 10 किस्तों में एक साल में 10 किस्त बना के प्रति लगभग हर महीने एक एक टन गोबर की खाद बराबर मात्रा में फैला देना चाहिए। और उसके पश्चात उस पर अगर आपने जब तालाब को छोड़ दिया, पानी का संग्रहण कर लिया या उससे पहले भी करीब 250 से 500 किलोग्राम चूना भी उसमें प्रयोग करना चाहिए। चूना एक तो उसकी पीएच को बढ़ाता है, उसकी क्षारीयता को बढ़ाता है, दूसरा बीमारी से को रोकने का काम करता है। बीज डालने से पहले करना है। अगर आपका तालाब पुराना तालाब है तो उसमें अवांछित मछलियाँ और खरपतवार भी होती है, उसको साफ करना बहुत आवश्यक है। खरपतवार के लिए अच्छा तो ये रहता है, हालांकि कई केमिकल रसायन भी उपलब्ध हैं, लेकिन अच्छा ये रहता है कि आप अपने हाथ के द्वारा या अपना मैनुअली उसको सारे के सारे जाल लगाकर कई बार जाल लगाएं और उसे जितने भी उसमें खरपतवार हैं, घास है तालाब की, उसको साफ करें। और अगर अवांछित मछलियाँ हैं जो कई तरह की मांसाहारी मछलियों का बीज, जैसे सीधरी है, चिलुआ है, पुटिया है, इस तरह की मछलियाँ तालाब में रहती हैं और उसके अतिरिक्त पढ़ीन और इस तरह की कई मांसाहारी मछलियाँ भी रहती हैं, उनको बीज संग्रहण करने से पहले उनको हटाना अति आवश्यक है। इसके लिए पहले तो कई बार आप जाल चलाएं, उसके बाद भी अगर मछलियाँ रह जाती हैं तो उसमें महुआ की खली 25 क्विंटल महुआ की खली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उस पर डाल दें। ये खली एक तो मांसाहारी मछलियों को ख़त्म कर देगा, 6 से 8 घंटे में मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और उसके बाद ये महुआ की खली आपको खाद का काम भी तालाब में करेगा।
1: तो बढ़िया बात है। आप जैसे तालाब अब तैयार होएगा, पानी भी इकट्ठा होएगा, जैसे यह समय में क्या करे चाहे होगा?
0: अभी के जो समय है, अभी मछली का बीज उपलब्ध है, सारी जितनी हैसरियाँ हमारे आसपास हैं उनमें मछली का बीज उपलब्ध है। रोहू, कतला, नैन जो हमारी स्वदेशी प्रजातियाँ हैं, जो जिनकी डिमांड ज़्यादा है, जो अच्छी बढ़ती भी हैं, उनका बीज उपलब्ध है। अभी इस समय तालाब तैयार हो गया है किसान भाइयों का, तो उसमें मछली का बीज संग्रहण करना चाहिए।
1: बीज चयन पर ध्यान दे चाहिए,
0: बीज चयन में ध्यान देना चाहिए, और बीज कितना डालें, क्या डालें, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सबसे अच्छा ये रहता है कि जो शुरुआत कर रहे हैं, अभी पहली बार मछली पालन का काम कर रहे हैं या जो बहुत पहले से काम करते नहीं आ रहे हैं, उनको बहुत जानकारी नहीं है, तो हमारे यहाँ जो बहुतायत में उपलब्ध रहती है और जिनकी डिमांड ज़्यादा है, रोहू, कतला, नैन तीन प्रजातियाँ हैं। जो तालाब है, तालाब के तीन तल होते हैं, निचला, मध्यम और ऊपरी तल, उसमें अलग अलग प्रजातियाँ डालेंगे तो सारा का सारा जो भोजन बन रहा है वो उपयोग में आएगा। तो ऊपर की तरफ के लिए कतला का, जो कतला है ऊपरी तल पर भोजन करती है, रोहू मध्यम क्रम में करती है, और जो उसके तालाब के तल पर है वो नैन भोजन करती है। तो अगर बीज डालने के लिए 40% कतला, 30% रोहू और 30% मृगल या नैन का प्रयोग करना चाहिए।
1: अच्छा, जब मान लो बीज डाल रहे हैं किसान भाई, तो उसके बाद क्या काम करेंगे चाहे उनका?
0: बीज डालने के बाद पहले तो कितना बीज डालें ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है।
1: अगर तालाब के हिसाब से डाली हैं,
0: तालाब के प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का बीज संग्रहण किया जाता है। जो अभी आजकल जो परंपरा पर जो चलन पर है, अगर आप अच्छी तरह से तालाब की देखभाल कर रहे हैं तो प्रति हेक्टेयर 10,000 मछली का बीज संग्रहण आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम 5,000 मत्स्य बीज का संग्रहण प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तालाब में करें।
1: अच्छा, तीनों प्रकार के
0: तीनों न कुल मिला के, कुल मिला के। और आपका

0: अगर आप पहले से मछली पालन कर रहे हैं तो आप तीन और प्रजातियां हैं जो विदेशी प्रजातियां हैं वो भी मछली पालन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प की प्रजातियां हैं।
1: अच्छा,
0: उनको भी
1: अच्छा।
0: हम कुछ कुछ मात्रा में ले सकते, अगर तालाब में घास की मात्रा ज़्यादा है, खरपतवार फिर भी रह रहा है आपकी सफाई करने के बाद, तो उसमें कुछ ग्रास कार्प डालेंगे तो उसको कंट्रोल करेगा, उसको रोकेगा।
2: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई अभी सुन रहे थे डॉक्टर केडी जोशी से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत, मत्स्य पालन का वैज्ञानिक तरीका।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आज इसमें सुनिए डॉक्टर ओम प्रकाश की वार्ता, युवाओं में बढ़ता रक्तचाप, कारण और उपचार।
1: उच्च रक्तचाप जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर मरकरी से ज्यादा या हो तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि उच्च रक्तचाप के लक्षण ज़्यादातर लोगों में नहीं पाए जाते हैं। कुछ लोगों में सुबह उठने पे सर के पिछले भाग में दर्द होना, चक्कर आना, ऐसी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में उच्च रक्तचाप की वजह से जब उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि इस्केमिक हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक हो जाना, इस्केमिक हार्ट डिजीज में जैसे छाती में दर्द हो जाना, सांस फूलना, या सडन हार्ट अटैक का हो जाना, हार्ट फेल्योर जिसमें चलने से सांस फूलना, शरीर में सूजन आ जाना, या स्ट्रोक एकाएक जो है फालिस पर जाना, पक्षाघात हो जाना, किडनी फेल्योर शरीर में सूजन आना, पेशाब का कम होना, या रेटिनोपैथी एकाएक अपने आंखों का विजन चले जाना बिकॉज ऑफ सडन रेटिनल हेमरेज, ऐसी जानलेवा लक्षण जब हमें आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें उच्च रक्तचाप की बीमारी है और हमने समय रहते उसका इलाज नहीं कराया। अतः हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप के माध्यम से ब्लड प्रेशर की जानकारी समय समय पे लेनी चाहिए और यदि हमें हाई ब्लड प्रेशर हो तो उसका इलाज कराना चाहिए। उच्च रक्तचाप यंग लोगों में करीब 12-30% हमारे युवाओं में होता है। उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण जो है सिगरेट स्मोकिंग अथवा धूम्रपान, हाई मेंटल स्ट्रेस अथवा मानसिक तनाव और डिप्रेशन, मोटापा, ज्यादा खाने में नमक लेना अथवा सॉल्टी भोजन, अत्यधिक मात्रा में शराब पीना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, आलसी जीवन शैली और रात्रि में कम सोना, कम 7 घंटे से कम सोना, ये सारे मुख्य कारण यंग लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के हैं। मानसिक तनाव, अवसाद जैसी दिक्कतें आज के बच्चों में अत्यधिक पढ़ाई के प्रेशर और कंपटीशन की तैयारी की वजह से हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे आउटडोर गेम जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या बैडमिंटन जैसे आउटडोर एक्टिविटीज में भाग नहीं लेते हैं। उसके सोने और जगने के टाइम भी बदल गए हैं। युवा रात्रि में पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं। खाने में ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक, ज्यादा फैटी ऑयली भोजन, सॉल्टी फ्राइड ऑयली फूड, फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मिठाइयाँ ज्यादा पसंद करते हैं। इससे उनमें मोटापा और मोटापा जनित बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी के वो शिकार हो जाते हैं। जब वो अपना कैरियर शुरू करते उससे पहले ये बीमार हो जाते हैं। और ये युवा मेंटल स्ट्रेस की वजह से सिगरेट पीना, शराब पीना जैसी बुरी आदतों के शिकार भी हो जाते हैं। अतः इन समस्याओं को हटाने के लिए अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। खाने में हमें स्वस्थ भोजन, सीजनल फल, हरी सब्जियां, सलाद, लो फैट डाइटरी प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर आदि लेना चाहिए और हाई फैट डाइट, सैचुरेटेड फ्राइड राइस, फ्राइड डाइट नहीं लेना चाहिए। खाने में नमक की मात्रा अथवा खाने में बनाने में नमक कम डालें या सलाद, फल आदि में ऊपर से नमक ना डालें, या जिसमें नमक ज्यादा रहता है जैसे पापड़, भुजिया, अचार, उसका सेवन कम से कम करें। प्रतिदिन आधा घंटा आउटडोर एक्टिविटी लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल या बैडमिंटन, साइकिलिंग, तेजी से दौड़ना या योगिंग, स्विमिंग जैसे आउटडोर एक्टिविटी को बढ़ाएं। ऑफिस में जब आप रहते हैं तो लिफ्ट की जगह पे सीढ़ियों से चढ़ें। ऑफिस में जाते समय आप मोटरसाइकिल की जगह साइकिल का यूज करें। घर में छोटे छोटे कामों के लिए या तो पैदल काम करें या साइकिल का यूज करें। अपने वजन को कंट्रोल रखने के लिए खान पान में सतर्कता, अपने आउटडोर एक्टिविटी को बढ़ाएं और वजन के लिए अपना आइडियल वजन जो होता है वो मैंने बताया कि हाइट 5 फीट है, मतलब 150 सेंटीमीटर है, तो हमारा आइडियल वेट 50 kg का होना चाहिए। और इसको मेंटेन करने के लिए आउटडोर एक्टिविटीज, खाने में परहेज, पर्टली मीठी चीजें, घी तेल की चीजों का परहेज रखें और कैलोरी

0: कम लें। अल्कोहल और शराब ना पिएं, उससे ना सिर्फ हार्ट की बीमारी होती है बल्कि लीवर फेल्योर, लीवर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए ध्यान या मेडिटेशन, योगा, आध्यात्मिक चिंतन, मंदिर जाना, सत्संग में जाना, आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाना और अपने जीवन उद्देश्य को जानना, अपने मन के निगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदलने के लिए आध्यात्मिक पुस्तकों का पढ़ना और उसका मनन चिंतन करना, अपने मानसिक विकार जैसे क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और चोरी, बेईमानी, घुसखोरी ऐसे मनोविकारों को दूर करें जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रह पाएं। रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है और इसलिए हमें साल में एक बार अपने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, रीनल फंक्शन टेस्ट, ECG आदि जरूर कराना लेनी चाहिए, जिससे यदि ऐसी कोई चीजें हो तो हमें उसके लिए तुरंत इलाज लें और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ओम प्रकाश की वार्ता, युवाओं में बढ़ता रक्तचाप, कारण और उपचार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुनिएगा 7 बजे से, फिल्मों से भजन 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 7:30 पर और 10:30 पर पंडित रामकृष्ण का क्लेरियोनेट वादन और दोपहर 12:15 पर गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन। कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज का समय होगा 8:45। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:00, 11:30 पर, रात 8:00 और 10:00।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर ममता त्रिपाठी से और शाम 7:45 पर सुजाता सिंह से भजन और गीत सुनिएगा। कार्यक्रम वॉयस ऑफ प्रयागराज 10:05 पर होगा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में 10:30 पर कलाकार होंगे राम कैलाश और आश्रया द्विवेदी। 11:00 सुनिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार से। कार्यक्रम आपकी पसंद 12:30 पर सुनिएगा। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 12:15 गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहने सुनेंगी संस्कृति द्विवेदी की वार्ता, फैशन टेक्नोलॉजी में कैरियर की संभावनाएं और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा 2:30 पर।

शाम 5 बजे नन्हे मुन्नू का कार्यक्रम नन्ही दुनिया और युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी 5:15 पर होगा। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे नंदलाल से लोक भाषा कविता पाठ। हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा प्रोफेसर राजेंद्र कुमार की वार्ता समकालीन कथा साहित्य में लालित्य की कमी 7:31 पर और गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा सुनिएगा 9:30 पर। तो ये थे हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

एक बार राजा ने विंध्याचल के जंगल में हिरणों का शिकार करते हुए एक विशालकाय सुअर को देखा। सुअर के पीछे घोड़ा दौड़ाता राजा प्रताप भानु अत्यंत गहन वन में पहुंच गया। राजा निशाना साध बाण चलाता, किंतु सुअर अपने शरीर को बचा लेता। अंत में वो एक पहाड़ की गुफा में जा छुपा और राजा को हार कर लौटना पड़ा, किंतु वो घोर वन में रास्ता भूल गया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ, स्वर था महेंद्र कपूर का और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। अब आइए सुनते हैं फिल्मों से भजन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म अग्निपथ का ये भजन, आवाज थी अजय की, गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया था अतुल अजय ने। और आइए अब सुनते हैं हरे रामा हरे कृष्ण का ये भजन, आवाज है किशोर कुमार की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। 7:20 होने को हैं। आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में संपन्न हुआ 2 दिवसीय 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 6ठे स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संस्थान में अंग प्रत्यारोपण यूनिट सहित कई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का किया लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की, कहा, मुख्य धारा से छूटे हुए लोगों को दिया जा रहा है समान अवसर। और बारिश तथा बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल संपन्न हो गया। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रिलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 6ठे स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान में तैयार अंग प्रत्यारोपण, विस्तारित क्षमता के इमरजेंसी वार्ड और अन्य कई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने संस्थान में विभिन्न पदों पर चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए विगत 9 वर्षों में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की एक नई श्रृंखला खड़ी हुई है।
2: प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की सुविधा भी है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा भी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है और जहां पे कोई भी सहयोग करने को तैयार नहीं, कोई सुविधा में आच्छादित नहीं हो रहा है लेकिन उसे लगता है कि उसे कुछ सहयोग की आवश्यकता है तो सीएम रिलीफ फंड में हम उसको पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराते हैं, जहां से उसको सहायता मिल जाती है, वो अपना उपचार कहीं भी जाके करवा सकता है, किसी भी इंपैनल्ड हॉस्पिटल में जाके करा सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट के क्षेत्र

0: जिस तेजी के साथ इसने अपनी प्रगति को की है वह अपने आप में ढेर सारे पेशेंट को इसकी सुविधा उपलब्ध करवाएगा।
1: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में मजबूत हुई चिकित्सा सेवाओं ने मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ाने का काम किया है। समारोह को चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सीएम सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर संस्थान के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल आगरा में खटिक समाज द्वारा आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार विकास की मुख्य धारा से छूटे हुए लोगों को समान अवसर देने के लिए काम कर रही है और प्रयास कर रही है कि हर व्यक्ति शिक्षा, रोजगार तथा आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़े।
2: हमारी सरकार अंत्योदय और सर्वोदय की भावना के साथ काम कर रही है। सर्वोदय यानी समाज में सभी लोगों का उत्थान होना चाहिए, यही हम लोगों की कोशिश है। और अंत्योदय यानी समाज के अंतिम पीढ़ी पर जो बैठे हैं उनका भी उदय होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास। राज्यों आज उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, तेजी से विकास आगे बढ़ रहा है और सारे हिंदुस्तान में यह हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास के लिए जाना जा रहा है।
1: सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल सांसद रत्न पुरस्कार 2026 से सम्मानित होने के बाद कल पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। उन्हें यह सम्मान संसद में जनहित के विषयों को प्रभावी ढंग से उठाने, सक्रिय सहभागिता एवं संसदीय कार्यों में योगदान के लिए प्राप्त हुआ है। अपने संसदीय क्षेत्र में हुए भव्य स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि संसद रत्न पुरस्कार 2026 से सम्मानित होना उनके लिए अत्यंत गौरव और भावुकता का क्षण है।
3: ये सांसद रत्न अवार्ड जो मिला है, मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं उनके लिए सिद्धार्थनगर का सम्मान है जिन्होंने मुझे सांसद के रूप में चुना और उन्होंने मुझे सांसद के रूप में भेजा और मैंने अपनी परिश्रम से, परफॉर्मेंस से और पार्टिसिपेशन से सांसद से एक उत्कृष्ट सांसद का मुकाम हासिल किया हूँ। तो ये सम्मान मैं सिद्धार्थनगर के लोगों को समर्पित करता हूँ।
1: प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। एक रिपोर्ट।
4: फरुखाबाद बलिया में गंगा नदी, शाहजहांपुर में रामगंगा और अयोध्या, बाराबंकी व तुर्तीपार में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। कन्नौज जिले में कल प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने बाढ़ प्रभावित कटरी अमीनाबाद क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर ग्रामीणों का हालचाल जाना। इस बीच मौसम विभाग ने आज हमीरपुर, जालौन, कानपुर नगर, झांसी, इटावा, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, कन्नौज, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत तथा आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: आज गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने राज्य की सुख समृद्धि की कामना की है। इसी क्रम में लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर आज भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। आयोजन से जुड़े भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि गोमती के किनारे 25 सितंबर तक चलने वाले गणेश उत्सव का पांडाल कोलकाता से आए करीब 60 कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है।
5: अमेरिका के न्यू जर्सी स्वामी नारायण मंदिर के तर्ज पर हमारा मुख्य द्वार का गेट बनाया गया है। 13,000 स्क्वायर फीट का पंडाल बनाया गया है वातानुकूलित वाटर प्रूफ और 6,000 स्क्वायर फीट का एक हॉल बनाया गया है जहां भक्त लोग बैठेंगे, गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। हमारे अपने 60 आदमी लगेंगे जो कि महिलाएं और पुरुष, जो कि सिक्योरिटी का जिम्मा संभालेंगे। मोदक कानपुर के प्रसिद्ध हलवाइयों के द्वारा बनाया जाएगा जो कि भक्तों को बांटा जाएगा।
1: पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज ही कजरी तीज पर्व भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में संपन्न हुआ 2 दिवसीय 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: कहा, ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के छठे स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संस्थान में अंग प्रत्यारोपण यूनिट सहित कई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का किया लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर की चर्चा, कहा, मुख्य धारा से छूटे हुए लोगों को दिया जा रहा है समान अवसर। और बारिश तथा बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इसमें सुनिए पंडित रामकृष्ण का क्लेरिनेट वादन, राग है भोपाली तोड़ी। तबले पर संगत की है सुदर्शन राम ने। विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित रामकृष्ण का क्लेरोनेट वादन, राग था भोपाली तोड़ी। तबले पर संगत की थी सुदर्शन राम ने, विलंबित रचना एक

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 8 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। धीरज बोमा देवरा ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
1: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम 3 दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता UCC लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में UCC लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा NDA शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
3: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड UCC को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा NDA शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले UCC को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
1: श्री शाह ने कहा कि 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा

0: के अनुच्छेद 370 और 35A को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35A हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
0: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा, एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा चे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाज़ों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है। जो बुद्धि

0: समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
1: गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जयघोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
2: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव

0: आकाशवाणी समाचार मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
2: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से शैफाली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार ना बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका यूके कैनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning.

0: मूर्तियां सजाने और उनकी पूजा करने से शुरू होता है, जिसका इख्तिताम गणेश विसर्जन की तकरीबात के साथ होता है, जब अलग अलग जगहों पर जलसों के दौरान इन मूर्तियों को दरियाओं, झीलों या समंदरों में नजरे आब किया जाता है। इस मौके पर दुआएं की जाती हैं, भजन गाए जाते हैं और गणपति बप्पा मौर्या के नारे लगाए जाते हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र में शानदार तकरीबात मुनक़द की जा रही हैं। पूरे मुंबई में गणेश मंगल सकाफती और समाजी प्रोग्राम मुनक़द कर रहे हैं। पूरे मुंबई में गणेश मंडल सकाफती और समाजी प्रोग्राम मुनक़द कर रहे हैं, जिससे इस त्यौहार के जोश व खरोश में मजीद इजाफा होता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज लाल बख्शा राजा का दौरा करेंगे। लोगों की बड़े पैमाने पर शिरकत के पेश नज़र सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुणे में 10 रोज़ा गणेश उत्सव आज से शुरू हो रहा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में इस त्यौहार को अवामी सतह पर मनाने की बुनियाद रखी थी। तभी से यहाँ गणेश उत्सव समाजी यकजहती और अवामी बेदारी की अलामत बन गया है। इस त्यौहार में 5 तरह के गणपति, कस्बा गणपति, तांबड़ी जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, तुलसी बाग और केसरीवाड़ा बड़ी तवज्जो का मरकज होते हैं। पुणे के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस ने इस मौके पर लोगों के हुजूम की देखभाल, ट्रैफिक के बंदोबस्त, सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। इधर उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जाएगा। खवातीन कजरी तीज भी मनाएंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश में गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रियासत में कई मकामात पर छोटे बड़े पिंडाल सजाए जा रहे हैं। गोमती नदी के किनारे लखनऊ के झूले लाल वाटिका में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ शुरू होने वाला है। उत्सव का पिंडाल कोलकाता के कारीगरों ने तैयार किया है। इस दौरान मशरकी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज त्यौहार भी मनाया जा रहा है। इस दिन शादीशुदा खवातीन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं। इस मौके पर श्रावस्ती जिले में विभूतिनाथ मंदिर में बड़ी तादाद में अकीदतमंद जल अभिषेक करेंगे। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ये त्यौहार लोगों की जिंदगी में इल्म, पुरुमीदी, अमन, खुशी और खुशहाली लेकर आता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने दुआ की कि ये पवित्र त्यौहार हर एक की जिंदगी में नई तवानाई और नया जोश लाए और भगवान गणेश के आशीर्वाद से सभी की कोशिशें कामयाब हों और मुल्क मुसलसल तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आज पूरे मुल्क में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन आइन साज असेंबली ने मुल्क की सरकारी जबान के तौर पर देवनागरी रस्मुलखत में लिखी हिंदी को मंजूरी दी थी। आज हिंदी दुनिया में वसी पैमाने पर बोली जाने वाली जबानों में शामिल है और 52 करोड़ से ज़्यादा लोगों की पहली जबान है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 के प्रोग्राम और छठे ऑल इंडिया राजभाषा सम्मेलन में, जो सरकारी जबान से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस होती है, शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ये 2 रोज़ा ऑल इंडिया सरकारी जबान कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र के शहर नवी मुंबई में मुनाकिद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम वजारत दाखिला का सरकारी जबान का महकमा कर रहा है। कॉन्फ्रेंस का मकसद हिंदी और महाराष्ट्र की मालामाल लसानी, सकाफती और अदबी रिवायात के दरमियान ताल्लुक को उजागर करना है। आज इफ्तिताही जलसे में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति अवार्ड्स पेश करेंगे। इस साल की कॉन्फ्रेंस की खास बात कौमी गीत वंदे मातरम पर मरकूज बातचीत होगी। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़राए आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्र पवार, पार्लियामेंट के बहुत से अरकान, दानिश्वरान, माहिरीन अदब, माहिरीन तालीम और सीनियर अफसरान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज हिंदी दिवस के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि अदब और सहाफत से लेकर सिनेमा, टेलीविजन, तालीम और डिजिटल दुनिया तक हिंदी लाखों अवाम के इजहार का एक ताकतवर वसीला बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हिंदी ने भारत के एतमाद, फख्र और आलमी दर्जे को शिनाख्त अता की है और ये शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो हिंदी को नई नस्ल से वाबस्ता करें और इसमें नई टेक्नोलॉजीज और नए मौक़ों का इजाफा करें। भारत ने कल ओमान के साहिल से कुछ दूर तिजारती बहरी जहाज़ MT गाइया पर किए गए हमले की मजम्मत की है। ओमान में भारतीय सिफारत खाने ने एक बयान में कहा है कि अभी तक भारतीय

0: हमले के 13 अरकान को बचाया गया है और एक लापता भारतीय शहरी की तलाश और बचाव की कोशिशें जारी हैं। सिफारत खाने ने बताया कि वो सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है और तलाश और बचाव के काम में ओमान के हुक्काम के साथ रबते में है। सिफारत खाने ने भारतीय बाशिंदों को बचाने में ओमान के हुक्काम की तरफ से मदद किए जाने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया है। भारत ने खित्ते में अमन बहाल करने के लिए कशीदगी फौरी तौर पर ख़त्म करने और मुज़ाकरात और जमहूरियत कायम करने की अपनी अपील को दोहराया है। आला दर्जे के भारतीय रिकर्व तीरंदाज धीरज बोमा देवरा ने मैक्सिको के साल्टिलो में वर्ल्ड कप फाइनल में सोने का तमगा जीतकर तारीख रकम कर दी है। वो ऐसे पहले भारतीय रिकर्व तीरंदाज बन गए हैं जिन्होंने इस इवेंट में सोने का मेडल हासिल किया है। धीरज ने जापान के नाकानिशी को सनसनीखेज शूट ऑफ में शिकस्त दी। 25 साल के आर्मी तीरंदाज 2023 और 2024 के एडिशन में कोई तमगा हासिल नहीं कर सके थे। उनकी इस जीत से मर्द रिकर्व जुमरे में तमगा जीतने का 16 साल का इंतजार भी खत्म हो गया। जयंत तुलुकदार आखिरी भारतीय रिकर्व तीरंदाज थे जिन्होंने 2010 में एडिनबरा में कांसे का तमगा जीता था। ख्वातीन क्रिकेट में भारत ने कल रात दुबई में खेले गए ख्वातीन T20 एशिया कप के फाइनल मैच में श्रीलंका को 72 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 39 गेंदों पर 68 रन बनाकर नुमाया स्कोर किया जबकि स्मृति मंदाना ने 39 गेंदों में 59 रन का स्कोर किया। श्रीलंका की टीम 184 रन का ताकुब करते हुए 20 ओवर में सिर्फ 111 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को उनकी शानदार कारकर्दगी की वजह से मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय टीम की सभी अरकान को खवातीन की T20 एशिया कप चैंपियनशिप 2026 जीतने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में एक टीम के तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी पेश की और सभी मैच जीत कर मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी मुल्क के नौजवानों के लिए एक अजीम जज्बे का वसीला हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए T20 बैन अल-अक़वामी मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 8 विकेट पर 156 रन पर ऑल आउट कर दिया। अर्शदीप सिंह ने 19 रन देकर 3 विकेट हासिल किए जबकि अफगानिस्तान की तरफ से अजमतुल्ला उमरजई और मोहम्मद नबी ने मिलकर 83 रन बनाए। भारत ने हदफ का ताकुब करते हुए 13 ओवर्स और 4 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्लाह।
1: शुक्रिया कौनिन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने भारत की सरबराही में ब्रिक्स इजलास के इख्तिताम पजीर होने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि ब्रिक्स हमारे मुश्तरक मामलात के हल का एक इको निज़ाम है और दुनिया हमसे ठोस नतज की तवक्को रखती है। रोजनामा प्रताप ने रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन के इस बयान को नुमाया किया है कि ब्रिक्स की बाहमी तजारत 1.2 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। इसी अखबार की एक और खबर है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की जवाहरात और जेवरात की सनत के 52वें एवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लैब में तैयार किए गए हीरे और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के हाथों में रहनी चाहिए।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरबराह मीटिंग को समर आवर और नतीजा खेज बनाने पर ब्रिक्स रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 21 रियासतों में बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमतें 2029 से पहले यकसा सिविल कोड लागू कर देंगी। आज पूरे मुल्क में गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई कॉन्फ्रेंस के दौरान 2025-26 के राजभाषा अवार्ड्स पेश किए जाएंगे। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर तिजारती बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। भारतीय हमले के 13 अरकान को बचा लिया गया है। धीरज बोमा देवरा ने मर्दों की पहली रिकर्व तीरंदाजी में तारीख रकम की है। उन्होंने मैक्सिको में आलमी कप के फाइनल में सोने का तमगा हासिल किया है। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हरा कर खवातीन का रिकॉर्ड 8वां एशिया कप जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 14 सितंबर का दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, उस भाषा दिवस जो केवल हमारे विचारों और भावों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। और इसी के साथ गणेश चतुर्थी का पावन पर्व हमारे बीच श्रद्धा और मंगल भावना लेकर उपस्थित है। और हरितालिका तीज भारतीय लोक संस्कृति में प्रेम, आस्था और समर्पण के रंग भर रही है। तीन अवसर, तीन अलग अलग रंग, परंतु इन सभी के केंद्र में एक ही भावना है, अपनी जड़ों से जुड़ना और अपने संस्कारों को सहेजना और जीवन में प्रेम, विश्वास और शुभता को स्थान देना। वह भाषा हिंदी जिसमें मां की ममता की मिठास, गांव की मिट्टी की सुगंध और लोकगीतों की लय है, कविता की संवेदना है और जीवन के अनगिनत अनुभवों की कहानी। 14 सितंबर 1949 का दिन हिंदी के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और इसकी स्मृति में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी साहित्य के युग पुरुष भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। अर्थात अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। अपनी भाषा का ज्ञान और सम्मान हमारे विचारों और भावनाओं को अधिक गहराई से समझने में सहायता करता है, और यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, भाषा हमारी सोच को आकार देती है, भावनाओं को सर देती है और हमें अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से जोड़ती है। हिंदी दिवस केवल एक दिन हिंदी बोलने या हिंदी के सम्मान की बात करने का अवसर नहीं, ये आत्ममंथन का दिन है। हम अपनी भाषा को अपने जीवन में कितना स्थान दे रहे हैं और अपनी भाषा से प्रेम करना, अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान करना, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। भारत की सुंदरता इसकी भाषाई विविधता में ही निहित है। कबीर की बाणी से लेकर तुलसी की चौपाइयों तक और सूरदास के वात्सल्य से लेकर प्रेमचंद की कहानियों तक और आधुनिक कविता तथा गीत संगीत तक हिंदी ने हर युग की संवेदनाओं को अपने भीतर समेटा है। शब्द जब हृदय से निकलते हैं तो प्रभाव छोड़ते हैं, और भाषा जब अपनी होती है तो संबंधों को गहरा करती है, और जब भाषा में संस्कार जुड़ जाते हैं तो वही भाषा संस्कृति की पहचान बन जाती है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से सुन रहे हैं आप कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, और अब हम आगे की बढ़ते हैं भगवान गणेश की आराधना की ओर। भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ कार्य के आरंभ से पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। वे बुद्धि, विवेक, शुभारंभ और विघ्न विनाश के रूप में माने जाते हैं। भगवान गणेश के स्वरूप में भी जीवन का सुंदर दर्शन छिपा हुआ है। उनका विशाल मस्तक हमें व्यापक विचार रखने की प्रेरणा देता है, और बड़े कान अधिक सुनने का संदेश देते हैं, और छोटी आँखें एकाग्रता का। उनका शांत और प्रसन्न स्वरूप हमें सिखाता है कि ज्ञान के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। गणेश चतुर्थी का पर्व घर घर में उत्साह और मंगल कामना लेकर आता है। कहीं गणपति की प्रतिमा स्थापित होती है और कहीं आरती की ध्वनि गूंजती है। कहीं बच्चे सजावट करते हैं तो कहीं पूरा परिवार मिलकर प्रसाद तैयार करता है। इन उत्सवों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे परिवार और समाज को जोड़ते हैं। तो आइए इस पावन अवसर पर हम भी अपने मन में एक छोटा सा गणेश मंदिर बनाएं, जहां अहंकार की जगह विनम्रता हो, चिंता की जगह विश्वास हो और निराशा की जगह आशा हो।

भक्ति के इस मधुर वातावरण से अब हम भारतीय लोक संस्कृति की दुनिया की ओर बढ़ते हैं, जहां सावन की फुहारें, झूलों की पींगे और हाथों में सजी मेहंदी है और लोकगीतों में रिश्तों की मिठास है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम, तपस्या और समर्पण की स्मृति से जुड़ा ये पर्व है। भारतीय परंपरा में नारी के संकल्प, आस्था और विश्वास का सुंदर प्रतीक माना जाता है। तीज का नाम आते ही मन में एक पूरा लोक दृश्य उभर आता है। हरे भरे पेड़, डालियों पर पड़े झूले, मेहंदी से सजे हाथ, रंग बिरंगे परिधान और सखियों के बीच गूंजते लोकगीत। इन गीतों में केवल उत्सव नहीं होता, इनमें मायके की याद, सखियों का अपना

अपन और रिश्तों की गहराई होती है। पर्व केवल तिथियों का नाम नहीं, ये रिश्तों के आंगन में उतरते हैं, कभी गीत बनकर, कभी प्रार्थना बनकर और कभी अपनों की स्मृति बनकर। तीज हमें याद दिलाती है कि आधुनिक जीवन की व्यस्तता के बीच अपने परिवार और रिश्तों के लिए समय निकालना कितना आवश्यक है। परंपराएं तभी जीवित रहती हैं जब अगली पीढ़ी उन्हें केवल देखती नहीं बल्कि समझती और अपनाती भी है। आज हम तीनों संदेशों को अपने जीवन में यदि उतार लें तो शायद प्रत्येक दिन एक उत्सव बन जाए। अपनी भाषा से प्रेम करें, दूसरी भाषाओं का सम्मान करें और अपनी आस्था को माने, परंतु दूसरों की आस्था का सम्मान करना भी सीखें। अपने परिवार से प्रेम करें और रिश्तों को केवल संदेशों तक सीमित न रखें। समय दें, साथ बैठें, बातचीत करें और एक दूसरे की बात सुनें।

श्रोताओं, संस्कृति केवल पुस्तकों में सुरक्षित नहीं, संस्कृति तब जीवित रहती है जब दादी अपनी पोती को कोई लोकगीत सिखाती है, जब माँ तीज पर मेहंदी लगाती है और जब बच्चे गणेश जी की आरती में परिवार के साथ खड़े होते हैं और जब हम अपनी मातृभाषा में अपने मन की बात कहने में गर्व अनुभव करते हैं। शब्द मन को छूते हैं तो लगता है कि हमारी संस्कृति कितनी विशाल, जीवंत और सुंदर है। जाने से पहले आज तीनों अवसरों की तीन छोटी सी सीख हम अपने साथ लेकर चलते हैं। हिंदी दिवस कहता है कि अपनी भाषा पर गर्व करें। गणेश चतुर्थी कहती है कि हर नए कार्य की शुरुआत शुभ विचार और विवेक के साथ करें। और तीज कहती है कि रिश्तों में प्रेम, विश्वास और समर्पण बनाए रखिए। आज हम संकल्प लें कि हिंदी को केवल बोलेंगे नहीं बल्कि उसका सम्मान करेंगे। अपनी संस्कृति को केवल पर्वों पर याद नहीं करेंगे बल्कि उसे अपने व्यवहार में भी उतारेंगे। अपने परिवार और रिश्तों का समय देंगे और अपने समाज में प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। शब्द रहे तो संवाद रहे, संवाद रहे तो प्रेम रहे, संस्कार रहे तो परिवार रहे, आस्था रहे तो विश्वास रहे, और विश्वास रहे तो हर दिन जीवन में एक नया उत्सव हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, गणेश चतुर्थी की मंगलमय बधाई और हरितालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। विघ्नकर्ता गणपति महाराज आपके जीवन से सभी विघ्न दूर करें, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे और हिंदी भाषा तथा भारतीय संस्कृति का गौरव निरंतर बढ़ता रहे। इसी के साथ दीजिए मुझे अनुमति। आज की प्रस्तुति थी अभयकांत तिवारी की।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: पापा।
4: हम्म।
3: लाइए 3000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं? हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ।
4: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
0: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गाना हमने लिया है फिल्म चिड़िया से, आवाज है दिव्य कुमार की, गीत लिखा है मेहरान अमरोही ने, उस संगीत दिया है शैलेंद्र बारवे ने।

अभी आप सुन रहे थे बजरंगी भाईजान में राहत फतेह अली खान को। गीत लिखा था नीलेश मिश्रा ने और संगीत दिया था प्रीतम ने। और अब आइए सुनते हैं फिल्म चमेली का ये गाना, आवाज है सुनिधि चौहान की।

0: 892 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जालौन पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में नशे के कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। साइबर थाना व जनपद जालौन के थानों पर गठित पुलिस टीम द्वारा लगभग 40,97,000 रुपए की कीमत के गुमशुदा मोबाइल बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किए गए, जिससे लोगों के चेहरों में चमक नजर आई। अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी ने इस बारे में जानकारी साझा की।
1: जालौन पुलिस के द्वारा निरंतर हर माह CIR पोर्टल के माध्यम से जो फोन गुमशुदगी जिनकी दर्ज होती है, जो हो जाते हैं, उनको निरंतर उनके स्वामियों से मिलाया जाता है। इस महीने 241 फोन नियमानुसार CIR के माध्यम से बरामद किए गए हैं। इसकी मार्केट में वैल्यू लगभग 41 लाख रुपए की है। जो सभी लोग जो है अपना फोन पाकर अति प्रसन्न है।
0: जालौन में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं के लिए मानदेय वृद्धि की घोषणा का सजीव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने अयोध्या से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 12,000 और सहायिकाओं का 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। रानी लक्ष्मीबाई सभागार, विकास भवन उरई समेत जनपद की सभी तहसीलों में कार्यक्रम का प्रसारण देखा और मुख्यमंत्री का संबोधन सुना गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली 9 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। 4 कुपोषित बच्चों को पोषण पोटली दी गई और 7 गर्भवती महिलाओं को गोद भराई कराई गई। मुख्यमंत्री द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाएं समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे की देखरेख में इन योजनाओं का पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में जिले के कुल 1,32,475 लाभार्थियों के खाते में हर महीने सीधे आर्थिक मदद पहुँच रही है। आंकड़ों के अनुसार वृद्धा पेंशन योजना के तहत सबसे ज्यादा 85,016 बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं निराश्रित पेंशन योजना से 31,523 महिलाओं को दिव्यांग भरण पोषण अनुदान दिया जा रहा है। इसके तहत 15,824 दिव्यांग जनों को प्रतिमाह 1,000 रुपए की पेंशन मिल रही है। इसके अलावा कुष्ठ पेंशन योजना के अंतर्गत 112 लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा है कि
2: माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जनपद में विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की स्कीम चलाई जा रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाएं जैसे निराश्रित महिला पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, इसके अलावा जो कुष्ठ रोगी है उनको जीवन यापन के लिए दी जाने वाली 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन सहायता योजना है। हमारे जनपद में कुल 1,32,000 लाभार्थी हैं जिनको नियमित रूप से पेंशन दी जा रही है। कुल जनसंख्या का 15% है। इस प्रकार हमारे जनपद की 15% आबादी को सामाजिक सुरक्षा के कवर से आच्छादित किया गया है और उनको समाज में अच्छे से अपना जीवन यापन करने के लिए एक सम्मान का भाव मिला हो।
0: जालौन में परिवहन विभाग के प्रशंसनीय शुल्क की वसूली में प्रदेश स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन राजेश कुमार ने अगस्त माह में निर्धारित 26 लाख रुपए का लक्ष्य के सापेक्ष में 51,27,000 रुपए की वसूली की। क्रमिक लक्ष्य 180 लाख रुपए के सापेक्ष में 256,70,000 रुपए की प्राप्ति कर मासिक और क्रमिक दोनों श्रेणियों में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं यात्री कर माल कर अधिकारी आनंद राय कुलीर ने अगस्त माह में 30 लाख रुपए के लक्ष्य के सापेक्ष में 37,46,000 रुपए का क्रमिक लक्ष्य 150 लाख रुपए के सापेक्ष में 170,08,000 रुपए वसूली की। उन्होंने मासिक श्रेणी में प्रथम प्रदेश में दूसरा स्थान, क्रमांक श्रेणी में 5वां स्थान हासिल किया।
3: जालौन जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख है श्रीपाल सिंह का।
4: बुलंदशहर जनपद में जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु जिलाधिकारी कुमार हर्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना कार्य से संबंधित तैयारियों, प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार एवं आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनगणना के द्वितीय चरण हेतु निर्धारित

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: जिले की हलचल। जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए जालौन और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जालौन जिले की हलचल, आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का।
2: जालौन जिले से पुलिस द्वारा अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एड़ थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से

0: कार्यक्रम के अनुसार समस्त कार्य समय पर पूर्ण कर लिए जाएं। बुलंदशहर में बीते दिन जिला पंचायत सभागार में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग माननीय न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण से संबंधित विषयों पर संगोष्ठी और बैठक तथा जन सुनवाई का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष द्वारा स्थानीय ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व आरक्षण की स्थिति तथा संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा आयोग के समक्ष स्थानीय स्तर पर पिछड़े वर्गों से संबंधित विषयों एवं समस्याओं को रखा गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आयोग द्वारा मांगी गई सूचनाएं एवं अभिलेख निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराए जाएं ताकि सभी तथ्यों को स्पष्ट एवं प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया जाए। बुलंदशहर में 8 सितंबर को सांसद डॉक्टर भोला सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद भोला सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सभी विभागीय अधिकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित करें। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले के जिलाधिकारी कुमार हर्ष की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति ODOP की बैठक बीते दिनों आयोजित हुई। बैठक में ODOP योजना अंतर्गत CSIR CGCRI खुर्जा द्वारा प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए उपस्थित सदस्यों से सुझाव प्राप्त किए गए। पॉटरी उद्योग में तकनीकी दक्षता एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई एवं उत्पाद निर्माण से पूर्व कच्चे माल एवं निर्मित माल की टेस्टिंग की सुविधा भी स्थानीय उद्योगों को प्राप्त होगी। बुलंदशहर में 5 सितंबर को जनपद स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के 58 एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के 20, इस प्रकार जनपद स्तर पर कुल 78 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। बीते दिनों जिलाधिकारी कुमार हर्ष की अध्यक्षता में तहसील शिकारपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में 89 फरियादियों द्वारा अपनी समस्याओं के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मौके पर 30 शिकायतों का निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजते हुए शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता से करने के निर्देश दिए गए। बुलंदशहर में जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने विकास खंड सिकंदराबाद की ग्राम पंचायत बहुरावास में पंचायत सचिवालय में बनाई गई डिजिटल लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से लाइब्रेरी के खुलने एवं युवाओं का लाभ मिलने इत्यादि के संबंध में जानकारी हासिल की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लाइब्रेरी को निर्धारित दिवसों में अवश्य खोला जाए, साथ ही लाइब्रेरी पर एक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए गांव के लोगों को एकत्रित कर उन्हें लाइब्रेरी पर उपलब्ध प्रतियोगी पुस्तकों एवं अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकों के बारे में जानकारी दी जाए। राज्य महिला आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत मंगलवार को बुलंदशहर जिले के दौरे पर रही। जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान उनकी अध्यक्षता में NREC महाविद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विधिक जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं की सुरक्षा हेतु चलाई जा रही योजनाओं और अधिनियमों के विषय में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर द्वारा बुलंदशहर के जिला पंचायत सभागार में राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत महिला जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान 47 महिलाओं द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिए गए। अध्यक्ष ने महिलाओं की शिकायतों को सुनकर संबंधित विभागों को शीघ्र ही गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, पेशक खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
2: सामाइन, आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद सईद अख्तर। आदाब कबूल फरमाएं। सामाइन, ज़बान सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होती बल्कि ये तहजीब, सकाफत, जज्बात और सदियों पर मुहित इंसानी रिश्तों की अमीन भी होती है। उर्दू और हिंदी भी ऐसी ही दो ज़बानें हैं जिनकी जड़ें एक ही सरजमीन, एक ही तहजीबी फ़जा और आवामी ज़िंदगी के मुश्तरक एहसास में पेवस्त हैं। दोनों ज़बानों ने

हिंदी को यूरोपी कहा जाता तो खामखा इन्हें एक ही जबान की बोलियां ना समझ लिया जाता। जहां तक बोलचाल का ताल्लुक है, इब्तदा से आज तक उर्दू और हिंदी में कोई फर्क नहीं रहा। अनकोट उर्दू और हिंदी की कुर्बत सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं, बल्कि इनके अफआल, जुमलों की साख और रोजमर्रा इजहार में भी नुमाया है। आम गुफ्तगू में दोनों जबानों के बोलने वाले बड़ी हद तक एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। दोनों की तश्कील दरअसल सदियों के समाजी मेलजोल और तहजीबी इश्तराक का नतीजा है। मुख्तलिफ इलाकाई बोलियों ने इस मुश्तरका लिसानी धारे को अपने अपने रंग अता किए। कदीम उर्दू पर पंजाबी और हरियाणवी के असरात नुमाया रहे, जबकि हिंदी की मुख्तलिफ सूरतों ने ब्रज और अवधी से असरात कबूल किए। इस लसानी इश्तराक को फ़रोग देने में सूफियों, भगतों, शायरों और अदीबों का किरदार भी नहायत अहम रहा। गुरु नानक, नामदेव, कबीर और अमीर खुसरो जैसे अहले फ़िक्र ने अवामी ज़बानों से गहरा ताल्लुक़ कायम किया और उसे मजहबी और समाजी रबते का वसीला बनाया। यूं उर्दू और हिंदी एक ही तहजीबी और लसानी माहौल में परवान चढ़ने वाली दो ऐसी सूरतें बनी जिनकी ज़ाहरी शनाख्त अगरचे अलग है, लेकिन उनके अंदर मौजूद बुनियादी लसानी रिश्ता आज भी मजबूत और वाज़े है। अमीर खुसरो इस मुश्तरका लसानी रिवायत की अहम शख्सियत हैं। वो फारसी के अजीम शायर होने के साथ हिंदुस्तानी जबानों और मकामी तहजीब से भी गहरा ताल्लुक़ रखते थे। उनके कलाम में फारसी और मकामी जबान का हसीन इम्तजाज मिलता है, इसीलिए उर्दू और हिंदी दोनों की अदबी रिवायत में इन्हें मुश्तरका बुजुर्ग की हैसियत हासिल है। गोपीचंद नारंग लिखते हैं, इक्तबास, अगर इस जबान की इब्तदा 11वीं और 12वीं सदी में गजनवियों के ज़माने में तस्लीम ना भी की जाए तो इस बात से किसी को इनकार नहीं कि हो सकता है अमीर खुसरो के ज़माने तक ये ज़बान एक ख़ास हद तक तरक्की कर चुकी थी। अमीर खुसरो ने अपने तीसरे फारसी दीवान में हिंदी में शेर कहने का फ़ख्रिया एतराफ़ किया है। लुत्फ की बात यह है कि अमीर खुसरो को उर्दू और हिंदी वाले दोनों अपना अपना पहला शायर तस्लीम करते हैं। अमीर खुसरो का मकाम इस हकीकत को वाज़े करता है कि उर्दू और हिंदी का ताल्लुक किसी एक दौर या तबके की पैदावार नहीं, बल्कि तवील तारीखी और तहजीबी मेलजोल का नतीजा है। मुख्तलिफ अदवार में ज़बान ने नए असरात कबूल किए, मगर इसकी मुश्तरका लिसानी बुनियाद बरकरार रही। अब ज़रा इन दोनों बहनों यानी उर्दू हिंदी का तारीखी इर्तका और तहजीबी इश्तराक मुलाहजा हो। उर्दू और हिंदी के बाहमी रिश्ते को समझने के लिए हिंदुस्तान के तारीखी और तहजीबी माहौल को भी देखना ज़रूरी है। हिंदुस्तान मुख्तलिफ कौमों और तहजीबों के मेल जोल का मरकज रहा है। इस अख्तलात के नतीजे में मकामी बोलियों के साथ फारसी, अरबी और तुर्की के अल्फाज भी जबान का हिस्सा बनते गए। दहली सल्तनत और मुगलिया दौर में फारसी सरकारी और इल्मी जबान थी, जबकि अवामी सतह पर मकामी बोलियां राइज रहीं। दरबार, बाजार, फौजी मराकज और शहरी जिंदगी में मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले अफराद के बाहमी राबते से एक मुश्तरका जबान परवान चढ़ी, जिसे मुख्तलिफ अदवार में हिंदुस्तानी रेख्ता और बाद में उर्दू कहा गया। दक्कन पहुंचकर इस जबान ने मराठी, तेलुगु और कन्नड़ जैसी मकामी जबानों से असरात कबूल किए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वजही और नुसरती जैसे शुअरा ने दक्कनी उर्दू को अदबी जबान के तौर पर फ़रोग दिया। इससे जाहिर होता है कि उर्दू ने मुख्तलिफ इलाकों में तहजीबी तजर्बात को अपने अंदर समोकर तरक्की की। हिंदी की अदबी रिवायत पर भी इलाकाई और मजहबी तहरीकों के असरात रहे। इसी तरह सूफियाए किराम ने मकामी जबानों के जरिए मोहब्बत, अखलाक और इंसानियत का पैगाम आम किया। खानकाहें मुख्तलिफ तबकों और मजाहिब के लोगों के मेलजोल का मरकज बनी और जबान ने इन्हें बाहम जोड़ने में अहम किरदार अदा किया। लोक रिवायत भी दोनों जबानों के मुश्तरका तहजीबी सरमाए का अहम हिस्सा है। लोकगीत, दास्तानें, कहावतें, पहेलियाँ और अवामी किस्से ऐसी लिसानी फिजा की नुमाइंदगी करते हैं जहाँ उर्दू और हिंदी के अनासिर एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। यूँ तारीखी मेलजोल, सूफियाना रिवायत, अवामी अदब और इलाकाई असरात ने दोनों जबानों के रिश्ते को मजबूत बनाया। उर्दू और हिंदी का ताल्लुक सिर्फ तारीख या रस्मुलखत का नहीं, बल्कि एक मजबूत मुश्तरका लिसानी बुनियाद का है। दोनों के सरफी और नहवी ढांचे

हिंदी। और अगला शेर की, इसमें तो कोई भेद नहीं जाति धर्म का, इसमें तो कोई भेद नहीं।

और अगला शेर देखिए कि हम हिंद की भाषा के हिसाए में पले हैं, हम हिंद की भाषा के हिसाए

0: आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: सुगम संगीत का कार्यक्रम, आज के कलाकार हैं ममता त्रिपाठी। पहले सुनते हैं इनसे भजन, रचना है तुलसीदास की।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ममता त्रिपाठी से भजन। अब आइए सुनते हैं ममता त्रिपाठी से ही ये गीत।
1: आई नहीं रहा अभी क्या।

ममता त्रिपाठी के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 12-13 सितंबर 2026 को आयोजित शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा में मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवाचे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल हैं। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
2: गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। पुणे के भव्य और ऐतिहासिक गणेश उत्सव का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्य 5 गणपति सहित विभिन्न गणेश मंडलों की आकर्षक सजावट, ढोल ताशों के गूंज और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अगले 10 दिन तक पुणे शहर में उत्साह और भक्ति का माहौल रहेगा। इस वर्ष कई गणेश मंडलों की ओर से सामाजिक संदेश और जन जागरण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात का नियोजन किया है। नगर निगम की ओर से स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। माधव जाय भाई, आकाशवाणी समाचार, पुणे।
3: गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय
0: धीमहि। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल उसने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीबी राधा कृष्णन ने महिला T20 एशिया कप चैंपियनशिप 2026 जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉयस ऑफ प्रयागराज। आज इसमें सुनिए डॉक्टर मुकेश उपाध्याय से नेहा गुप्ता और अभयकांत तिवारी की भेंटवार्ता। आज सुनिए इसका पहला भाग।

0: मुझे लगता है लगभग लोगों को फिल्में देखना, गाना देखना और सुनना खूब भाता है ना। पता है इन सब चीज़ों में कॉमन क्या है? अभिनय, और वो शब्दों की जादूगरी। कैसे कोई रचता है, कैसे उस अभिनय को वो मंच पर करते हैं या फिर रिकॉर्ड करते हैं, ये कैसे कला होती होगी जो हमें खींच लेती है। जी हाँ, आज के सफ़र पर जब हम निकल पड़ रहे हैं, इन्हीं बातों को जानेंगे। आपको पता है हमारे साथ स्टूडियो में कौन है? हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं NCZCC प्रयागराज के उप निदेशक मुकेश उपाध्याय जी, और साथ में इस सफ़र को और भी सार्थक और उम्दा बनाने के लिए अभय कांत तिवारी जी भी हैं। तो बहुत स्वागत आप दोनों का, मुकेश उपाध्याय जी और अभय जी।
1: धन्यवाद
2: जी, बहुत बहुत
1: जी।
2: धन्यवाद आपका।
0: मेरे दिमाग में तो बड़े सारे प्रश्न चहलकदमी करने लगे मुकेश जी और अभय जी। जब मैं रंगमंच को देखती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि रंग मतलब भाव, जैसे सात रंग होते हैं जैसे इंद्रधनुष में हैं, वैसे सात भाव हैं। और मंच पे जब प्रदर्शित करना, तो जैसे ही कोई अभिनय करता होगा तो ऐसा लगता है जैसे रंगों की बरसात हो रही है या उनका रूप देख रहे हैं।
1: जी
0: आप तो मतलब शिक्षक भी रहे हैं, तो आप रंगमंच को, अभिनय को किस दृष्टि से देखते हैं?
1: मैं अभिनव को देखता हूँ कि जैसे कि हम आम जीवन में जो भी जी रहे होते हैं, बस उसी को किसी एक ऐसे चरित्र के माध्यम से, जो पटकथा जैसे लिखी जा रही है, उस पटकथा के अकॉर्डिंग उसी को उसी तरीके से जो चरित्र मांग रहा है, चाहे उद्देश्य, काल, स्थिति, परिस्थिति,
0: जी
1: उसकी तरह आप अभिनय को उसमें जो भाव चाहिए होता है, उसमें जो रस की डिमांड होती है उस वक्त,
0: जी
1: तो वो आपको प्रदर्शित करना होता है उस भाव के जरिए।
0: अच्छा, यानी कि ये जो शब्द लिखे गए, पटकथा लिखी गई है,
1: जी
0: उसमें रस होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तभी लोग जुड़ते हैं।
1: जी कोई कुछ भी लिखा हुआ है उसमें कुछ ना कुछ तो रहेगा ही,
0: हाँ
1: नहीं तो जैसे कि कहा जाता है कि नवरस कहा जाता है
0: जी
1: अभिनय के लिए, नवरस की बात होती है, तो जो नवा रस है वो शांत रस है, और शांत रस को मंच पर दिखाना, जैसे भरत मुनि जी भी कहते थे कि उसको मंच पर दिखाना मतलब मुश्किल है, मतलब नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो शून्यता की ओर है, उसमें कोई भाव नहीं है, तो जैसे कि एक मरा हुआ शरीर है उस प्रकार ही, और इस तरह की स्थिति कभी मंच पर दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो लगभग मैं सोचता हूँ कि जहाँ जहाँ कोई ना कोई डायलॉग लिखा है, कोई संवाद है, तो वहाँ पर भाव तो ज़रूर होगा उसके साथ।
0: जी अभी जी
3: डॉक्टर मुकेश, जैसे आपने कहा कि आप अभिनय से जुड़े हुए हैं और अभिनय के बारे में आपने बताया,
1: जी
3: तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए एक लेखक ने लिखा एक पात्र को, उस पात्र को आपको जीना है, निर्देशक का अपना एक अलग दृष्टिकोण हो सकता है, और जब एक अभिनेता जो होता है, जब वो उस पात्र को पढ़ता है, तो हो सकता है कि उसके जहन में कुछ और आता हो, मतलब एक अलग दृष्टिकोण आता हो। कभी
1: जी
3: कभी हम लोग क्या होता है ना कि कुछ पात्र को हम लोग जीना चाहते हैं रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में, उसको वास्तविक जीवन में नहीं जी पाते हैं, तो शायद वहाँ मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमारी अंदर की जो विचारधारा है वो भी वहाँ दृष्टिगत होती है, वहाँ अभिनय में हमारे झलकती है। क्या कहेंगे आप?
1: बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या है कि हम जब किसी संवाद को पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे बंध जाते हैं, किसी भी स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए हम एक बार नहीं पढ़ते उसको, हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो जो टेक्स्ट तो लिखा रहता है, जो सामने लिखा रहता है टेक्स्ट, वो तो समझ में आता ही है, लेकिन जो अभिनेता होता है वो उसके अंदर के भाव को समझना है, यानी कि सब टेक्स्ट को भी समझना है, कि उसमें जो संवाद है और जो संवाद नहीं कहा जा रहा है वो अभिनेता को समझना होता है। और
0: जो
1: हाँ,
0: नहीं समझता है वो,
1: तो ऊपरी हम बोलते हैं कि ये नहीं समझ के उसको ऊपरी ऊपरी एक्टिंग कर रहा है, और
0: और जो
1: शायद उसको
0: समझ जाए
1: हम
0: वो
1: वो फिर वो अमिताभ बच्चन बन जाते हैं, और ऐसे न जाने पंकज त्रिपाठी बन जाते हैं, मनोज बाजपेयी बन जाते हैं।
0: जी आप इन अभिनेताओं का नाम ले रहे हैं
1: जी
0: और इस प्रोग्राम में हम गाने भी सुनवाते चलते हैं,
1: जी
0: तो मुझे यकीन है कि आप जरूर गाने सुनते होंगे।
1: बहुत, मतलब मैं मुकेश के गाने गाता भी था, और मेरे पिताजी भी पुराने गाने बहुत गाते थे, और मेरा नाम शायद इसलिए भी पड़ा मुकेश कि मैं
3: तो यहाँ सिर्फ गाते थे से नहीं चलेगा,
1: जी
3: यहाँ आपको गाना भी पड़ेगा,
1: कोशिश जरूर होगी।
0: जी
3: तो
0: तो
3: दो
0: एक
3: लाइंस
0: मुखड़ा।

0: गाना ही इतना बढ़िया है। अब जैसे इस गाने में था कि एक समय होता है और मुलाकात होती है उस हसीना से,
1: बिल्कुल,
0: उस ड्रीम से। आपके मन में ये जो कीड़ा है रंगमंच का और अभिनय का उससे मुलाकात कब और कैसे हुई?
1: जी मैं गांव में ही पला, वहीं बड़ा हुआ, जिला बलिया है, और वहाँ
0: उत्तर
1: पर
0: प्रदेश
1: एक,
0: का जो पूर्वी छोर है।
1: जी जी
0: जी
1: और वहाँ पे एक गढ़वार थाना है और गांव का नाम है हरिपुर।
0: जी
1: तो मैं छोटा था और हम उस वक्त कहते थे, जब बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज है, गदैया गोल में पढ़ने जा रहे हैं
0: ये हम भी बोला, आपने बोला है जी कभी?
1: बिल्कुल तो वहाँ जाते थे और जो हमारे शिक्षक थे हमको बहुत मानते थे, बहुत, मैं प्यारा बचपन में बहुत प्यारा दिखता था, अभी तो शायद नहीं हो, पर तो मुझे बहुत प्यार करते थे। और मुझे एक वक्त उन्होंने कृष्ण बनाया था अपने उस हमारा वार्षिकोत्सव हुआ था स्कूल का और कृष्ण बनाया था। तो उस कृष्ण बनने के साथ, मैं बहुत छोटा था तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं था उस वक्त, तो ये भी ज्ञान नहीं था कि जो मुझे बांसुरी दी गई है वो उस तरह फूंक मारने से नहीं बचेगी, जो प्रोफेशनल्स बजाते हैं बांसुरी, वो मुझे बांसुरी दी गई और उसमें मैं कितनी फूंक मार रहा हूँ, फूंक मतलब जा ही नहीं रही, वो आवाज़ ही नहीं आ रही। अब मैं परेशान, उसमें मेरे संग चारों तरफ गोपियाँ डांस कर रही हैं, राधा डांस कर रही हैं, और मैं अबोध एक बालक की तरह, मैंने, अब बालक ही था मैं, जो हमारे सर थे जिन्होंने हमें सिखाया था, मैंने उनसे पूछा कि भोजपुरी में पूछा, सर ये बसुरिया तो बाजते नहीं थे तो लगभग वहाँ जितने लोग थे वो हंसने लगे, और ये मुझे अभी तक मेरे स्मृति में अभी शेष रह गया है, जिसको मैं जब भी होता है मैं याद करता हूँ। और हमारे वो सर कन्हैया हरिपुरी जी और कमलेश हरिपुरी जी, कमलेश हरिपुरी जी आज मुंबई में अच्छा अपना स्थान है, अच्छे वो गायक हैं अभी, वो कमलेश जी,
0: जी
1: तो उनका बहुत प्यार मुझे मिला है। गांव में रामलीला में भी अभिनय करता था मैं छोटे पर, तो अब थोड़ा सा व्यस्तता ऐसी हो गई है कि चाह कर भी कुछ करना मुश्किल हो पा रहा है, पर प्रयास है, करता रहूँगा।
0: तो वो जो उस समय जब कृष्ण बनाया तो ये दिमाग में आया कि कुछ इसी क्षेत्र में करना है,
1: जी बचपन में जुड़ाव हो गया मेरे अंदर वो,
0: रंगमंच को
1: जी
0: लेकर
1: जी
0: के
1: रंगमंच या कुछ कला।

0: को
1: कला को
0: कला
1: लेकर,
0: को
1: क्योंकि
0: लेकर के फिर सारे वार्षिकोत्सव में आप भाग लेते रहे।
1: जी पार्टिसिपेट करता रहता था। और पिताजी आर्मी में थे तो उनके साथ जगह जगह जाना हुआ, उनकी पोस्टिंग होती थी।
0: जी
1: तो आर्मी में एक होता है, एक साल भर में बड़ा खाना होता है।
0: होता है,
1: जी
0: मैं भी रही हूँ।
1: जी
0: अभी जी श्रोताओं को बताते चले, बड़ा खाना वो होता है जो आर्मी एरिया होता है, जो बटालियंस होती हैं, बटालियन में जितने लोग होते हैं, जितने परिवार होते हैं, उन सभी के लिए एक ही जगह खाना बनता है और
1: जी
0: सभी लोग जमीन में बैठते हैं, पत्ते लगाए जाते हैं और लोग एक साथ खाते हैं बड़े चाव से। और उसका इंतजार मुझे लगता है कि हर फैमिली मेम्बर्स को होता है जो
1: बिल्कुल
0: आर्मी में या
1: बिल्कुल।
0: पैरामिलिट्रीज में काम करते हैं, तो वो हजारों हजार की तादाद होती है और बहुत अच्छा मौका होता है।
1: एक मेला जैसे लगता है वो पूरा, और उसमें
0: हाँ
1: बाहर के ऐसे कुछ आते हैं,
0: हाँ
1: वेंडर्स आते हैं, मतलब
2: हर वर्ष इसका
1: जो
2: आयोजन होता है।
1: हाँ जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं होते बाहर से बुलाए जाते हैं, पर उस पूरे को गतिविधि को इतना विशाल बनाया जाता है
0: जी
1: कि मतलब बहुत ही भव्य लगता है। उसमें बच्चे जो यूनिट के जो आर्मी ऑफिसर्स या उनके जो बच्चे हैं वहाँ सैनिक के, उनके बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें किसी ना किसी रूप में। तो पिताजी गाते ही थे, मैंने जैसा आपको बताया, तो मैं भी उनके साथ साथ किसी मतलब बड़े खाने में परफॉर्मेंस देता था। तो मुझे अभी तक याद है कि एक गीत था, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी,

0: अभी जी ये बात लग नहीं रही कि उस समय हर कोई सोचता था कि बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए या MBBS कर ले। तो आप रंगमंच से जुड़े और तो घर वालों ने कहा नहीं कि भाई कुछ और भी पढ़ाई करनी है इससे क्या होगा?
1: वाकई वाकई अभी तक भी मैं किसी को कहता हूँ कि मैं थिएटर से मैंने पढ़ाई की है, तो बहुत सी ऐसी जगह है जिनको पता भी नहीं है कि थिएटर से पढ़ाई भी होती है, फिल्म से पढ़ाई होती है। तो अभी तक भी मैं ऐसी कई जगह जाता हूँ, तो मेरे लिए भी सुनहरा अवसर यहाँ मिला शिक्षा में, मतलब रंगमंच की शिक्षा और फिल्म की शिक्षा लेने के लिए। तो

0: अखबार में निकला 2010-11 में कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मास्टर्स हो रही है थिएटर फिल्म में, तो उस वक्त बैचलर्स थिएटर में या फिल्म में नहीं थी, बहुत कम, एक इक्का दुक्का विश्वविद्यालय में थी।
1: बिल्कुल, और किताबें भी बड़ी कम हुआ करती रही हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम मानेंगे, हम थोड़ा सा अचरज मानेंगे कि रंगमंच की जो पुरानी किताबें हैं वो प्रयाग से छपी हुई हैं, ज़्यादातर किताबें लगभग प्रयाग से छपी हुई हैं देखेंगे तो। तो मैंने वो इश्तिहार देखा अखबार में और मैंने अप्लाई किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो मेरा सेकेंड बेस्ट था। तो 2011 में मैंने एडमिशन लिया और 2013 में मैंने पूरा किया उसको। तो मैंने PhD भी इसीलिए की क्योंकि मैं मुंबई भी जा सकता था, कि मैं घर में इकलौता हूँ माता पिता का,
1: जी
0: तो एक जिम्मेदारी भी है। तो मैं सोचा कि नहीं, थिएटर भी करता रहता हूँ साथ में और ये एकेडमिक भी ज्वाइन कर लेता हूँ, ताकि एक थोड़ा सिक्योरिटी एक लाइफ में हो जाए, ताकि माता पिता का एक जो सहारा होता है वो बनने की कोशिश की मैंने।
2: तो कभी आपका, जैसे आपने बताया कि मुंबई भी जा सकते थे,
0: जी
2: तो क्या अभी भी कुछ ऐसा है कि बाद में, जैसे आप तो पहले तो आदमी सिक्योरिटी ढूंढता है कि हम सिक्योर हो गए और
0: जी
2: अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा लिए, पारिवारिक जिम्मेदारी आप अगर एक समय के बाद हम सिक्योर फील करते हैं कि नहीं अब ठीक हो गया है, तो क्या अभी भी कुछ ऐसी योजना है कि आप मुंबई जाएं या फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्रीज में कहीं से जुड़ने का प्रयास करें?
0: मुंबई जाके तो नहीं, लेकिन स्थानीय जगह जहाँ पे भी रहूँगा, अगर वहाँ पे ऐसे कुछ मुझे करेक्टर्स मिलते हैं या कुछ प्रयास ऐसा कर सकता हूँ मैं, तो मैं ज़रूर करूँगा कि ऐसे वेब सीरीज़, कोई फिल्म या कोई ऐसे वीडियो एल्बम में या किसी एडवर्टीजमेंट में मैं जाऊँ और कुछ अभिनय करूँ।
1: दोस्तों, वक्त हो गया है एक और गीत सुनने का वॉइस ऑफ प्रयागराज में, तो चलिए जानते हैं कि डॉक्टर मुकेश की पसंद और क्या क्या उस फेहरिस्त में शामिल है। कोई और नगमा जो आपके दिल के बहुत करीब हो।
0: ये नगमा शायद आपको बहुत ही, मतलब मेरे को तो लगता है मैंने ज़्यादा इस गाने को सुना नहीं है,
1: जी
0: पर ये गाना मैं तब सुनता था जब मेरा सरदर्द होता था,
1: वाह
0: और मैं सरदर्द होने के बावजूद इस गाने को सुनता था
1: जी,
0: और सुनते सुनते मैं सो जाता था और मेरा सरदर्द ठीक हो
1: तो
0: जाता
1: अब हम लोगों के सिर में दर्द हो रहा है, जानने की जो उत्सुकता है वो बढ़ रही है कि कौन सा वो दवाई है असल में।
0: जी, बहुत प्यारा, बहुत सॉफ्ट गाना है ये, कोई प्यार से मुझे यूं ही छू के चल दिया।
1: वाह, तो चलिए सुधीर श्रोता सुनते हैं इस गीत को।
3: कोई

0: दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोगों ने डॉक्टर मुकेश उपाध्याय से जाना कि रस नौ होते हैं, अभिनय की कुछ बारीकियां, लेकिन अभी बहुत कुछ शेष है, कुछ इंटरेस्टिंग सा है व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए कि कैसे कोई अभिनय भी कर सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में भी बराबरी के साथ आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा, रुकना होगा। अगले एपिसोड में आप सबसे फिर मुलाकात होगी और उन्हीं बातों को जो आज यहाँ पर हम छोड़े जा रहे हैं आपके लिए कुछ क्लूज, वहीं से शुरू करेंगे। क्यों अभय जी?
1: बिल्कुल।
0: तो अब हम आज के कार्यक्रम में कहते हैं नमस्कार।
2: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉयस ऑफ प्रयागराज। इसमें अभी आपने सुना डॉक्टर मुकेश उपाध्याय से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की भेंटवार्ता। आज आपने सुना इसका पहला भाग। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर।

प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राम कैलाश, आश्रद द्विवेदी के गाए लोकगीत। तो पहले सुनते हैं राम कैलाश और साथियों से ये देवी गीत।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी और राम कैलाश और साथियों से अब आइए सुनते हैं लाचारी।

0: आशा द्विवेदी के गाये इस कहरवा के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। विशेष खिदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत एक ही कलाकार।

0: रब तो मैं
1: श्रोताओं, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो पर्दे पर आते हैं किरदार निभाते हैं, और कुछ कलाकार पर्दे पर आते हैं तो किरदार को जी जाया करते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो किरदार के साथ साथ पूरे दौर की सोच और आवाज को बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिसने हिंदी सिनेमा में जब चुनाव करना शुरू किया तो उनकी कला,

की आवाज सीधे हमारे समाज से जुड़ी हुई थी। एक ऐसा कलाकार जिसकी आवाज में गायक की मिठास है, अभिनय में आम आदमी की सादगी है और कलाकारी में बेबाकी, जो लीक से हटकर चलना जानता है। हम बात कर रहे हैं आयुष्मान खुराना की।

14 सितंबर 1984 की वो तारीख जब चंडीगढ़ में आयुष्मान खुराना का जन्म हुआ। शुरुआती नाम था निशांत खुराना, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। 3 साल की उम्र में उनके माता पिता ने उनका नाम बदलकर आयुष्मान रखा। पढ़ाई के दौरान ये थिएटर से जुड़ाव हो गया और अभिनय के साथ साथ लेखन और मंच की दुनिया ने भी उनके व्यक्तित्व को आकार देना शुरू किया। लेकिन आयुष्मान का सफर सीधे फिल्मों तक नहीं पहुंचा। उन्होंने आरजे के रूप में काम किया, जहां पे उनकी आवाज़ से उनको पहचान मिली और यही आवाज़ आगे चलकर टीवी और सिनेमा तक पहुंची। साल 2004 था जबकि उन्होंने कुछ टीवी शोज में विनर के रूप में अपनी पहचान बनाई। साथ ही वीजे, एंकर और टीवी होस्ट के तौर पे भी उन्हें जाना जाने लगा। यानी कैमरे के सामने आने से पहले आयुष्मान माइक्रोफोन के पीछे और स्टूडियो के अंदर अपनी कला को निखार चुके थे। और शायद यही वजह है कि आज उनके अभिनय में संवाद सिर्फ बोलते नहीं बल्कि महसूस भी किए जाते हैं। फिर आया साल 2012 और आयुष्मान खुराना ने फिल्मों में कदम रखा। फिल्म थी विकेट ओनर, विषय ऐसा जिस पर उस दौर में खुलकर बात करना भी आसान नहीं था। लेकिन आयुष्मान ने एक बिल्कुल आम, चंचल और शरारती युवा के किरदार में उसे इतनी सहजता से निभाया कि दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ स्वीकार किया। विकेट ओनर ने सिर्फ एक अभिनेता नहीं दिया बल्कि हिंदी सिनेमा को एक ऐसा कलाकार दिया जो असामान्य विषयों को सामान्य बातचीत का हिस्सा बना सकता था। और इसी फिल्म ने उनकी पहचान को भी दुनिया के सामने रखा। गायक आयुष्मान खुराना, उनकी आवाज में आया गीत पानी दा रंग सिर्फ लोकप्रिय नहीं हुआ बल्कि उन्हें फिल्म

में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार भी दिलाया। इसके बाद जो कारवां चला वो एक के बाद दूसरी फिल्में आती चली गईं और हर फिल्म अपने आप में एक सामाजिक संदेश देती थी।

जब शुरुआत ऐसी हो तो फिर आगे के लिए क्या कहना। आयुष्मान ने ऐसे किरदारों का चुनाव किया जो उन्हें बाकी अभिनेताओं से अलग बनाते चले गए। दम लगा के हईशा में एक ऐसे युवक की कहानी जो अपने रूप और शरीर को लेकर समाज की सोच का सामना करता है। फिर बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान और बधाई हो। जी हाँ, इन फिल्मों में कॉमेडी थी, मनोरंजन था, लेकिन उसके पीछे सामाजिक सवाल भी थे। आयुष्मान की खासियत यही रही कि हंसाते हुए सवाल पूछना। वो एक ऐसे नायक बने जो हमेशा परफेक्ट नहीं होता, जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो उन प्रॉब्लम से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करना पड़ता है। और फिर आया साल 2018, फिल्म आई अंधाधुंध, जिसमें आयुष्मान ने एक ऐसे पियानो वादक का किरदार निभाया जो दृष्टिहीन होने का अभिनय करता है और जिसकी जिंदगी एक के बाद एक रहस्यों में उलझती चली जाती है। यहां आयुष्मान की कॉमेडी वाला अंदाज नहीं था, यहां था सस्पेंस, खामोशी, डर और अभिनय की बारीकियां। इस प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिलाया, जिसे उन्होंने विकी कौशल के साथ साझा किया था। और इसी दौर में आई थी फिल्म आर्टिकल 15, जहां उन्होंने एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई। दो बिल्कुल अलग फिल्में, दो बिल्कुल अलग किरदार, और दोनों ने यह साबित कर दिया कि आयुष्मान सिर्फ कॉमेडी के अभिनेता नहीं है बल्कि वर्सेटाइल एक्टर हैं।

श्रोताओं, आयुष्मान की कहानी सिर्फ अभिनय की कहानी नहीं है। उन्होंने अपनी फिल्मों में कई बार अपनी आवाज़ भी दी, चाहे वो पानी दा रंग से लेकर साड़ी गली या मिट्टी दी खुशबू और आगे तक। उनकी गायकी ने उनके प्रशंसकों के बीच एक अलग पहचान बनाई। यानी एक ही कलाकार में रेडियो जॉकी की आवाज़, एंकर की संवाद अदायगी, अभिनेता की अभिव्यक्ति और गायकी का सुर, चारों एक साथ दिखाई देते हैं। और शायद यही बहुआयामी प्रतिभा उन्हें आज की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे अलग कलाकारों में शुमार करती है। और साथ ही साथ एक चीज़ और जो देखने को हमेशा आती है कि आयुष्मान की यात्रा में पुरस्कारों की सूची भी उतनी ही अलग अलग है जितनी उनकी फिल्में। बातें करेंगे उस पर भी, लेकिन इस गाने के बाद।

इस गाने के पहले हम आयुष्मान खुराना को मिले पुरस्कारों की बात कर रहे थे। जी हाँ श्रोताओं, विकी डोनर के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ मेल डेब्यू अवार्ड इन्हें मिला और अंधाधुन फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड्स। फिर आर्टिकल 15 जिसके लिए फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान। इसके अलावा स्क्रीन, जी सिने, स्टारडस्ट, मिर्ची, म्यूजिक और न जाने कितने अन्य पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन शायद अंशुमान की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई ट्रॉफी नहीं, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है एक नई तरह के हिंदी फिल्म नायक की पहचान बनाना। एक ऐसा नायक जो पड़ोस के घर में रहने वाले लड़के जैसा लगता है, जो प्यार करता है, गलती करता है, डरता है और हंसता है, और फिर भी अपनी कहानी का, अपनी प्रॉब्लम्स का सामना भी करता है। It's a unisex song.

रेडियो से शुरू हुई एक आवाज़ जिसने टीवी पर पहचान बनाई, सिनेमा में कदम रखा, गाया, अभिनय किया और फिर ऐसे किरदारों को अपनी आवाज़ दी जिनके सवाल सिर्फ पर्दे के नहीं हमारे समाज के भी थे।

आयुष्मान खुराना की कहानी हमें बताती है कि कलाकार वो नहीं जो हर भूमिका में एक जैसा दिखाई दे, कलाकार तो वो है जो हर भूमिका के साथ खुद का नया रंग खोज ले।

कभी विकी डोनर का विकी, कभी अंधाधुन का आकाश, कभी आर्टिकल 15 का यान, कभी बधाई हो का नकुल, और कभी गीतों में अपनी आवाज से दिल तक पहुंचने वाला आयुष्मान। शायद इसीलिए आयुष्मान खुराना सिर्फ एक अभिनेता का नाम नहीं बल्कि एक सोच का नाम है। एक ऐसी सोच जो कहती है कि कहानी चाहे कितनी भी अलग क्यों ना हो, अगर उसे ईमानदारी से कहा जाए तो दर्शक उसे जरूर सुनेंगे, जरूर देखेंगे। इसी के साथ आकाशवाणी प्रयागराज से मैं अतुल यादव आपसे इजाजत लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और कलाकार की एक ऐसी ही अनकही, अनदेखी और यादगार कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एक ही कलाकार, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, आपको नहीं लगता कि आज के दिन की वाइब ही कुछ अलग है? हाथों में रची मेहंदी, ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियों की खनक और घर आंगन में त्योहारों वाली चहल पहल। त्योहारों की यही तो खूबसूरती है कि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी सी रौनक, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारी यादें जोड़ देते हैं। और आज तो मौका भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आज तीज है। तो आज के फिल्म संगीत में क्यों ना इसी रंगत को थोड़ा और महसूस किया जाए कुछ ऐसे गीतों के साथ जिनमें है श्रृंगार की खूबसूरती, रिश्तों की गर्माहट और एक बेफिक्र सी मस्ती, जो इस रंगीले त्योहार की मीठी सी खनक को थोड़ा और अच्छा कर दे, तो इस और इसे और भी यादगार बना दे। शुरुआत करते हैं उसी तैयारी से, उसी पल से जब मन कहता है कि आज कुछ अलग किया जाए, आज थोड़ा और अच्छा लगा जाए। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि आज तो सजना भी है और सजने का बहाना भी है।

हाँ जी, तो अब जब तैयार होने का सिलसिला शुरू ही हो गया है तो तीज पर तैयार होने की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि आईना सामने हो या ना हो पर मन की उमंगें अपनी अलग ही पीक पर होती हैं। आज चूड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही होती हैं, मेहंदी ज़रा और गौर से देखी जाती है, और अगर कोई पूछ ले इतना तैयार होकर कहाँ जाना है तो बस सीधा सा जवाब, आज तीज है बस इतना ही काफ़ी है। तो आप भी अपने अंदाज में तैयार हो जाइए और इस त्योहार का और मजा लीजिए थोड़े और स्वैग के साथ।

अब जब तैयारियां भी हो गई हैं, थोड़ा स्वैग भी आ गया है, तो अगला काम क्या? मिलना जुलना, हंसना खिलखिलाना और खुशियों के माहौल में सराबोर हो जाना, क्योंकि तीज अकेले बैठकर मनाने वाला त्यौहार तो है नहीं। इसकी असली रौनक तो तब आती है जब आप अपने अपनों के संग हों और छोटी छोटी बातों पर खुशियां बिखर जाएं। तो इसी उमंग को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं एक ऐसे गीत के साथ जिसमें मन अपने आप ही नाचने को मजबूर हो जाए।

नहीं लगता। त्यौहार आते ही घर की यही छोटी छोटी सी बातें अचानक कुछ ज़्यादा सी खास सी ही लगने लगती हैं। और अब जब हम इन रंग बिरंगे रिश्तों, खट्टी मीठी नोकझोंक की बात कर रहे हैं, तो अगला गीत भी कुछ उसी देसी रंग का है, थोड़ी शरारत, थोड़े से अपनेपन और ढेर सारी मस्ती के साथ में।

श्रोताओं, कितना अच्छा लगता है ना जब किसी गीत में सिर्फ धुन नहीं सुनाई देती बल्कि पूरा माहौल सा दिखाई देने लगता है। घर की चहल पहल, लोगों की आवाज़ें, हंसी ठिठोली और वो खट्टी मीठी सी नोक झोंक जिसके बिना शायद घर घर जैसा ही नहीं।

आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम में हमने जिन फिल्मों के गाने सुने उनके नाम हैं अनामिका, चमेली, हम साथ साथ हैं, दिल्ली सिक्स और बीवी नंबर वन। आज के इन गीतों के साथ हमने तीज के कई रंग महसूस किए, कहीं सजने सवरने की खुशी, कहीं अपनों के साथ की रौनक, कहीं थोड़ी सी शरारत और कहीं रिश्तों में छुपा ढेर सारा प्यार। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं।

अब आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: आकाशवाणी एट 90
1: हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग, जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
3: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप

0: पछोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तिरुकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम घेब्रियासिस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Hindi Divas is being celebrated across the country today. It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi, written in Devanagari script, as the official language of the country. Today, Hindi is one of the widely spoken languages in the world and the first language of more than 52 crore people. Union Home Minister Amit Shah will attend the Hindi Divas 2026 program and the 6th All India Rajbhasha Sammelan official language conference in Navi Mumbai today. Sharing a video message on Hindi Divas today, he said that Hindi language is not the competitive language of any other language, but an important connecting thread of national unity.
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
2: Home Minister Amit Shah has said that BJP-led NDA governments in 21 states will introduce the Uniform Civil Code, UCC,

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों के अंतर्गत अब से कुछ ही देर में यानी 12:15 पर आप सुनेंगे गुरुप्रसाद शर्मा से वायलिन वादन। इसके अलावा रात 10:30 इसी कार्यक्रम में पंडित रामकृष्ण का क्लेरनेट वादन आपको सुनवाया जाएगा। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम आपकी पसंद दिन में 12:30 होगा। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। 1:15 पर लक्ष्मी कार्यक्रम होगा जिसमें संस्कृति द्विवेदी की वार्ता सुनवाई जाएगी। विषय होगा फैशन टेक्नोलॉजी में करियर की संभावनाएं। 2:30 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT होगा और सांध्यकालीन सभा का आरंभ हम करेंगे नन्हे मुन्नों के कार्यक्रम नन्ही दुनिया से। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी रोजाना की तरह 5:15 पर होगा।

पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई आज शाम 6:30 बजे सुनेंगे नंदलाल का लोकभाषा कविता पाठ, साथ ही आनंद लेंगे शैलेश कुमार शर्मा के गाय लोकगीतों का। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम होगा, जिसमें आज प्रोफेसर राजेंद्र कुमार की वार्ता समकालीन कथा साहित्य में लालित्य की कमी

7:45 पर सुगम संगीत कार्यक्रम होगा, जिसमें गीत और भजन सुनवाए जाएंगे। कलाकार सुजाता सिंह। रात 8 बजे फिल्म संगीत। 9:30 बजे का समय होगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा का। 10 बजे एक बार फिर से हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गुरु प्रसाद शर्मा का राग शुद्ध सारंग में वायलिन वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गुरु प्रसाद शर्मा का राग शुद्ध सारंग में वायलिन वादन। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज का ये कार्यक्रम जिस विषय को लेकर आया है वो है आंखें, जो हमारी दुनिया का दरवाजा है और जिनके जरिए हम हजारों कहानियां देखते हैं, जीते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये खूबसूरत सा सफर। आंखों की गहराइयों में कभी प्यार, कभी तकरार, कभी खुशी तो कभी गम छुपते हैं। इन्हीं आंखों पर कई शायरों ने अपनी कलम चलाई है और कुछ ऐसे नगीने रचे हैं जो आज भी हमारे दिलों को छू जाते हैं। ऐसा ही एक गीत जिसकी फरमाइश हमारे श्रोताओं ने की है, पहले सुनते हैं उनका नाम, फिर सुनेंगे वो खूबसूरत सा गीत। छत्तीसगढ़ से बाल करण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा पार्थ कश्यप, उमेश और प्रमिला। मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा तन्वी मानवी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक और बलवीर सिंह। दारागंज से तनु निषाद और इनके परिवार के अन्य सदस्य। आप सब सुनना चाहते हैं चिराग फिल्म का ये गीत।

आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वाह वाह, क्या खूबसूरत गीत था ये। आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं है बल्कि इजहार का भी सबसे खूबसूरत माध्यम है। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। क्या खूब बात कही है। कभी कभी हम बाहर की सुंदरता में इतने खो जाते हैं कि अंदर की गहराई को देख ही नहीं पाते हैं। ये शेर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अक्सर हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता। कई बार हमें चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ। इस गीत की फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने की है उनके नाम है बिहार से श्वेता पांडे, आर्यनगर कोहका से उत्तम

सिंह, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह। आप सब सुनना चाहते हैं सागर फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। आवाज़ है किशोर कुमार की।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है, ये है प्रभात सनातनी गोंडा उत्तर प्रदेश से। अपनी रूठी हुई जिंदगी को मनाने में लगा हूँ, अब मैं खुद ही अपने दिल को सताने में लगा हूँ। माना मोहब्बत थी कभी जो पास आया करती थी, उसी मोहब्बत को मैं अब तो भूलने में लगा हूँ। तो भाई आपका ये संदेश हमने पढ़ के सुना दिया है प्रभात जी, और आप भी सुन रहे होंगे हमारा ये कार्यक्रम। तो अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हो जाएं आंखों पर। कभी कभी किसी की आंखें इतनी दिलकश होती हैं कि उन पर से नज़र हटाना मुमकिन नहीं होता, और जब नज़र मिल जाए तो दिल में हलचल होना लाजमी है। एक खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है कि तेरी आंखें हमें वो नज्म सुनाती हैं जो दिल को मेरे आज भी बहलाती हैं। आंखों की जुबान अक्सर अल्फाज से ज़्यादा ही कह जाती है, और कुछ ऐसी आंखें होती हैं जिन्हें हम चाह के भी भूल नहीं पाते। तभी तो ये खूबसूरत से गाने की फरमाइश आ गई है, हम दिल दे चुके सनम। जी हाँ, इस गीत की फरमाइश हमें जिन श्रोताओं ने की है उनके नाम है बंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालकार, सुनीता मालकार, योगेश मालकार, मुस्कान मालकार, बाबूलाल चौधरी, निर्मला बाई चौधरी, सुखरी कला से अजीत कुमार, अनिल कुमार और इनके परिवार के अन्य सदस्य, कृष्ण पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

जब आंखें बंद करूं तो तुम नजर आओ, ऐसा कोई ख्वाब मुझे आज फिर से दिखाओ। जी हाँ, ये ख्वाहिश है काशिक की, जो अपने महबूब को हर पल देखना चाहता है, फिर चाहे आंखें खुली हों चाहे बंद। और ऐसे ही एक गीत की फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने की है, उनके नाम है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक कुमार सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, प्रीति सिंह, ऋतु सिंह, संकल्प और कृष्ण, मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति और इनके परिवार के अन्य सदस्य, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से हैं दिलशाद हुसैन जी, बिहार से सनंदन कुमार, नंदन कुमार, मंजय कुमार और हमारे एक श्रोता हैं अबू धाबी से शेख जियाउर रहमान, मानपुर साबित जिले मुरादाबाद से शेख अतारुर रहमान और शेख हबीबुर रहमान। आप सबकी पसंद का ये गाना अब हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही समय में आप सुनेंगे समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000

0: नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Union Home Minister Amit Shah has said the presence of multiple languages in India is the biggest strength of the country. Sharing a video message on Hindi Divas today, he said, Hindi language is not the competitive language of any other language, but an important connecting thread of national unity.
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
2: Hindi Divas is being celebrated across the country today. It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi, written in Devanagari script, as the official language of the country. Home Minister Amit Shah has said BJP-led NDA governments in 21 states will introduce Uniform Civil Code, UCC, before 2029. Speaking to reporters in Mumbai, the Home Minister said UCC has been introduced in several states, and he is confident that it will be introduced in the 21 BJP NDA ruled states before 2029. Mr. Shah said triple talaq has been abolished, giving Muslim women equal rights. He said the government has strengthened the country's criminal justice system through the Bharatiya Nyaya Sanhita and claimed that several states have recorded a 30% increase in the conviction rate in a single year. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister. In the video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown where he said, through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across. India hosted the BRICS summit on the 12th and 13th of this month, and it was attended by the leaders of the 11 member countries and 10 partner countries of the grouping, besides some international organizations. Mr. Modi also held 15 sit-down bilateral meetings with heads of states or heads of government in the last 3 days on the sidelines of the summit. The government has

0: और खुशहाली की ख्वाहिश की है। इस मौके पर शादीशुदा खवातीन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं और बगैर पानी के रोजा रखती हैं। बाकी तफसील हमारे नामा निगार से।
1: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मुल्क भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि हिंदी सिर्फ एक जबान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की सकाफत, तहजीब और जिंदगी के इकदार का एक ताकतवर इजहार है। वजीर दिफा ने शहरियों से हिंदी के तहफ्फुज़ और फरोग और इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के शोबों में इसे मजीद मजबूत करने का अहद लेने की अपील की।

0: अमित शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि हिंदी सिर्फ एक जबान नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की सकाफत, तहजीब और जिंदगी के इकदार का एक ताकतवर इजहार है। वजीर दिफा ने शहरियों से हिंदी के तहफ्फुज और फरोग और इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तरा के शोबों में इसे मजीद मजबूत करने का अहद लेने की अपील की। रियासत के कई अजला में वक्फे से हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत के कई दरिया अब भी तुगयानी पर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फरकाबाद और बलिया में दरियाए गंगा, शाहजहांपुर में दरियाए रामगंगा और अयोध्या, बाराबंकी और तुर्तीपार में दरियाए घाघरा के पानी के सतह बढ़ने से हजारों लोग मुतासर हुए हैं। कल समाजी बहबूद के वजीर मुमलकत आजादाना चार्ज असम अरुण ने कन्नौज जिले में सैलाब से मुतासर कटरा मीनाबाद इलाके के एक फ्लड का मुआयना किया ताकि गांव वालों की खैरियत दरियाफ्त की जा सके। दरियस्ता महकमे मौसमियात ने आज हमीरपुर, जालौन, कानपुर नगर, झांसी, इटावा, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, कन्नौज, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशेंगोई की है। क्रिकेट में भारत ने खवातीन का एशिया कप 2026 जीत लिया है। कल भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 72 रनों से शिकस्त देकर आठवीं मरतबा एशिया कप जीत कर दोनों फॉर्मेट्स में एशिया कप जीता है। ये एक रोजा बैनुल अक्वामी और श्रीलंका के खिलाफ हिंदुस्तान की छठी फतेह है। ओपनर शिफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने रिकॉर्ड 129 रन की शराकत दारी करके हिंदुस्तान को 5 विकेटों पर 183 रन बनाने में मदद की। गेंदबाजों को फिर श्रीलंका को 19 ओवर और 4 गेंदों में 11 रनों पर आउट कर दिया। शेफाली वर्मा को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं का अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: हर दिन जीवन के नए अनुभवों से रूबरू होते हैं। हर दिन कोई ना कोई चैलेंज हमारे सामने होता है, जो हमें कभी अनुभव तो कभी नई सीख दे जाता है।
1: कुछ पल यादगार बन जाते हैं तो कुछ पलों को बस हम यूं ही भुला देते हैं। लाइफ की इस रस्साकसी के बीच एक चीज है जो कभी नहीं रुकती और वो है समय।
0: तो लीजिए, तय समय पर आ गई आपकी दो सखियां, आप श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी लेकर। मैं हूँ रितिका
1: और रितिका के साथ आज मैं हूँ प्रीति। तो रितिका, आज है बहुत खास दिन। अच्छा, एक चीज मुझसे गलती हुई कि मैं नमस्कार करना भूल गई।
0: तो स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
1: नमस्कार। और रितिका, आज का दिन है इतना खास, आज बहुत कुछ एक साथ हो रहा है
0: जी।
1: जैसे कि देखो, आज तीज का व्रत है, आज हम गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है और आज है हिंदी दिवस। तो इतने ढेर सारे कार्यक्रम जब लाइन अप हो, हमें बहुत सारी बातें करनी हो, तो क्यों ना अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम एक प्यारे से गीत के साथ करें।
0: बिल्कुल, तो सुनवाते हैं हमारे श्रोताओं को पहला ये गीत।

0: कृतिका, जैसे इस गीत में कहा ना कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तो आज इसी भावना के साथ हमारी बहुत सारी श्रोता सखियों ने व्रत रखा हुआ है और आज वो मना रही हैं हरितालिका तीज। और अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि कैसे कल बाजार में कितनी रौनक थी
1: जी
0: लोग इतना तैयारियां कर रहे थे, पूजा की तैयारी, सजने संवरने की तैयारी।
1: बिल्कुल।
0: वैसे ये मानती हो रितिका कि हम जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो कितना टफ काम करती हैं?
1: बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने तो हमेशा से ये, अगर अपने बचपन से ही शुरू करूं तो कहते हैं ना कि जब मैंने अपनी माँ को देखा, फिर आप अपनी दादी को देखते हैं, नानी को, मौसी, चाची, बुआ, एवरीथिंग, एवरीवन, मतलब जो भी आपके सामने एक जो वुमेन रोल मॉडल होती हैं, फिर वो आपकी टीचर्स हैं, सभी हैं। और जब आप देखते रहते हैं कि ये सभी कितनी मल्टी टास्कर्स हैं, एक साथ कितने काम करती हैं, और उसके साथ जब ये जीवन में हमारे जो त्योहार हैं, जो कि एक समय समय पर उल्लास का एक संकेत होते हैं, हाँ। कि जीवन में किस तरह उत्सव मनाया जाता है, जिस जीवन में किस तरह उत्सव बना रहना चाहिए, और जो उसको मनाते हुए वो भी सारे काम निपटाते हुए और किस कितनी सुंदरता से हर एक चीज को अंजाम देती हैं।
0: एक चीज तुम देखती हो, वो कितनी ऊर्जामयी रहती
1: हैं। जी जी,
0: वो व्रत हैं, फिर भी आप देखेंगे उनके चेहरे पर वो खुशी, वो उल्लास, वो ऐसा नहीं कि वो बुझ गई हैं।
1: बिल्कुल,
0: वो
1: कोई शिकन नहीं,
0: भी बनाएंगी, वो तैयार भी होंगी और सारा काम इतना अपडेट रखती हैं,
1: इतनी सुंदरता से करती हैं कि उस देखते ही बनता है। और वो आपको कहीं ना कहीं, और वही एनर्जी तो कहीं ना कहीं हम सब में ट्रांसफर होती है पीढ़ियों दर पीढ़ियों कि भाई हमारी नानी देखिए, हमारी माँ देखिए, कितने उल्लास के साथ, कितनी ताजगी, कितनी एनर्जी के साथ उन सारे कामों को कर रही हैं। और यही सीख हमें मिलती है और हम आगे अपनी आने वाली जनरेशन में पास ऑन करते हैं ना।
0: और चाहे वो पूजा पाठ की बात हो, चाहे कोई त्योहार हो, उत्सव हो, सभी में ये बात हमेशा देखी जाती है। और जब हम हरितालिका तीज की बात कर रहे हैं, ये जब भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। शाम को वो शिव पार्वती जी की पूजा करती हैं, फिर भजन कीर्तन होता है, पकवान बनते हैं और अगले दिन इसका पारण किया जाता है। तो कुल मिला के अपने परिवार के, अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए वो हर कार्य करने के लिए तत्पर रहती हैं।
1: बिल्कुल, और ऐसा कठिन काम, ऐसा एक कठिन दिन का यापन करना जिसमें आप पानी तक नहीं पी सकते हैं, और ये, और देखा
0: जाए मन में ये भाव रहता है कि जो हमारा परिवार है, जो हमारे जीवन साथी है, वो दीर्घायु हो, सुखी रहे।
1: और मुझे ऐसा लगता है मात्र जीवन साथी ही नहीं, अगर देखा जाए ये दिन पूरा पूरी तरह से आस्था को और हमारी संस्कृति को और विश्वास को जिस तरह से समर्पित है, ये दिखाता है कि हमारी जो आस्था का जो एक डोर है वो कितनी पावन है, कितनी मजबूत है ना। और अगर जब हम बात कर रहे हैं हरतालिका तीज की, तो वही आज बहुत सारे जगहों पर गणेश चतुर्थी भी मनाया जा रहा है। और जब आपने शुरुआत की बात करें तो आपने बताया था कि हम हिंदी दिवस की भी शुरुआत कर रहे हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। अच्छा, ये देखिए, ये हमारी संस्कृति की विविधता और खूबसूरती ही तो है कि एक साथ एक दिन पे हम कितनी सारी चीजों को मना रहे हैं
0: और पूरे संतुलन के साथ, सामंजस्य के साथ।
1: कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि किसी एक पर्व का या किसी एक मौके का दूसरे मौके से कहीं भी कहीं कोई कमतर वो रह जा रहा हो, और यही हमारी खूबसूरती है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब हमने बात कर ली हरतालिका तीज पे, तो अब हम सुनवाते अपने श्रोताओं को गणेश चतुर्थी पे एक विशेष कार्यक्रम।

प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता बुद्धि और समृद्धि के दाता भगवान गणेश के आगमन का उत्सव गणेश चतुर्थी आस्था और परंपरा का ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता है।

0: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला यह त्यौहार ना सिर्फ भगवान गणेश की पूजा का बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने का एक माध्यम है। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ। गणेश चतुर्थी के महात्म्य के बारे में हमने बात की महाराष्ट्र से हमारे एक श्रोता सुरेंद्र पाटिल जी से।
1: आज हमारे घर गणपति बाप्पा पधारे हैं और हम खुद को सच में बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे घर बाप्पा पधारे हैं, हमें बाप्पा की सेवा का अवसर मिला है। इस आनंद में हमें सबको शामिल करने का अवसर मिलता है। वैसे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं है, ये एक त्यौहार बन चुका है। हर घर में मनाया जाता है, हर गली, हर समाज, हर नुक्कड़ पे मनाया जाता है। लोकमान्य तिलक जी ने इस उत्सव को समाज की एकता का पर्व बनाया था। आज भाद्रपद इस महीने में आज हमारे घर श्री गणपति बाप्पा विराजमान हुए हैं। बाप्पा जब भी घर आते हैं तो लगता है कि एक छोटा सा उत्सव ही घर में बस गया है। घर के लोग, भाई बहन, चाचा चाची, सब लोग एक उत्सव मनाने के लिए, एक त्यौहार मनाने के लिए घर में आते हैं। आरती की घंटी, आरती का आवाज़, बच्चों का उल्लास और प्रसाद, ये सब का माहौल इतना प्यारा बन जाता है कि ये 10 दिन एक त्यौहार समान लगते हैं और ऐसा लगता है कि ये 10 दिन कभी ख़त्म ना हो। बापा का सबसे प्यारा प्रसाद मोदक है। मोदक तो वैसे 2-3 प्रकार से बनते हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में एक उकड़ीचे मोदक बोलते हैं और एक पूरन के मोदक बोलते हैं। ये दोनों बापा को बहुत पसंद है, जो हम बड़े प्यार से और बड़े चाव से बनाते हैं। हम मानते हैं कि गणपति जी विघ्नहर्ता है, यानी जीवन की हर रुकावट को दूर करने वाले हैं। इसलिए हर नया काम करने के पहले हम श्री गणेशाय नमः से ही शुरुआत करते हैं। बापा हमारे लिए भगवान नहीं है, वो हमारे लिए एक प्रकार से 10 दिनों के लिए हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं। हम हमारे घर के सदस्य को जितना प्यार करते हैं उतना प्यार हम बापा को करते हैं, उतना लाड़ हम बापा को करते हैं। हमारे बच्चे उतना भाव उनके मन में रहता है, उनके मन में उतना इमोशंस आता है बापा के लिए। और जब 10 दिन के बाद में बापा की विदाई होती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, बच्चों के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चे तो जिद करने लगते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और हम फिर विदाई होती है तो बोलते हैं कि बापा, गणपति बाप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकरिया, मतलब गणपति बाप्पा आपका जय रहे और अगली साल थोड़ा जल्दी आइए। आज हम ये मिलकर प्रार्थना करते हैं कि बाप्पा हमारे जीवन में सुख दर्द दूर करें, सबके घर में सुख शांति और समृद्धि लाएं और हमेशा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।

किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। इस दिन भक्तजन भगवान गणेश की प्रतिमा घर या पंडाल में स्थापित करते हैं। प्रतिमा की स्थापना के बाद प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक पूजा, आरती और भजन का आयोजन किया जाता है।

0: गली मोहल्ले में बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, जहां सामूहिक रूप से पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। भगवान गणेश को भक्तजन गजानन, विनायक, लंबोदर, एकदंत आदि नामों से पुकारते हैं। गणपति के महात्म्य के बारे में बात करते हुए हमारे श्रोता विजय राठौर जी।
1: श्रोताओं, श्री गणेश अर्थात शिवहर पार्वती पुत्र, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत इस ग्रंथ का लेखक गणेश यानी गणों का ईश, ईश यानी ईश्वर, परमेश्वर, ऐसा भी उल्लेख पुराण में बताया गया है। गणों का अधिपति गणपति श्री गणेश, अलग अलग नाम, नामाभिधान, वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, लंबोदर, गजानन, ऐसी गणपति की देह विशेष दर्शाने वाली बातें, उनका उल्लेख पुराणों में, ग्रंथों में प्रथम पूज्य और मुख्य देवता के रूप में विराजमान होते हैं। अनेक पुराणों में गणपति की आख्यायिका हमें मालूम होती है। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, गणपति इस पुराणों में अलग अलग भाव से प्रकट होते हैं। भाद्रपद इस महीने में चतुर्थी, महासिद्धि विनायक की चतुर्थी, ऐसे ही इन्हें कहा जाता है। गणपति इस दिन अपने जो खाने के जो बहुत ही चाहने वाले मोदक है, उस मोदक अपने मूषक के साथ ले जाते हुए वो इधर उधर बिखर जाते हैं।

तब उसे लगता है कि सामने कोई तो भी सांप खड़ा है, और उस सांप को देख के मूषकराज डर गए, घबरा गए। उस समय गणपति जी हड़बड़ा जाते हैं और वो गिर जाते हैं, तो उस समय उनके पास जो मोदक है वो गिर जाते, तो उसे उठाने के लिए वो नीचे उतरते। तब उस सांप को अपने पेट के साथ गुंडली मार के पूरे मोदक स्वाहा करके गणपति चले जाते हैं। ऐसी एक बहुत प्यारी सी बात हमारे पुराणों में श्री गणपति की जी के बारे में कही जाती है, हम सुनते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे आस्था का, हमारे जीवन जीने की प्रणाली का एक अविभाज्य अंग स्नेह भाव, हमारी कौटुंबिक एकता, सहोदर का भाव, इस चतुर्थी में हम सब मिलजुल कर इकट्ठा आकर मिलाते हैं, और खुशियों से बहुत ही प्यारे ढंग से हम गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाते हैं। सामाजिक एकता का ये बहुत बड़ा प्रयोग हमारे जीवन में, हमारे कुटुंब व्यवस्था में आती है, तो ये बहुत बड़ा त्यौहार है। सब मनाइए, खुशियों से मनाइए, सब मिलजुल कर मनाइए। गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाइयाँ।

0: अभी आप सुन रहे थे ये गणेश चतुर्थी पर विशेष कार्यक्रम, और इसकी प्रस्तुति हमारे आकाशवाणी प्रयागराज की थी, और अभय जी ने
1: अभय कांत तिवारी जी से
0: जब ये हम लोग प्रोग्राम सुन रहे थे तो ये प्रोग्राम इतना मनमोहक था, इतना अच्छा था, जैसे विस्तार से सब कुछ बताया
1: गया जी,
0: तो लग रहा था जैसे हम लोग भी इस अवसर पर
1: बिल्कुल इसका हिस्सा है, इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और इस पावन अवसर को खुद स्वयं मना रहे हैं।
0: वैसे ऋतिका, जब इसको मैं पहले टीवी में देखती थी, देखिए यहाँ पर तो इतना नहीं, हमारे प्रयागराज में तो इतना नहीं पहले मनाई जाती थी, जब टीवी पे देखती थी तो बड़ा अच्छा लगता था कि किस तरह से लोग भगवान की मूर्ति लाते हैं, उसको स्थापित करते हैं, फिर 10 दिन पूजा अर्चना होती है, सब लोग दूसरे घर आते हैं और बाकायदा वो 10 दिन तक ये जो पर्व, क्या महापर्व जो चल रहा होता है। पर अब मैं देख रही हूँ कि इसमें लोगों ने कुछ इसको प्रकृति से भी जोड़ा है
1: और ये बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब गणेश उत्सव के समय हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। जब प्रतिमा स्थापित करते हैं तो उस समय प्राकृतिक मिट्टी से बनी प्रतिमाओं का उपयोग करना बेहतर विकल्प है और रासायनिक रंगों और ऐसी सामग्रियों से बचना चाहिए जो जल स्रोतों को कहीं ना कहीं प्रदूषित कर सकती हैं। पूजा सामग्री का उचित निपटान करना और जल तथा प्रकृति की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है और इस प्रकार हम भगवान गणेश की आराधना के साथ साथ प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा भी व्यक्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा ऋतिका आपने। और वैसे भी गणेश चतुर्थी यानी बुद्धि के देवता की अगर हम बात कर रहे हैं, उनका त्यौहार है, तो दो चार चीज़ें हमको उससे सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन
1: कुछ
0: जो बहुत महत्वपूर्ण है उसमें यही है कि भाई हमें बुद्धि और विवेक से जब भी कोई डिसीजन लें तो काम करना चाहिए। जब भी कोई काम करें तो सकारात्मक सोच के साथ करें, अपने बड़ों का, गुरुजनों का, जो हमारे साथ में है, जिनसे हम सीख रहे हैं, उन सभी का सम्मान करना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात कि अहंकार को, ईगो को अपने से दूर रखना चाहिए, जितना हम विनम्र हो सकें उतनी अच्छी बात है। और आपस का जो समाज है जहाँ पे हम रोज उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वहाँ भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम प्रेम से, सहयोग से और एकता से।
1: जी बिल्कुल। और इसी के साथ आज का ये जो गणेश चतुर्थी के पर्व के लिए हम इतने सुंदर जो आपने बातचीत सुनी उसमें हम यही कहेंगे कि गणपति बप्पा
0: मोरिया,
1: अगले बरस तू जल्दी आना, जब भी हमें जब अपनी विदाई दें गणेश जी तो उसको उनसे हम यही प्रार्थना करेंगे कि अगले बरस भी आप जल्दी से आइएगा।
0: वैसे ऋतिका अभी तो बस ये गणेश चतुर्थी शुरू हुई है ना, तो इसको पूरे अभी 10 दिन इंजॉय करना है, तो खूब इंजॉय करेंगे।
1: ये होता है ना कि कई घरों में 2 दिन का या कई घरों में 3 दिन का, लोग अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें विदाई देते हैं,
0: करते हैं।
1: तो मैं तो ये कहूंगी कि हर साल हम इस पर्व को बहुत अच्छी तरह से मनाएं, भगवान हमें इस बात की सद्बुद्धि दे। और अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं आज का दूसरा गीत।

0: रितिका, पूरा जग घूमिया मैंने पर हिंदी जैसा कुछ नहीं।
1: बिल्कुल। तो आज की चर्चा में हमारा दूसरा विषय भी यही है कि हिंदी दिवस, और आज हम ऐसी भाषा के बारे में बातचीत करेंगे जो हमारे विचारों, भावनाओं, संस्कृति और परंपराओं को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। ये भाषा है हिंदी। हर वर्ष 14 सितंबर को यानी कि आज के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, और ये दिन हमें हिंदी भाषा के महत्व को समझने और उसके विकास के बारे में अपना योगदान देने की प्रेरणा देता है।
0: और रितिका, जब 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, और ये इतना महत्वपूर्ण निर्णय था, इसी को याद करने के लिए हम हर साल इस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और जैसा कि अभी तूने जिक्र भी किया था ना कि हम फिर हिंदी पखवाड़ा पूरा मनाएंगे।
1: जी जी जी जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 यानी कि 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी दिवस हमें अपनी भाषा के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का बोध कराता है। हमें ये भी समझना चाहिए कि भारत

0: भारत एक बहुभाषी देश है और यहाँ अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी का सम्मान करने का अर्थ अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान कम करना नहीं, बल्कि सभी भाषाओं की विविधता और सुंदरता को स्वीकार करना है।
1: वैसे रितिका, अगर तुम देखो या जैसे महसूस करते हैं, हिंदी सीखना बहुत आसान है,
0: हाँ बिल्कुल
1: बहुत सरल है। और सबसे अच्छी बात है ना कि जो हिंदी है ना, वो एकदम माँ जैसी है,
0: जी
1: वो हर भाषा को अपना लेती है। कई बार देखो, अब जो नई उम्र के बच्चे हैं वो हिंदी में थोड़ी अंग्रेजी मिक्स कर देते हैं। वैसे हमारी हिंदी भी जिस जिस प्रदेश में गई है, थोड़ा बहुत रूप बदल लेती है, लोग उसका थोड़ा एक्सेंट चेंज हो जाता है, वो हर तरह से ग्राह्य हो जाती है।
0: जी
1: ये मानते
0: बिल्कुल
1: हो कि नहीं?
0: बिल्कुल। हिंदी भाषा का जो विकास है वो लंबे ऐतिहासिक क्रम में हुआ है, और इसके विकास में संस्कृत, प्राकृतिक अपभ्रंश और विभिन्न लोक भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसा कि आपने कहा भी कि हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे, थोड़े थोड़े जगहों पे हमारी भाषाएं भले ही बदल जा रही हों, लेकिन उसमें जो एक टच है वो हिंदी का आपको अलग-अलग स्वरूप में देखने को मिलता है ना। हिंदी भाषा को साहित्य, पत्रकारिता, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न और डिजिटल माध्यम से व्यापक रूप से प्रयोग की जाती एक भाषा का माध्यम माना गया है, और हिंदी साहित्य ने भी भारतीय समाज को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कबीर हों, तुलसीदास, सूरदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और अनेक साहित्यकारों ने हिंदी को समृद्ध बनाया है।
1: बिल्कुल। और जब हमारे शहर की बात हो, जहाँ पर इतने बड़े बड़े साहित्यकार हों, वहाँ
0: जी
1: पर जब हम हिंदी की बात करें, तो हमारे श्रोता भी जानते हैं कि जब हिंदी पखवाड़ा चल रहा होता है, तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम कई विभाग करा रहे होते हैं। तो जो हम कर सकते हैं वो ये
0: जी
1: कर सकते हैं कि हम अपने जो बच्चे हैं उनको हम हिंदी थोड़ा बोलने की ज़्यादा प्रेरणा दें। कई बार होता है
0: जी
1: ना, आजकल बच्चे अंग्रेजी की दौड़ में थोड़ा भागते रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि थोड़ा उन्हें हिंदी बोलने पर मोटिवेट किया
0: जी जी
1: जाए।
0: जी क्योंकि भाषा न केवल संवाद का माध्यम नहीं होती है, बल्कि वो हमारी संस्कृति, परंपराओं, लोक स्मृतियों और भावनाओं को भी सहेजती है।
1: सही कह रही हो।
0: हिंदी के माध्यम से हम अपने साहित्य, लोक गीतों, कहानियों, मुहावरों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हैं, और ये भाषा हमें अपने अतीत से जोड़ते हुए भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए हमें हिंदी को लेकर गर्व करना चाहिए, अपनी जनरेशंस हैं इनको पास ऑन करना चाहिए, लेकिन किसी भी भाषा को दूसरी भाषा से श्रेष्ठ या हीन समझने के बजाय सभी भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हो रितिका, क्योंकि हिंदी हमारी अभिव्यक्ति, संवेदना और सांस्कृतिक विरासत की महत्वपूर्ण भाषा जरूर है।
0: जी
1: इसे समृद्ध करना सिर्फ किसी सरकार की या साहित्यकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हमारे हमारा तुम्हारा भी उतना ही दायित्व
0: दायित्व
1: बनता
0: है।
1: है। तो इस हिंदी दिवस पर क्यों ना हम एक संकल्प ले लें कि हिंदी का हम सम्मान करेंगे
0: जी
1: और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे,
0: जी
1: और अपने बच्चों को भी कहेंगे, अपने जो जूनियर्स हैं उन्हें भी कहेंगे कि आप हिंदी साहित्य पढ़ें, उससे जुड़ें और जानें कि क्या है हिंदी भाषा। और आने वाली पीढ़ियों को, जैसे हम कह ही रहे हैं ना, सबको ये बताना है कि अपनी भाषा का, हिंदी भाषा का सम्मान करना है। और जैसा कि रितिका ये बात बार बार कह रही हैं कि अपनी भाषा का या हिंदी का सम्मान करना ऐसा नहीं है कि किसी अन्य भाषा का हम कम कह रहे
0: जी
1: हैं।
0: भाषाई विविधता को हम अपनी और मजबूत बनाएंगे, और हम बस आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इतना ही कहेंगे कि हिंदी का सम्मान करें, भाषाओं का मान बढ़ाएं और भारत की विविधता को सशक्त बनाएं।
1: वाह, बहुत ही खूबसूरत नोट। और इस नोट पे अगर तुम कहोगी तो हम एक गीत अपने श्रोताओं
0: नहीं
1: को
0: नहीं
1: सुनवाएंगे।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे, क्योंकि
1: तो
0: यही हमारा मनोरंजन का भी साधन है।
1: चले,

0: रितिका, अब इतनी सारी ढेर सारी बातें हो गई तो मुझे लग रहा है तुम्हें थोड़ी सी भूख लग गई होगी।
1: बहुत ज़्यादा भूख लगी।
0: मैं झटपट सा एक अच्छी सी रेसिपी बताती हूँ, तुम उसे ट्राई करना। अगर छोटी सी भूख लगे तो तुम फटाफट पिज्जा बना सकती हो।
1: हाँ, तो फिर जल्दी से बताइए कौन
0: जल्दी
1: सा?
0: से भाई देखो, घर में अगर ब्रेड पड़ा हो तो ब्रेड पिज्जा बना सकती हो, रोटी पड़ा हो तो रोटी पिज्जा भी बना सकती हो। करना बस ये है कि सूजी को दही में घोल लेना है, सिम बहुत गाढ़ा थोड़ा हल्का, और उसमें एक चम्मच मलाई भी डाल देना, स्वाद अच्छा आ जाएगा। अच्छा। नमक, काली मिर्च डालो, अपनी मनपसंद सब्जियां हैं ना चॉप करके डाल लो, और जो ब्रेड है उसको एक तरफ लगा लो, ये जो तुमने बनाया है सूजी में सब सब्जियां डाल के लगा करके, और उल्टी तरफ करके उसी तरफ से सेक देना है। और उसके जब उधर से सिक जाएगा ना, थोड़ा सा अगल बगल मक्खन या घी डालो, वो अपने आप छोड़ देगा। फिर दूसरी तरफ जब पलट दोगे तो दूसरी तरफ से ब्रेड सिक जाएगा। उसको कट करिए सॉस के साथ, चटनी के साथ,
1: बिल्कुल। और
0: ऐसा ही आप रोटी के साथ भी कर सकते हैं। मैं तो घर में जितने छोटे बच्चे आते हैं ना, मैं सबको ऐसे ही पिज्जा विज़ा खिला करके और उन्हें ऐसे प्यार
1: मतलब
0: से
1: हेल्दी वाला पिज्जा खिलाकर और
0: सबको
1: बहुत
0: सब।
1: खुश कर देती हैं आप। ये तो भाई आपने वाकई बहुत लजीज और जबरदस्त वो बताया
0: तो
1: है।
0: अब तुम खाना जरूर है ना। अब ये मत कहना कि समय नहीं था, तो
1: रोटी वाला पिज्जा नहीं, ऑफ कोर्स मैं खाऊंगी। और जब आपने जायके की बात कर दी है तो हम निखार की भी बात कर लेंगे। जैसे आज हमें बताना है सीड मास्क के बारे में, तो सीड मास्क तो देखिए इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, और बस हमें ये करना है कि हम बहुत ही अलग अलग बीज, फिर वो अलसी के बीज हैं, चिया सीड्स हैं, या कद्दू के बीज हैं। अच्छा। इन सभी का एक प्रोसेस है कि पहले आप इनको पानी में उबाल लें,
0: ठीक है,
1: ये अपने आप जेली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपको एलोवेरा के साथ जेल में मिलाना है और इसका एक पेस्ट बनाकर लगा लेना है। अपनी सुविधा अनुसार 10 से 15 मिनट अपने फेस पर रख के आप इन्हें धो दें। जो इनका मैजिक है या जो इनका जादू है, जो ये कहते हैं ना कि इस समय जो सीड फेस मास्क इतने क्यों चल रहे हैं, वो ये कि ये आपके ग्लो में बहुत ज्यादा आपको मदद करते हैं।
0: वो तो मैं देख रही हूं।
1: फिर वो चाहे अलसी के बीज का बनाया हुआ सीड फेस मास्क हो, या चिया सीड्स का हो, या कद्दू के बीज का हो, लेकिन इन सब चीजों को ट्राई कीजिए। उससे साथ ही मैं इस चीज को बहुत प्रमोट करती हूँ कि आप चेहरे पर कोई भी उत्पाद लगाते समय इस बात का ध्यान जरूर दें, वो कितना भी नेचुरल है, कितना भी हर्बल है, लेकिन उसे डायरेक्ट अपने फेस पर लगाने से पहले आप अपनी हाथ की स्किन पर उसे थोड़ी देर टेस्ट जरूर करें कि वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं। और अगर वो आप, जिसे कि हम पैच टेस्ट भी कहते हैं, और अगर वो आपको सूट कर रहा है तो बढ़िया, आप उसे अपने चेहरे पर लगाएं और अपने निखार के लिए, अपने ग्लो के लिए, इंस्टेंट ग्लो के लिए उसे यूज करें। और हमें
0: रितिका, देखो तुमने ये तो घर में जो चीजें थी उसी से बता दिया।
1: जी जी।
0: और ये अवसर भी तुमने बहुत अच्छा चुना है कि आज का खास दिन, और मतलब त्योहारों का जो दिन शुरू ही हो चुके हैं, तो हमारी जो सखियां हैं उसको ये ट्राई करेंगी और तुम्हें फीडबैक जरूर देंगी कि कैसा रहा, और अगली बार जब ग्लो हो जाएगा तो तुम्हें आके कहेंगे रितिका जी थैंक यू।
1: तो भाई हमें लगता है कि जब आज हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, शुरुआत की हमने हरतालिका तीज, फिर गणेश चतुर्थी, उसके बाद हिंदी दिवस, और आपके जायके ने और हमारे निखार ने इस कार्यक्रम को आज के गानों के साथ जो आगे बढ़ाया है और इस समाप्ति तक लाए हैं, हम अपने श्रोताओं से ये वादा करते हैं कि हम उनसे जल्द ही दोबारा मिलने आएंगे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी।
0: कुछ ही समय में आप सुनेंगे समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: became the first black American man to make it to a U.S. Open final since Arthur Ashe in 1972. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS leaders stress energy security as crucial foundation for economic development and national security, caution against weaponization of technology and critical minerals. China significantly cuts down troop deployment in 2025, says Defense Ministry report, terms security situation in Jammu and Kashmir as stable. Union Home Minister Amit Shah says India's linguistic diversity strengthens unity amidst diversity, congratulates people on occasion of Hindi Divas. IMD predicts heavy rain and thunderstorm for several districts across Gujarat today. Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion, pomp and gaiety. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने त्रिकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया

0: जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था, जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है, विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSC और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है, जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
1: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
1: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से एक बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोहों में गाने का काम किया।
0: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें बल्कि

0: इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। यह संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़, इन 5 तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मानसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
3: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूँ। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
1: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद हैं। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब

0: जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने। अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं। विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है उमंग कार्यक्रम। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैम्पू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसावेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये, रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं, उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है, उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था, देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए 3 युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था विनोय बसु, बादल गुप्ता और

0: दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। पर क्यों, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।
1: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
2: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
1: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
2: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो पीला हूं।
2: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
4: गुब्बारे, गुब्बारे,
2: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो लाल हूं।
2: घास, घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो हरी हूं।
1: बेचारा जोजो।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
7: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी। इस कार्यक्रम में विश्व की महान शिक्षाविद, चिंतक और शिक्षिका मादाम मारिया मोंटेसरी के जीवन और शैक्षिक जगत में उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है।
3: शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
4: आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया।
3: उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है।
4: उनका पूरा नाम था मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरा वाले इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
3: उनकी माँ का नाम रेनिल्ड स्ट्रोपानी था, जो बहुत ही सभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
4: जब वो मात्र 4 वर्ष की थी, उनका

0: परिवार चेरावाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी।
1: उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
0: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया
1: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन।
2: साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेक्ला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। बधाई हो।
3: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत बधाई हो। इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है।
4: बहुत बहुत बधाई हो।
0: अठारह सौ 1897 में वो रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुई और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी।
1: इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया। एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे।
5: आइए मारिया जी।
6: कैसे हो गैब्रियल? कैसा चल रहा है यहाँ? कुछ उदास लग रहे हो।
5: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं? मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
6: और बुरी?
5: जी।
6: भला वो कैसे?
5: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
6: हाँ हाँ, जरूर।
5: जी
1: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
7: देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए, कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी वो सड़क की गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए।
6: नहीं नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह असामान्य नहीं है।
1: बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी,
6: शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं

0: क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए। लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करके शायद वो सीखना चाहते हैं, वो अवलोकन और निरीक्षण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सीखने सिखाने का एक नया रास्ता मुझे मिल गया है।
1: उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
2: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।
0: हाँ, मैंने अब महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षण विधि में निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
2: बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए, जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
1: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
2: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
1: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था। हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था, कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था, कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
2: ১৯০৮ की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।

0: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
1: धन्यवाद
2: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है।
1: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।
0: जी,
1: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
0: जी जी, धन्यवाद
1: धन्यवाद।
3: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मॉन्टेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
4: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी, जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है।
3: 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आईं और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया।
4: आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
3: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
4: छह मई 1952 को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।
3: विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।
5: आओ खेलें झटपट झटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षर।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अरशद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी at 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स के साथ साथ प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे ही अब आज की शांतिकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद।
1: तो कैसे? आज हाँ चलिए चलिए आप नहीं, पहले हालचाल बच्चों से पूछते हैं। हाँ,
0: वही तो मैंने कहा कि कैसे हमारे नन्हे मुन्ने साथी और नन्हे मुन्ने साथी ये सोच रहे होंगे आज कौन कौन सी दीदी हैं उनके साथ। तो हमारे साथ हैं
1: रितिका दीदी और हमारे साथ हैं प्रीति दीदी।
0: तो रितिका दीदी ये बताइए कि आज आप बच्चों से क्या करने वाली हैं, ऐसी खास बात? तब से आप कह रही थी आज मुझे बच्चों से बहुत सारी स्पेशल बातें करनी।
1: जी, आज बच्चों से स्पेशल बात ये करनी है कि पहली बात तो आज का दिन बहुत खास है, ठीक है? वो कैसे? क्योंकि आज के दिन हम मनाते हैं हिंदी दिवस, और हमें ये बात बच्चों से करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हिंदी का जो महत्व है हमारे जीवन में वो कितना आवश्यक है और हिंदी से दोस्ती कितनी ज्यादा आवश्यक है।
0: दीदी वैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, जब हिंदी हमारी भाषा है, हम सब बोलते हैं, तो फिर इस दिन को मनाने की जरूरत क्यों पड़ती है?
1: बहुत ही बढ़िया बात है, और ये बात मुझे हर दिन परेशान करती है। वो इसलिए क्योंकि आज का जो दौर है, आज के दौर में जो हम बाकी मतलब बाकी भाषाओं से मेरा मतलब है जैसे कि अंग्रेजी की तरफ जो है हमारी आने वाली पीढ़ी या जो इस वक्त हमारे परिवार में अभिभावक या माता पिता भी हैं, उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे जितनी ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे, जितना ज़्यादा इंग्लिश की तरफ अट्रैक्ट होंगे यानी आकर्षित होंगे, उतना ही हमारे बच्चे ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा इंटेलिजेंट समझे जाएंगे।
0: मतलब आपका ये कहने का ही है कि उनका व्यक्तित्व ज़्यादा अच्छा दिखेगा।
1: हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। भाषा सिर्फ एक माध्यम है, फिर वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कोई भी बात हो या कोई भी भाषा हो, जब आप उसे किसी भी भाषा में कहते हैं तो वो अपनी बात को कहने की एक माध्यम होता है। लेकिन जब हम बात हिंदी की करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हिंदी जब हमारी मातृभाषा है तो वो भी हमें उतनी ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए जितनी अच्छी तरीके से हमें अन्य भाषाएँ आती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा दीदी। और आप ये देखिए ना, जो हमारी हिंदी है उसमें हम वो समझने में भी आसान है, बोलने में भी आसान है, पढ़ने लिखने हर चीज में कितनी सहज और सरल है। तो क्यों ना हम इससे दोस्ती कर ले, और जो छोटी छोटी बातें हैं ना, अपने बच्चों को उनसे जोड़े हिंदी के माध्यम से, कि अगर उन्हें कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ तो वो ये बात कहें। जो अक्सर कहते हैं ना हैप्पी, तो हम लोग पूछ सकते हैं भाई कि हिंदी में पूरी बात कीजिए ना। किसी भी भाषा का आना बहुत अच्छी बात है, आप ढेर सारी भाषाएं सीखिए, पर अपनी भाषा से प्यार करना बहुत जरूरी है।
1: इसीलिए हम आज इस विषय पे बात कर रहे हैं कि हिंदी से दोस्ती कैसे होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए और कितनी ज्यादा जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के बहुत सारे दोस्त होंगे। कोई दोस्त आपके साथ खेलता है, कोई आपकी बातें सुनता है, तो कोई पढ़ाई में आपकी मदद करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी हिंदी भाषा भी हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त सकती है? जैसा कि दीदी ने कहा, हिंदी से दोस्ती मतलब हिंदी को समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सीखना और अपनी भाषा से प्यार करना।
0: और दीदी पता है, इससे दोस्ती करने का जो सबसे आसान तरीका है, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमें कहानियों की किताब दे दी जाती थी, जैसे छोटी छोटी कहानियाँ होती थी। अगर मुझे याद आ रही है जो हम उस समय पढ़ते थे, वीर बालक, हमारे देश की जो महान हस्तियाँ विभूतियाँ होती थी, हमारी महान विभूतियाँ, ऐसी पुस्तकें, पंचतंत्र की कहानियाँ, और जितने भी हमारे यहाँ जो भी महान व्यक्तित्व उनकी जो किताबें जब पढ़ पढ़ के ना, हमारी हिंदी बहुत अच्छी हो गई।
1: बिल्कुल। तो आप मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हिंदी जो है हमें कहानियों की सुंदर दुनिया से जोड़ती है।
0: सही कह रही है।
1: और हिंदी में पंचतंत्र की कहानियां हो, अकबर बीरबल के किस्से, प्रेमचंद की बाल कहानियां और अनेक रोचक पुस्तकें जैसे कि आपने भी बताया, इन सभी को पढ़कर मनोरंजन के साथ साथ अच्छी सीख भी मिलती है।
0: बिल्कुल सही कहा दीदी।
1: जो हिंदी है ना, हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। हिंदी के

0: माध्यम से हम विज्ञान, इतिहास, प्रकृति, खेल और दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। जितना अधिक हम हिंदी पढ़ेंगे, उतने ही नए शब्द और नई बातें सीखेंगे।
1: और दीदी, जो हिंदी है ना, वो हमें हमारी संस्कृति से भी तो जोड़ती है।
0: हाँ
1: हमारे जो लोकगीत हैं, जो इतनी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी गई हैं, जो हमारे जो हम त्योहार मनाते हैं उनकी जो कथा कहानियां हैं, आसपास जो लोक कथाएं प्रचलित हैं, वो सब हिंदी में हैं और हम उनसे आसानी से जुड़ जाते हैं। वो
0: बिल्कुल
1: अच्छे से, अगर कोई अगर आसपास जो लोक कथाएं हैं, अगर उनकी बात करें, जो हमारी दादी नानी सुना रही हैं उनकी बात करें, तो जो वो हिंदी में हम सुनते हैं ना, तो वो हम ज़्यादा उससे कनेक्ट, उससे जुड़ते ज़्यादा
0: बहुत
1: हैं। सही
0: बहुत
1: कहा ना?
0: बहुत सही बात और बहुत अच्छी बात आपने बोली। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं और इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिनको करके, छोटी छोटी आदतें अपना के हम हिंदी से दोस्ती कर सकते हैं?
1: दीदी, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं छोटी थी तो हमारी जो माता जी थी, माता जी हैं, वो हमें कहती थी कि रोज आप हिंदी के 5 शब्द लिखिए, उसके अर्थ लिखिए। और ऐसे ही कभी वो 5 मुहावरे देती थी, कभी ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे काम वो
0: जी
1: करती थी।
0: जी जी तभी तो मतलब रोज हिंदी का कोई मतलब जैसे हिंदी की कोई अच्छी कहानी पढ़ें या
1: हाँ
0: नए हिंदी शब्द सीखें और उनका वाक्यों में प्रयोग करें। तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आपने बताया कि आपकी मम्मी, आपकी माता जी आपसे करने को कहती थी, और
1: हाँ
0: साथ ही अपने दोस्तों और परिवारों में हिंदी में बातचीत करें, हिंदी की कविताएं और बाल गीत याद करें, हिंदी में अपनी छोटी छोटी कहानी और कविताएं लिखें, अपनी बात को भी हिंदी में जाहिर करना इससे ज्यादा बेहतर हो जाएगा।
1: सही कहा दीदी। देखिए, जैसा कि हम लोग हमेशा कहते हैं ना, कि हर भाषा, जो भी भाषा आप सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सीखिए, सबको सम्मान देना चाहिए, पर जो अपनी भाषा है, जो हमारी हिंदी है, उसको भी उतना ही प्यार और सम्मान मिलना चाहिए। सही कहा
0: बिल्कुल।
1: ना?
0: और हिंदी बोलने में या लिखने में गलती हो भी जाए तो इसको बहुत ज्यादा मतलब इसको लेकर इसको घबराना नहीं है,
1: हाँ
0: गलतियों से ही हम सीखते हैं। लेकिन होता ये है कि जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब हम इसमें बराबर रुचि लेंगे, तो नो डाउट, निसंदेह, ये बहुत अच्छी हो जाएगी। और केवल हिंदी एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और संस्कृति से जुड़ने का एक सुंदर माध्यम है। तो आज से
1: तो
0: हम हिंदी से दोस्ती करेंगे,
1: बिल्कुल
0: हिंदी
1: करेंगे।
0: पढ़ेंगे, हिंदी बोलेंगे और हिंदी में नए नए सपने देखेंगे।
1: और इसी बात पे हम अपने प्यारे नन्हे साथियों को सुनवाते हैं ये प्यारा सा उनकी पसंद का बाल गीत।

0: तो ऐसा है कि इस गीत में सिर्फ हम ही नहीं, हमारे आसपास के जितने भी दीदी भैया लोग थे सब खो गए.
1: जी, और
0: हाँ.
1: सब मस्त होके झूम रहे थे, हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, और किसी को समय का होश नहीं था। अब बात आती है कि जब हमने बात कर ली है कि हिंदी से दोस्ती कैसे करें, तो अब ये भी बात कर लेते हैं कि आज आओ जाने में हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में।
0: तो देखिए हमारे पास थोड़ा सा समय है दीदी, लेकिन अपने साथियों को सारी बातें जल्दी जल्दी बता देनी है.
1: तो आज हम धरती के एक ऐसे अद्भुत रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सुनकर भी हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के अंदर क्या होता होगा? क्या वहां भी बहुत गर्मी होती है? क्या धरती के अंदर से आग बाहर निकल सकती है? तो जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे और जानेंगे ज्वालामुखी के बारे में।
0: हाँ भाई, बच्चे सोच रहे होंगे ज्वालामुखी क्या होता है. ज्वालामुखी जो हमारी धरती है उसकी सतह पर या उसके नीचे बनी ऐसी दरार होती है जिसके माध्यम से धरती के अंदर से मौजूद गर्म पिघली हुई चट्टान, गैस और राख बाहर निकल सकती है. धरती के अंदर बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बच्चों. इस गर्मी के कारण कभी कभी कुछ चट्टानें पिघल कर एक गर्म और गाढ़े पदार्थ में बदल जाती हैं, इसे मैग्मा कहते हैं. और जब यही मैग्मा धरती के अंदर से बाहर निकल कर सतह पर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं.
1: और जब ज्वालामुखी फटता है तो धरती के अंदर कई जगहों पर मैग्मा जमा होता है, और जब उसके आसपास दबाव पड़ जाता है तो वही ऊपर की ओर रास्ता बनाने लगता है। और अगर धरती की सतह पर निकलने का रास्ता मिल जाता है तो मैग्मा गैस और राख बाहर बनकर बाहर निकल आता है। इसी को चट्टान इस घटना को ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। कई बार ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा बहुत धीरे धीरे बहता है, जबकि कुछ विस्फोट बहुत तेज और शक्तिशाली भी हो सकते हैं।
0: दीदी मैं आपको बताऊं, सभी ज्वालामुखी जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि पहाड़ जैसे दिखते होंगे, ऐसा नहीं है. सब ज्वालामुखी एक जैसे नहीं होते, कुछ तो पहाड़ जैसे दिखते हैं लेकिन कुछ चौड़े और कम ऊंचाई वाले भी होते हैं. इनका आकार इस बात पर निर्भर करता है कि उन जो उसमें से लावा निकल रहा है ना वो कितनी तेजी से बहता है.
1: तो ज्वालामुखी पाए कहाँ जाते हैं, इस बात का भी बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में वो रहता है कि कहाँ पाया जाता है। तो दुनिया में अनेक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कुछ समुद्र के अंदर भी होते हैं। प्रशांत महासागर के आसपास का क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। यहाँ बहुत से सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप आने वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। और भारत में भी ये ज्वालामुखी का उदाहरण मिलता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का बैरन द्वीप भारत का एकमात्र ज्ञात सक्रिय ज्वालामुखी है। तो याद रखिए बच्चों, धरती के रहस्य जितने गहरे हैं विज्ञान की दुनिया उतनी ही रोमांचक है। तो अगली बार जब हम मिलेंगे किसी नए और रोचक विषय के साथ, तब तक सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और प्रकृति का सम्मान करते रहिए। और तब तक के लिए बच्चों, जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

0: अभी बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रही थी नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: पापा लाइए 3000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट

0: पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
2: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी।

0: अब है आसान।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप हमारे प्रसारण सुन सकते हैं। और अब वक्त हो चला है युवाणी कार्यक्रम का।

नमस्कार दोस्तों, शाम के इस खूबसूरत वक्त में आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि श्रीवास्तव। आज की शाम दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसे हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि आखिर एक भाषा समय के साथ बदलती कैसे है। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से शब्द से, एक ऐसा शब्द जो हम सब ने न जाने कितनी बार सुना और इस्तेमाल किया होगा, चलो। हाँ हाँ, यही शब्द है, सिर्फ एक शब्द, लेकिन इसे थोड़ा अलग अलग तरीके से देखिए। चलो यानी आग्रह, चलो यानी सवाल, चलो यानी उत्साह। और अगर यही लिखा हो चलो एक इमोजी के साथ तो संदेश का पूरा भाव एकदम बदल जाता है, नहीं? यानी शब्द वही है, अक्षर वही है, लेकिन माध्यम बदलते ही उसका असर बदल जाता है। और यहीं से भाषा की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी शुरू होती है दोस्तों, क्योंकि भाषा सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, भाषा हमारे समय के साथ बदलती रहती है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस तरह लोगों से संचार करते हैं, संवाद करते हैं और जिन माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, भाषा इन सब के साथ अपना नया रूप बनाती है। कभी बातचीत आमने सामने हुआ करती थी, फिर चिट्ठियाँ आईं, फिर टेलीफोन आया, फिर रेडियो और फिर टीवी। और आज बातचीत का एक बड़ा हिस्सा हमारी हथेली में मौजूद एक स्क्रीन से होकर गुजरता है। लेकिन उस बदलाव ने सिर्फ संवाद का तरीका नहीं बदला, इसने हमारी भाषाओं को भी एक नया डिजिटल स्पेस दिया। आज हिंदी कहाँ कहाँ दिखाई देती है, किसी वीडियो के शीर्षक पे, किसी पॉडकास्ट की आवाज़ में, किसी न्यूज ऐप की हेडलाइन में, किसी ऑनलाइन क्लास में, किसी शोधकर्ता या रचनात्मक जो इंसान है उसकी रील्स में या वीडियोस में, किसी रिसर्च क्वेरी में, किसी टिप्पणी में, किसी मीम में या कभी किसी एक छोटे से वॉइस नोट में। और शायद इस कहानी का सबसे दिलचस्प बात यही है दोस्तों कि हिंदी डिजिटल दुनिया में सिर्फ पहुंची नहीं, हिंदी डिजिटल दुनिया के साथ विकसित भी हो रही है। उसके शब्द बदल रहे हैं, उसके इस्तेमाल के तरीके बदल रहे हैं, उसके माध्यम भी बदल रहे हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि उसके नए उपयोगकर्ता और निर्माता भी सामने आ रहे हैं, जो कि हैं युवा। दोस्तों, आज के युवाओं के सामने भाषा का चुनाव पहले जैसा आसान नहीं है। हिंदी और इंग्लिश को हमेशा दो अलग अलग डिब्बों में रखकर नहीं देखा जा सकता है। आज एक ही इंसान अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भाषा के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करता है, कभी देवनागरी में हिंदी, कभी रोमन लिपि में हिंदी, और कभी हिंदी इंग्लिश का मिश्रण, कभी वॉइस कम्युनिकेशन, और अब तो आ गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ जो हमारा भाषा है उसकी अंतःक्रिया। यानी तकनीक ने भाषा को सिर्फ दिखने का नया तरीका नहीं दिया है, उसने भाषा को इस्तेमाल करने के भी नई तरीके दिए हैं। अब सवाल ये है कि डिजिटल दुनिया हिंदी को सिर्फ एक बड़ी श्रोता या दर्शनगढ़ के दे रही है या हिंदी को एक नया रूप भी दे रही है, और अगर हिंदी का डिजिटल रूप बदल रहा है तो उसकी

दिशा कौन तय कर रहा है? तकनीक, मंच या फिर हम और आप? आज 14 सितंबर है और आज मना रहे हैं दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन आज 2026 में हिंदी के सामने चर्चा का परिदृश्य काफ़ी बदल चुका है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हिंदी कितने लोग बोलते हैं, सवाल ये भी है कि कितने लोग हिंदी में इंटरनेट पर अपनी बात रखते हैं, कितना ज्ञान हिंदी में उपलब्ध है, कितनी सामग्री हिंदी में बनाई जा रही है, और क्या आने वाली डिजिटल दुनिया में हिंदी सिर्फ सामग्री की भाषा होगी या ज्ञान, रचनात्मकता और नवाचार की भाषा भी बनेगी। इन्हीं सवालों के साथ आज की युवाणी की शाम समर्पित है हिंदी से हिंदुस्तान तक, युवा और हिंदी का डिजिटल सफ़र। लेकिन इस सफ़र की शुरुआत करने से पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के उस सफर की जो अब रेडियो, टीवी और किताबों से आगे बढ़कर डिजिटल दुनिया तक पहुंच चुका है। आज हिंदी दिवस है और आज की हमारी बातचीत सिर्फ हिंदी के अतीत को याद करने तक सीमित नहीं है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी का डिजिटल भविष्य कैसा हो सकता है और उसमें युवाओं की भूमिका क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल भारत और बहुभाषी भारत की। जब हम कहते हैं कि हिंदी डिजिटल हो रही है तो आखिर इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ इतना कि अब हम हिंदी में लिख सकते हैं यानी टाइप कर सकते हैं, या हिंदी में वेबसाइट्स और ऐप्स भी उपलब्ध हैं, या फिर इसका मतलब इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है? असल में डिजिटल दुनिया ने भाषा के साथ हमारे जो संबंध हैं उनको बहुत बदल दिया है। पहले किसी भाषा को जानने का एक बड़ा माध्यम था उसे पढ़ना, लिखना और बोलना। आज इसके साथ एक और चीज़ जुड़ गई है, डिजिटल भागीदारी, यानी आप अपनी भाषा में जानकारी खोज सकते हैं, उसी भाषा में जानकारी उत्पन्न भी कर सकते हैं, अपनी बात को प्रकाशित भी कर सकते हैं, दूसरों की बात सुन सकते हैं और सबसे ज़रूरी अपनी भाषा में डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। भारत में जैसे बहुभाषी देश में इसकी जो महत्व है या कह सकते हैं कि गुणवत्ता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। IAMAI और कंतर की इंटरनेट इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत के लगभग 870 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने इंडिक भाषाओं में इंटरनेट को इस्तेमाल किया था, यानी इंटरनेट जो हमारे उपयोगकर्ता हैं उन्होंने लगभग 99% इस पे काम किया है और इस भाषा को यानी कि इंडिक भाषा को यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। इसी रिपोर्ट के अनुसार शहरी भारत में लगभग 57% इंटरनेट उपयोगकर्ता ने इंटरनेट सामग्री के लिए इंडिक लैंग्वेजेस को पसंद किया है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको चुना है। अब इस आंकड़े को सिर्फ एक संख्या की तरह मत सोचिए, इसके पीछे एक बड़ा बदलाव छिपा है। इंटरनेट पर आने वाले भारतीय उपयोगकर्ता हमेशा ये नहीं चाहता है कि डिजिटल दुनिया उससे सिर्फ इंग्लिश में बात करे, अंग्रेजी में बात करे। वो चाहता है कि तकनीक उसकी अपनी जो भाषाई सापेक्षता है उसको भी समझे और यहीं से हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के लिए डिजिटल स्पेस का महत्व जो है वो बढ़ जाता है और सामने आता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि किसी भी भाषा में जो सामग्री है वो उपलब्ध होना और किसी भाषा में अपनी बात कह पाना, इन दोनों में फ़र्क होता है। मान लीजिए किसी मंच पर हिंदी में लाखों वीडियोस हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात तब होगी जब कोई व्यक्ति खुद हिंदी में वीडियो बनाकर अपनी जानकारी, अपने जो अनुभव हैं, अपनी रचनात्मकता है और अपना परिप्रेक्ष्य है वो दुनिया के सामने रख सके। यानी डिजिटल हिंदी की कहानी सिर्फ हिंदी की सामग्री की कहानी नहीं है, ये हिंदी की भागीदारी की भी कहानी है। और यही वो जगह है जहाँ युवाओं का जो योगदान है और भूमिका है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आज का युवा सिर्फ डिजिटल कंटेंट या सामग्री देखता नहीं है, वो सामग्री पे विचार भी करता है, वो सामग्री बनाता भी है, वीडियो बनाता है, पॉडकास्ट बनाता है, ब्लॉग लिखता है, सोशल मीडिया पर अपने विचार रखता है और शैक्षणिक सामग्री बनाता है और अपनी जानकारी दूसरों तक

पहुंचाता है। इसलिए आज हिंदी की जो डिजिटल यात्रा है, इसमें जो हमारे युवा हैं, सिर्फ श्रोता या दर्शकगण नहीं हैं, वह निर्माता भी हैं, वो योगदानकर्ता भी हैं और भाषा को आकार देने वाले भी हैं। और शायद यहाँ हिंदी के बारे में हमारी एक पुरानी जो समझ है उसको बदलने की थोड़ी ज़रूरत है। हिंदी का मतलब सिर्फ देवनागरी में लिखे हुए जो औपचारिक वाक्य होते हैं वो नहीं होता। डिजिटल स्पेस में हिंदी ने कई रूप लिए हैं और कई रूपों में दिखाई देती है। देवनागरी में, रोमन लिपि में, हिंदी इंग्लिश के मिश्रण में, ध्वनि में, वीडियो में और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI के साथ बातचीत में भी। किसी को दोस्तों ये बदलाव अच्छा लग सकता है और किसी को लग सकता है कि इससे भाषा का जो वास्तविक स्वरूप है वो बदल रहा है। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है, बदलना और कमज़ोर होना एक ही बात नहीं है। किसी भाषा का नया माध्यम अपनाना अपने आप में उस भाषा का पतन नहीं है। सवाल ये है कि उस नए माध्यम में भाषा कितनी ज़्यादा प्रभावशाली है, धनी है और उपयोगी बन रही है। और यही शायद डिजिटल हिंदी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगला कदम है। हिंदी में मनोरंजन सामग्री बहुत ज़्यादा हमको मिल जाती है और आप देखेंगे हर जगह अवेलेबल है ये। लेकिन क्या हिंदी में विज्ञान की अच्छी सामग्री उतनी ही ज़्यादा सुलभ तरीके से उपलब्ध है? क्या उच्च शिक्षा की पर्याप्त सामग्री हिंदी में उपलब्ध है? क्या तकनीक और AI को समझने के लिए हमारे पास गुणवत्तापूर्ण हिंदी स्रोत पर्याप्त हैं? क्या कानूनी, वित्तीय और नागरिकीय जानकारी हिंदी में इतनी आसानी से उपलब्ध है कि कोई व्यक्ति उसे समझकर विचारपूर्ण निर्णय ले सके? यहीं से डिजिटल हिंदी का अगला अध्याय शुरू होता है, क्योंकि किसी भी भाषा की डिजिटल ताकत सिर्फ इस बात से नहीं मापी जाएगी कि उसमें कितने वीडियोज़ बन रहे हैं, कितनी सामग्री बन रही है। ये भी देखना होगा कि उस भाषा में कितना ज्ञान उपलब्ध है और उस ज्ञान तक कितने लोग आसानी से पहुंच पा रहे हैं। और अब बात उस तकनीक की जिसने भाषा के सवाल को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आज हम AI से हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं, हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, वाणी को शब्द में बदल सकते हैं और शब्द को दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। यानी भाषा प्रौद्योगिकी अब सिर्फ सुविधा का विषय नहीं है, ये डिजिटल समावेश का भी सवाल बन चुकी है। भारत सरकार की भाषणी पहल भारतीय भाषाओं में डिजिटल पहुंच और भाषाई तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है दोस्तों, और इसमें अनुवाद और दूसरी भाषाएं जो हैं, भाषाई तकनीक है, उनके साथ AI का इस्तेमाल भी शामिल है। और इसका एक दिलचस्प हिस्सा ये है जो है भाषादान। भाषादान एक दोस्तों जन सहयोग पहल है जिसमें लोग जो भारतीय भाषाएं हैं इसके भाषाई निवेश और वाक डेटा में योगदान दे रहे हैं और कर सकते हैं। यानी AI को हमारी भाषाएं समझाने की प्रक्रिया में, हमारी ज़िंदगी में, अपनी आवाज़ों में शामिल कर सकते हैं हम। और अब लौटते हैं हमारे टॉपिक के दूसरे हिस्से पर, हिंदी से हिंदुस्तान तक। यहाँ हिंदुस्तान का मतलब दोस्तों सिर्फ भौगोलिक भारत की बात नहीं है, ये उस भारत की बात है जो भाषाओं में विविध है, अनुभवों में विविध है और डिजिटल सुलभता में भी अलग अलग स्तर पर मौजूद है। हिंदी इस पूरे भाषाई परिदृश्य में एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, जो हम कह सकते हैं कि संचार है, उसकी भाषा बन सकती है। लेकिन इसकी ताकत तब और बढ़ती है जब हिंदी दूसरी जो भारतीय भाषाएँ हैं उनके साथ प्रतियोगिता नहीं करती है बल्कि उनके साथ बातचीत करती है। क्योंकि भारत की भाषाई विविधता को कम करना हिंदी की उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि हिंदी की बड़ी उपलब्धि ये होगी कि उस विविधता के बीच संचार का एक मजबूत माध्यम बने और जो हमारी तकनीक है अलग अलग विविधता की भाषाएं जो हैं उनके बीच की दूरी को कम करने में मदद करे। और यहाँ फिर दोस्तों हम आएंगे युवाओं पर। किसी भाषा का डिजिटल भविष्य केवल सरकारी नीतियाँ या प्रौद्योगिकी संगठन तय नहीं करते हैं, उसे रोज़ इस्तेमाल करने वाले लोग भी उसे तय करते हैं। जब आप किसी विषय पर हिंदी में वीडियो बनाते हैं तो आप योगदान दे रहे हैं, जब आप किसी जटिल अवधारणा को अपनी भाषा में समझा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं, जब आप जो प्रामाणिक जानकारी है उसको हिंदी में साझा करते हैं तो आप योगदान दे रहे हैं, और दोस्तों जब आप किसी क्षेत्रीय अनुभव को हिंदी के माध्यम से व्यापक दर्शक वर्ग या ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं तो आप योगदान दे रहे हैं, और जब आप अपनी भाषा में तकनीक को समझने की कोशिश करते हैं तब भी आप उस डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए हिंदी दिवस

पर शायद हमें सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि हम हिंदी के लिए क्या कर सकते हैं। एक बेहतर सवाल हो सकता है कि हम हिंदी को डिजिटल दुनिया से किस काम की भाषा बना सकते हैं? मनोरंजन की? बिल्कुल। संचार की? जरूर, लेकिन ज्ञान की भी, नवाचार की भी, शोध की भी, और तकनीक की भी, और इससे ज़्यादा नई संभावनाओं की भी। एक भाषा की असली ताकत शायद इस बात में नहीं होती कि उसे कितने लोग मानते हैं, उसकी असली ताकत इस बात में होती है दोस्तों कि उसे कितने लोग इस्तेमाल करके अपने समय की नई कहानी लिख सकते हैं। हिंदी की कहानी भी अभी लिखी जा रही है, कभी किताब के पन्नों पर, कभी रेडियो की आवाज़ में, कभी सिनेमा के पर्दे पर, और आज डिजिटल स्क्रीन पर। और इस कहानी का अगला अध्याय शायद किसी बड़े संस्थान के कार्यालय में नहीं है, बल्कि किसी युवा के फ़ोन में लिखा जा रहा है, एक वीडियो में, एक पॉडकास्ट में, एक शोध पत्र में, एक ऐप में, एक AI इंटरैक्शन में, या शायद किसी ऐसे विचार में जिसके बारे में अभी भी हमने नहीं सोचा है। इसलिए हिंदी दिवस पर हिंदी को सिर्फ विरासत की तरह याद करना काफ़ी नहीं है, उसे संभावना की तरह देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस भाषा में एक पीढ़ी सपने देखती है, अगर वही भाषा तकनीक में अपनी जगह बना ले तो वो सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं रहती, वो भविष्य बनाने का माध्यम बन जाती है। और शायद यही हिंदी से हिंदुस्तान तक का असली डिजिटल सफ़र है। हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी उम्मीद के साथ, हमारी भाषाएं सिर्फ हमारे अतीत की पहचान न हो, बल्कि हमारे भविष्य की टेक्नोलॉजी की आवाज़ भी बने।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दोस्तों, कभी कभी किसी इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं होती कि उसने अपने जीवन में क्या हासिल किया, बल्कि ये होती है कि उसके जाने के बाद भी उसकी बातें लोगों को अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करती रहे। आज के प्रेरणापुंज में हम ऐसे ही एक व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, एक ऐसे सन्यासी की जिसने भारत को केवल दुनिया के सामने परिचित नहीं कराया, बल्कि भारतीयों को भी अपने भीतर की ताकत पहचानने का संदेश दिया। आज के हमारे प्रेरणापुंज हैं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में जन्मे स्वामी विवेकानंद का जन्म और बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। बचपन से ही नरेंद्र जिज्ञासु स्वभाव के थे। वो केवल किसी बात को इसलिए नहीं स्वीकार करते थे कि कोई बड़ा व्यक्ति उसे कह रहा है, वो सवाल करते थे, तर्क करते थे और सत्य को स्वयं समझना चाहते थे। भारत सरकार के एक आधिकारिक विवरण में भी उनके बचपन से ही आध्यात्मिक रुचि और ध्यान की प्रवृत्ति का उल्लेख मिलता है। लेकिन नरेंद्र नाथ के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने आगे चलकर उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। उनकी मुलाकात हुई श्री रामकृष्ण परमहंस से। नरेंद्र नाथ के मन में ईश्वर और सत्य को लेकर कई सवाल थे। वो केवल धार्मिक बातें सुनकर संतुष्ट नहीं होते थे, वो जानना चाहते थे क्या ईश्वर को वास्तविक में जाना जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस के साथ उनके संबंध धीरे धीरे गुरु और शिष्य के संबंध में बदल गए। रामकृष्ण ने नरेंद्र नाथ के भीतर छिपी प्रतिभा और नेतृत्व की क्षमता को पहचाना और 1886 में रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद नरेंद्र नाथ और उनके कुछ युवा साथी एक साथ रहने लगे और उन्होंने संन्यास का मार्ग अपनाया। आगे चलकर नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन विवेकानंद जी का संन्यास सिर्फ अपने लिए आध्यात्मिक मुक्ति खोजने की सीमित नहीं था, यही बात उनके जीवन को खास बनाती है। लगभग 1890 से उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों की यात्राएं शुरू कर दी। उन यात्राओं में उन्होंने भारत को बहुत करीब से देखा, राजमहल भी और झोपड़ियां भी, विद्वान भी और आम लोग भी, समृद्धि भी और गरीबी भी, और इन यात्राओं ने उनके विचारों को बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो केवल आध्यात्मिक बातें पर्याप्त नहीं होंगी, आम लोगों को शिक्षा, आत्मविश्वास और बेहतर जीवन के अवसर चाहिए। और उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबों का पढ़ने का नाम नहीं है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दे। यहीं से विवेकानंद के विचारों में एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, मनुष्य की सेवा। उनके लिए आध्यात्मिकता का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था। अगर सामने कोई भूखा है, गरीब है, अशिक्षित है या किसी सहायता की ज़रूरत में है तो उसकी मदद करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यानी धर्म केवल मंदिर तक नहीं, इंसान तक भी पहुंचना चाहिए। और फिर आया वर्ष 1893। विवेकानंद अमेरिका के शिकागो पहुंचे, जहां वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स आयोजित होने वाला था। 11 सितंबर 1893 को उन्होंने वहां अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। उनके शुरुआती संबोधन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ने श्रोताओं का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। उस भाषण में उन्होंने भारत की धार्मिक दार्शनिक परंपरा की बात शुरू करते हुए धार्मिक सहिष्णुता और अलग अलग मार्गों के सम्मान पर जोर दिया। लेकिन विवेकानंद की कहानी सिर्फ शिकागो के उस भाषण की कहानी तक सीमित नहीं है। असल

थी वो भाषण उनके लंबे जीवन प्रयास का एक हिस्सा थी। शिकागो के बाद उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में कई वर्षों तक वेदांत के विचारों को समझाया और लोगों से संवाद किया। फिर 1897 में भारत लौटे और भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने विचारों को एक संस्था के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया। 1 मई 1857 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक शिक्षा देना नहीं था, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा, राहत और समाज सेवा जैसे कार्यों के माध्यम से लोगों की मदद करना भी था। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद को केवल एक सन्यासी या धार्मिक वक्ता के रूप में देखना उनके व्यक्तित्व को बहुत छोटा कर देना होगा। वो एक विचारक थे, वो एक शिक्षक थे, वो एक समाज सुधारक थे और सबसे बढ़कर वो युवाओं में आत्मविश्वास जगाने वाले व्यक्तित्व थे। आज का युवा जिस दौर से गुजर रहा है उसमें जानकारी की कमी नहीं है। आज हमारे पास पढ़ने के लिए हजारों किताबें हैं, सीखने के लिए हजारों माध्यम हैं और अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए अनगिनत मंच हैं। फिर भी एक चीज़ की कमी अक्सर महसूस होती है, अपने ऊपर विश्वास की। हम कई बार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, किसी और की सफलता देखकर अपनी यात्रा को छोटा समझ लेते हैं, एक असफलता के बाद सोच लेते हैं कि शायद हम इसके लायक ही नहीं थे। विवेकानंद का जीवन इसके बिल्कुल उलट संदेश देता है। उन्होंने युवाओं से केवल बड़े सपने देखने को नहीं कहा, उन्होंने चरित्र, आत्मविश्वास, अनुशासन और कर्म को महत्व दिया। उनकी सोच का मूल भाव था कि मनुष्य के भीतर संभावनाएं मौजूद हैं और उन्हें पहचान कर विकसित किया जाना चाहिए। यही विचार उनके वेदांत संबंधी चिंतन में भी दिखाई देता है और शायद इसीलिए उनकी प्रासंगिकता 19वीं सदी में खत्म नहीं हुई है। आज भी जब कोई युवा अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हो, तब उसे लगे कि परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं हैं, जब उसे अपने भीतर की क्षमता पर संदेह होने लगे, तब विवेकानंद का जीवन एक बहुत ही सरल बात याद दिलाता है कि अपनी क्षमता को पहचानना भी एक तरीके का संघर्ष है और उस संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि वो संघर्ष ही आगे बढ़ने की शुरुआत है। दोस्तों, आपने जीवन में उन्होंने कई काम किए और अपने जीवन के उन 40 वर्षों में उन्होंने जितना काम किया, जितने लोगों को प्रभावित किया और भारत तथा भारतीय विचारों को दुनिया के सामने जिस तरह प्रस्तुत किया, उसने उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली आधुनिक व्यक्तित्वों में स्थान दिया। शायद आज के प्रेरणापुंज के लिए इससे बेहतर संदेश क्या हो सकता है कि उम्र इतनी कम थी उनकी, ये हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि उस उम्र में हम अपने भीतर की क्षमता के साथ क्या कर सकते हैं। तो आज स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए बस इतना ही। अपने सवालों से डरिए मत, अपनी असफलताओं से घबराइए मत और सबसे जरूरी दोस्तों, अपने भीतर मौजूद उस शक्ति को कभी छोटा मत समझिए जिसे अपनी आप से पूरी तरह से आपने पहचाना नहीं है।

तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम के अंत में एक Q&A सेशन लेके आते हैं, तो कल का हमारा प्रश्न था, भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ खोला गया था? जिसका उत्तर है मुंबई। और आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आप अपने उत्तर दे सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर 800-492-6250 पर, और हमारी ईमेल आईडी yuvvanieaad@gmail.com पर। तो दोस्तों, आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये Q&A सेशंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा थ्रू आउट प्रोग्राम है वो भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए, और जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये ध्यान दीजिए कि जब भी आप शुरू शुरू में जब तैयारी करते हैं तो आप पूरा ऊर्जा से भरे रहते हैं, लेकिन धीमे धीमे वो कहीं ढीली पड़ने लगती है। तो याद रखिए, लगातार मेहनत करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर समय ऊर्जा से भरे रहें। भले ही आपने डिसाइड किया है कि आप 4 यूनिट कवर करेंगे, अगर 4 में से 4 नहीं हो पा रही है तो 2 ही सही। तो कंसिस्टेंसी यानी लगातार मेहनत करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे युवाणी प्रोग्राम के साथ। और प्रोग्राम में चलते चलते बाय बाय करते करते आपको सुना देते हैं ये गीत।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा हमारे फोन नंबर 8004926250 पर। मिलेंगे आपसे फिर अगले कार्यक्रम में ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारे गीतों के साथ। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, दीजिए मुझे इजाजत अंजलि श्रीवास्तव को। नमस्कार।

हमारी युवा श्रोता भी अपना युवाणी कार्यक्रम सुन रही थी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं हिंदी में समाचार। समाचारों की बस कुछ प्रतीक्षा कीजिए।

0: Al Sharma. देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
1: भारतीय साहित्य एक विकसित सत दल कमल की

0: की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं, किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कोगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.
4: मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। दीजिए आप सुनिए इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। नौ बजकर 30 मिनट पर हम आपको सुनवाएंगे गजलों का प्रोग्राम कहकशा।

बजे और रात्रि 10 बजे फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में पंडित रामकृष्ण का क्लैरियोनेट वादन आप सुन सकेंगे।

6:30 पर ग्रामीण भाइयों के लिए पंचायत घर कार्यक्रम में शैलेश कुमार वर्मा के गाए लोकगीत के अलावा किसान भाई सुनेंगे नंदलाल से लोकभाषा कविता पाठ। इसके अलावा पंचायत घर कार्यक्रम में ही एक बातचीत सुनवाई जाएगी, विषय होगा कृषि व्यवसाय में एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस की महत्ता। आशुतोष चतुर्वेदी से दिनेश चंद्र पांडे की ये बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। सात बजकर 30 मिनट पर हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे तकनीकी के दौर में हिंदी भाषा के प्रसार में चुनौतियां। इस विषय पर आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ पांडे से दीपक कुमार राय की बातचीत। प्रसारण समय याद रखिएगा 7:30। आठ बजे हम आपको सुनवाएंगे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये थी जानकारी सभा में प्रसारित होने वाली हमारे शेष कार्यक्रमों की, और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण इस तरह से हैं। कल रात 9:30 पर गजनों का प्रोग्राम नष्ट किया जाएगा कहकशा। रात 10 बजे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हम रिले करेंगे खेल दर्पण कार्यक्रम। सुबह 6:05 पर शामिल होइए हमारे नियमित प्रसारित होने वाली भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में। विचार बिंदु सुबह 6:30 पर इस कार्यक्रम में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के विचार प्रसारित किए जाएंगे। किसान भाइयों के लिए सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत होगी। बातचीत का विषय होगा इस पखवाड़े के कृषि कार्य। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम रोज की तरह सुबह 6:45 पर हम लेकर हाजिर होंगे। कल के इस कार्यक्रम में डॉक्टर आशुतोष राय की वार्ता होगी, विषय होगा ईयरफोन के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाली हानियां। सुगम संगीत के प्रोग्राम में सुबह 9:50 पर विभा विश्वास और शाम 7:45 पर कीर्ति चौधरी की गाए भजन और गीत सुनवाए जाएंगे। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7 बजे लेकर हम आएंगे, और फिल्मों से ली गई चुनिंदा भक्ति रचनाएं 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के हमारे प्रसारण में सुबह 7:30 पर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र और रात्रि 10:30 पर पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन। इसके अलावा दिन में 12:15 पर पंडित गोपाल दास का क्लैरियोनेट वादन आप सुन सकेंगे। सुबह 8:45 पर हमारा इंटरैक्टिव कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:30 पर, कलाकार होंगे उदय राज सिंह और उनके साथी। इसके अलावा दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में हमारी ग्रामीण बहन सुनेंगी रश्मि टंडन की गाय लोकगीत के अलावा पूर्णिमा जेटली से की गई बातचीत। बातचीत का विषय है माँ बाप को सम्मान दे सामान नहीं। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे कृष्ण कुमार सत्यार्थी। 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में हमारे युवजन चर्चा सुनेंगे। चर्चा का विषय रहेगा मोबाइल से मोहब्बत या मजबूरी, क्या युवा डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा करियर से जुड़ी हुई बातें भी युवा साथियों से साझा की जाएंगी। शाम 6

30 मिनट पर पंचायत घर कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण भाई राधेश्याम कुशवाहा और साथियों के गाय लोकगीत के अलावा श्याम प्रसाद पांडे से रामायण पाठ सुनेंगे। 6:50 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी और 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में वार्ता प्रसारित होगी जिसका विषय होगा दूरदर्शनम जन माध्यमस्य विश्वसनीय स्वरः। तो श्रोताओं ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाली हमारे शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की।

0: आप इस वक्त आकाशवाणी प्रयागराज के साथ हैं और आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं।
1: ये आकाशवाणी है।
0: हम अपने सभी सुनने वालों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। आकाशवाणी की अपनी एक गौरवशाली परंपरा रही है जिसमें हिंदी को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। हमारे विभिन्न प्रसारणों में हिंदी की प्रमुखता को दर्शाता ये गाना।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचारों का। अब से थोड़ी ही देर में
0: सुनहरी यादों का एल्बम

0: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: अवधेयं यत् अद्य हिंदी दिवसः आदेशम् आयोज्यते। गतशताब्दस्य ऊनपञ्चाशत्तमे वर्षे संविधानसभया देवनागर्यां निबद्धा हिंदी भारतस्य राजभाषा रूपेण स्वीकृता। तदा आरभ्य प्रतिवर्षं सितंबर मासस्य चतुर्दशे दिवसे हिंदी दिवसस्य आयोजनं विधीयते। सर्वकारेण उक्तं यत् विंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षम् आरभ्य नवसु राज्येषु सप्तचत्वारिंशदुत्तरैकशतम् अंगारखण्डानां शघोष विक्रयः कृतः। कृष्णांगार मंत्रालयेन उक्तं यत् अनेन प्रतिवर्षम् अनुमानतः सार्धसप्तचत्वारिंशत् सहस्रकोटि रूप्यकाणां आयः अथ चतुर्दशांशोत्तर नवलक्षं वृत्तयः जनयिष्यन्ते। मंत्रालयेन उक्तं यत् गते वित्तीय वर्षे आवंटित वाणिज्यिक खनिभ्यः प्राप्तः सकलायः प्रायः 390 कोटि रूप्यकाणि आसीत्। भारतेन ह्यः ओमान तटे MTEL गया इति वाणिज्यिक पोते जातस्य आक्रमणस्य निन्दा कृता। एकस्यां विज्ञप्तौ ओमान देशे स्थितेन भारतीय दूतावासेन उक्तं यत् अद्यावधि 13 भारतीय दल सदस्याः सुरक्षिताः उद्धृताः। यद्यपि एकस्य विलुप्तस्य भारतीय नागरिकस्य अन्वेषणं उद्धारकार्यं च निरन्तरं विधीयते। दूतावासेन उक्तं यत् स्थितिः सूक्ष्मतया निरीक्ष्यते, अन्वेषण उद्धारकार्ये च ओमान अधिकारिभिः सह समन्वयेन विधीयते। भारतीय दूतावासेन भारतीय नागरिकान् उद्धर्तुं लब्धस्य सहयोगस्य कृते ओमान प्राधिकारिभ्यः धन्यवादः अपि ज्ञापितः। जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर ज्वेरेवः यूएस मुक्त टेनिस क्रीडायाः पुरुष एकलवर्गस्य स्पर्धां विजितवान्। सः गतरात्रौ न्यूयॉर्क नगरे अमेरिकायाः बेन सेल्टन इत्येनं 7-3, 7-6, 7-2 इति अंकैः पराजितवान्। विजयोऽयं 26-2000 वर्षे अलेक्जेंडर ज्वेरस द्वितीयः प्रमुखः विजयः वर्तते। अन्ते एकवारं मुख्यवार्ताः पुनः। वृक्षदेशानां नेतारः सामाजिक आर्थिक विकासस्य, राष्ट्रीय सुरक्षायाः, सर्वेषां राष्ट्राणां कल्याणस्य च कृते ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्णा आधारशिला इति प्रतिपादितवन्तः। प्रोक्तं च यत् प्रौद्योगिक्याः महत्वपूर्ण खनिनां सशक्तीकरणं च प्रगतौ बाधकं भवितुम् अर्हति। अपि च जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर ज्वेरेवः यूएस मुक्त टेनिस क्रीडायाः पुरुष एकलवर्गस्य स्पर्धां विजितवान् इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। अब ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुने, पंचायत घर।

0: पंचो राम राम।
1: आहो रानू भैया, का हाल चाल बा हो खेती किसानी के भैया?
0: देखो हो बैजू भैया, खेती किसानी के हाल समाचार तो ठीक है, और दऊ रजा भी देखा है, यह समय का नाम से अपन कृपा बरसाए रहन।
1: भाई ऐसा साल तो विधि विधान बन गया बा धाने का, काहे से कि भाई बराबर पानी धान के मिला जात बा, अलग
0: हाँ
1: से सिंचाई की जरूरत नहीं पड़त बा, एनाते धान का बढ़वार भी बढ़िया बा, फसल भी बढ़िया बा, न कोनो रोग दोख बेरामी भी नहीं ना हो।
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: हम तो कही किसान भाई, लेकिन यह है संझा सवेरे देखत रहें कोनो कमी भी हो, तुरंत जोन बाटे होकर भाई उपचार करे, कृषि वैज्ञानिक भैया हरे जैसे बतावथिन।
0: हाँ हाँ हाँ
1: एकरे अलावा और भी जोन खेती किए बाटन भैया, चाहे ज्वार बाजरा मक्का हो या साग सब्जी खेती है, तो ओकर भी देखभाल जरूरी बाटे करत रहे चाहे।

0: वाली
1: कही
0: बात
1: गया हो बैजू
0: है।
1: भैया। अच्छा एक बात और है,
0: वो का हो।
1: देखा भैया आज जो है 14 सितंबर है, तो
0: हाँ।
1: भैया आज हिंदी दिवस भी है।
0: कही गया भैया, देखा आज हिंदी दिवस सहाय है, आ हिंदी बोलब आसान भी बाटे, हमरे तोरे भाई देश के भाषा भी बाटे है। तो हिंदी
1: हाँ।
0: दिवस मनावे भैया, ये मनावा जात है नाते कि भैया हो 14 सितंबर
1: हाँ।
0: 1949 के अपन संविधान सभा जवन रहा भैया,
1: हाँ हाँ हाँ
0: देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा के देश के राजभाषा स्वीकार के है रहा।
1: एकदम सही कहे भैया। अच्छा एक बात और है, देखे पहला आयोजन जोन भर रहन भैया वो 14 सितंबर 1953 के मनाए गए रहन, जोन आधिकारिक दृष्टि से रहन।
0: अच्छा।
1: और हम तो यह कह भैया, देखे जोन एक प्रमुख उद्देश्य है
0: हाँ,
1: ये है कि भाई दुनिया में हिंदी भाषा के प्रति
0: जागरूक
1: जागरूकता,
0: हो लोग,
1: हाँ
0: उनका
1: लोग
0: सम्मान मिले,
1: सम्मान
0: उनका
1: मिले।
0: विस्तार हो, प्रचार प्रसार हो। तो
1: हाँ।
0: भैया हो ये नाते देखे में आवत है, आजकल देखा है आज के दिन जब जगह जगह देखा, खास करके स्कूलन में बंद प्रतियोगिता होत, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण, हाँ
1: हाँ।
0: तमाम तरह के प्रतियोगिता भी होत है हिंदी में लिखे के जौन बाटे है। और भाई देखा हिंदी ऐसा भाषा है कि जौन लिखा वही पढ़ा, कुछ
1: हाँ।
0: भाषा मतलब लिखा ब कुछ पढ़ाई लागत हो कुछ होकर।
1: एकदम सही कहे भैया। अच्छा एक बात और है भैया, देखे जोन हिंदी है वो अपने उत्तर भारत के जोन है जान कहा जाता है भैया।
0: सही कहे भाई।
1: अच्छा मूल रूप से यह भाषा हमें सबके मिला है, तो ऐसे भैया सब लोग आपन जोन क्रिया है, जोन कार्य है, कोशिश ये करें कि अधिक से अधिक अपने भाषा में करें।
0: सही कहे भैया। आ एक बात और, हिंदी खाली भाषा ना ही है, ये ऐसा माध्यम है कि ऐसे एक दूसरे के संस्कृत साहित्य भावना सब कुछ समझे के अवसर मिलत भैया, एक भाव व्यक्त होत हो हमें जोन बाटे।
1: हाँ।
0: तो भैया हो हिंदी दिवस किसान भाई लावत है, मार किसान भाई देखा हिंदी में बोलबे करथिन भाई, अपने लड़कियन का देलन के भी प्रयास करें कि हिंदी में लिखें पढ़ें जोन बाटे काम करें। तो भैया हो देखा आज और काका सुनावत है भैया।
1: भैया देखा आज अपने पंचायती में है जो आज के हम से लोग भाषा कविता पाठ है भैया, वो है
0: हाँ
1: नंदलाल शर्मा भैया का, रिपीट है और बातचीत है भैया कृषि व्यवसाय में एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस की
0: महत्ता
1: महत्ता,
0: पे भैया।
1: आशुतोष चतुर्वेदी जी से दिनेश चंद्र पांडे भैया का बातचीत है।
0: तो भैया हो ये सब तो सुनवाई जाए, मन वही हाल में छूछ पै लगी जीव झन्न। तो
1: हाँ।
0: भैया हो जब तक पंचायती में ढोल मजीरा नहीं बाजते ना, मजा नहीं आवत।
1: एकदम सही कह भैया। तो आज भैया लोकगीत है शैलेश कुमार शर्मा का, विकास गीत देशवा में नाचेला, हम सोचे थे
0: हाँ
1: किसान भैया बहनी हरण के सुनवा दिया जाए।
0: सुनवाओ भैया सुनवाओ।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: कई भैया हो, हाँ, रानू भैया देखा ही गौनई भी भाई, शैलेश कुमार शर्मा के विकास गीत और सनेश भी किसान भाई,
4: एकदम सही कहे भैया।
3: अब देखा खेती किसानी के बात होत रही भैया हो, आज जो जमाना आएगा व्यवसायिक खेती के,
4: हाँ।
3: खेती व्यवसायिक तरीके से ना करवा भैया ना तो जीवन उपाय ना होए। अब ढंग से व्यवसायिक खेती किया जाए, चाहे जो पशुपालन काम कह के मछली पालन

0: जाने और कौनों में तकनीक लगाए के
1: हाँ हाँ
0: भैया, तो
1: हाँ
0: जौन देश परदेश भागे पड़त ना भागे पड़े भैया।
1: एकदम सही कहे भैया। अच्छा एक बात तो रहे, ऐसे आमदनी भी बढ़ जाते
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: साथे साथे समय भी कम लागत
0: समय
1: हो।
0: भी कम लागत, आमदनी बढ़ जात भैया, सबके रोजी रोटी मिल जात है।
1: हाँ
0: आ एक
1: हाँ
0: भैया हो खुशहाली भी आवत घर में,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो ये भैया हो का है का नहीं कुछ न देखा, ये बात बत कही मैं आज बाहर। कृषि व्यवसाय में एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस की महत्ता आशुतोष चतुर्वेदी से दिनेश चंद्र पांडे के बात बत कही भाई बे,
1: हाँ हाँ हाँ
0: किसान भाई एक सुनई और समझें।
1: सुनवाए दें भैया।
2: भैया आशुतोष चतुर्वेदी जी, आप जानकार हैं और ख़ास तौर पे खेती किसानी के संबंध में आप विशेषज्ञ हैं। एक बात ये होता है कि भैया देखा हर समय नई नई विधि आवत रहत है, नई नई तकनीक का इजाद करत है वैज्ञानिक भैया है जिसे आप सब मिलके, और उनमें अच्छा पैदावार हो, किसान अच्छा लाभ ले, अच्छी खेती करे, एकरे लिए सरकार की ओर से भी समय समय पे योजना परियोजना चलाई जात रहा था। ऐसा एक परियोजना के बारे में जानकारी मिली है कि जैसे ओके नाम रखा हुआ है कि एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस।
0: जी
2: ये भैया देखा एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस स्कीम का है,
0: जी
2: ऐसे किसान भैया रंग के कैसे लाभ मिले। तो
0: जी
2: सबसे पहली बात तो जरूरी ये है कि भैया हम सब ये जानी कि एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस का चीज है,
0: जी
2: ठीक है भैया?
0: जी
2: तो एक के बारे में आप बताओ।
0: भारत सरकार के जो ये कृषि मंत्रालय है, एके द्वारा इस योजना को चलाया इसमें जा रहा है, जो कि हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान है, तो उसी के थ्रू तत्वाधान में ही ये परियोजना फलित और फूलित हो रही है।
2: जी जी
0: तो अगर इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत तो सन 2002 में ही हो गई थी, लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई थीं,
2: जी
0: कि जैसे उसमें ऐसा हो गया था कि आगे के समय में किसान को जल्दी अपना पेमेंट, लोन का पेमेंट देना पड़ता था। फिर उसके बाद किसान को ऐसा था कि पैसे कम मिलते थे, किसी भी योजना अगर वो कोई अपना लगाना चाहे, कोई मान लीजिए कोई सा भी सीड प्रोडक्शन यूनिट शुरू करना चाहे, या अपना पोल्ट्री बकरी पालन करना चाहे, मुर्गी पालन करना चाहे, तो उसके लिए पैसे की उसके पास कमी थी। शुरुआत में तो वो पैसा लगा नहीं सकता है, और उस शुरुआत के में पैसे लगाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी पड़ती है। तो उसको देखते हुए सरकार ने ये योजना बनाई कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे किसान को, या जो हमारे कृषि से रिलेटेड जितने भी हमारे छात्र हैं, अगर वो आगे उद्यमी बनना चाहते हैं, क्योंकि कृषि उद्यम आज के समय में बहुत जरूरी चीज़ हो गई है। इस आज के स्टार्टअप इंडिया के, मेक इन इंडिया के दौर में कृषि अगर हमारी पीछे रह गई, कृषि को हम कृषि की तरह हट के अगर हम उद्यमी की तरह सोचेंगे, तब वो हमारी चीज़ें आगे जाएंगी। तो उसी को चलाने के लिए एक कृषि उद्यम का पूरा एक पर्यावरण पूरे देश में बने, पूरा माहौल बने, जिससे केंद्र सरकार ने उस ये इस योजना को चलाया। और 2018 में फिर उस योजना को उसने फिर से परिभाषित भी किया, नई चीज़ें उसमें जोड़ी भी, और अभी तक के इसके अंडर अगर हम बात करें तो बहुत सारे, लगभग पूरे भारत में 75,190 लोग जो हैं इस योजना के द्वारा जो है प्रशिक्षित हो चुके हैं, जिसमें से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो 16,802 जो कैंडिडेट थे वो प्रशिक्षित किए जा सके हैं, जिसमें 16,802 में से 7,954 ने अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर दिया है,
2: जी।
0: जो कि एक बहुत हमारे हिसाब से बहुत अच्छा स्टार्टअप है कृषि के क्षेत्र में। इसमें इस योजना में ऐसा सरकार ने किया है कि अपने अपने सारे पूरे देश में एक एक नोडल इंस्टीट्यूट बना दिए हैं, जिसमें किसान या कृषि जो स्नातक हैं वो जाके अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं। 45 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें उन्होंने अब डिवाइड कर रखा है 4 भाग में, कि 6 दिन में जो है कैसे बिजनेस शुरू करना है, क्या बिजनेस से जानकारी होगी वो बताएंगे, बीच के 8 दिन में जो है क्या क्या विशिष्ट और तकनीकी कौशल क्या है उसके बारे में बताएंगे, बीच के जो 25 दिन होंगे उसमें जो है प्रबंधन और उद्यमिता, जो कि बहुत ज़रूरी है, पूरी ट्रेनिंग का पार्ट है, उसमें उसमें बताएंगे कि कैसे आप प्लानिंग करें, मार्केटिंग कैसे करें, क्योंकि सही दाम अगर फसलों के नहीं मिलेंगे तो वो भी एक बड़ी चीज़ें, बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं किसान के लिए। उसके बाद एक आखिरी के 6 दिनों में बताएंगे कि कृषि उद्यम हेतु प्रसार योजना आप कैसे बने, उसके थ्रू आपको

0: कोई अगर ICR का इंस्टीट्यूट है वहाँ विजिट कराएंगे, कोई समझ मान लीजिए कि कोई आपका एक्सपोजर विजिट हुई KVK की हुई, तो ऐसे ऐसे करके पूरा 45 दिन की ट्रेनिंग है।
1: भैया ये कुल मिलाए के लब्बो लबाव ये है कि ये स्कीम जोन चलत बा, एक मतलब यह हुआ कि खेती को सामान्य रूप से जैसे खेती होत रही है वहाँ हिसाब से न कह के एक व्यवसायिक खेती
0: जी
1: के
0: जी
1: रूप में
0: जी
1: एक
0: बढ़ावा
1: तैयार
0: दें।
1: करें, एक बढ़ावा दें,
0: जी
1: जहिया से कि भाई देखा खेती तो होबे करे
0: जी जी जी
1: और व्यवसायिक रूप से करेंगे तो मुनाफा ज़्यादा
0: बिल्कुल
1: होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जौन आदमी रोजगार के लिए देश परदेश भागत व
0: जी
1: तो
0: जी
1: वो स्थिति न हो पावे,
0: जी जी
1: अपन गांव में ही खेती के माध्यम से ही रोजगार खुदव करें
0: जी जी
1: और
0: जी
1: दो चार 10 आदमी के भी रोजगार
0: जी
1: दें।
0: जी जी जी
1: अब एक बात अहम सवाल ये आवत है भैया कि भाई देखा स्कीम बहुत बढ़िया है, इससे लाभ बहुत लोगन को होई, लेकिन ये जानब जरूरी है कि भाई यहाँ स्कीम में लाभ ले कौन लाभ ले सकत,
0: जी
1: एक कौन आदमी पात्र बा कि ओका
0: जी
1: लाभ
0: जी
1: मिली,
0: जी जी
1: ओकरे
0: जी
1: लिए ओकर भाई योग्यता का होय के
0: जी
1: चाहिए,
0: जी
1: ओके विशेषता का होय चाहिए कि जेका ओका लाभ मिल सके,
0: जी
1: एक के बारे में बताऊँ भैया।
0: अब बात करें अगर योग्यता की, तो इसमें सरकार ने कहा है कि जो भी हमारे कृषि उद्यमी हैं जो लगभग कक्षा 12 कम से कम पास हो चुका है
1: जी
0: कृषि विभाग कृषि से, या तो फिर ग्रेजुएशन कर चुका हो एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारी डिग्री हैं,
1: जी
0: जैसे कि एग्री डेयरी साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज में अगर पढ़े हैं, होम साइंस पढ़े हैं, बायोटेक पढ़े हैं, वानिकी पढ़े हैं, फूड टेक्नोलॉजी है, BSc अगर बॉटनी से है, जियोलॉजी से है, या रसायन विज्ञान से है, या तो फिर कोई डिप्लोमा कोर्स करे हुए हैं कम से कम, लेकिन उमा 50% उमा नंबर हुए चाहिए ई के तहीं, और या तो फिर कोई 12वां एग्रीकल्चर स्ट्रीम में पढ़े हुए
1: अच्छा
0: और, या ये तो हमारे पढ़ाई लिखाई की बात हुई गई।
1: जी
0: अभी लाभान्वित कैसे होंगे उसके लिए है कि कम से कम जो पात्र उम्मीदवार हैं उसमें तकनीकी सलाह एक तो मिलेगी आपको नोडल इंस्टीट्यूट से, नवाचार इनोवेशन अगर कुछ है तो मिली। अब अगर सबसे बड़ी बात है किसान के लगे सब कुछ है, तकनीक भी कर रहे अपन ज्ञानों है उके लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कमी होत है पैसा की।
1: जी
0: अगर पैसा नहीं है और वो बहुत बड़ा डेयरी फार्म लगावा चाहत है
1: जी
0: तो वो कितने वो कुछ ना कह पाई। तो उमा यू सरकार कहे से कि कम से कम अगर एक आदमी है तो उका 20 लाख तक का लोन हम दयाबे,
1: अच्छा
0: और अगर 5 लोगन के समूह है ग्रुप है तो 1 करोड़ तक के लोन हम दे सकते हैं।
1: अच्छा
0: अब अगर एक बात और कहे से कि अगर 10 लाख तक के कोनो अमाउंट ले तो ऊपर हम कौनो जो है जमानती राश न लावे,
1: अच्छा
0: मतलब तुमका कुछ बंधेज में नहीं रखा है क्या किसान का। और अगर वो सबसे बड़ी चीज वो है कि उका तुमका 3 से 10 साल में वापस दिए है, यहाँ
1: जी
0: नहीं कि तुरंत दिए है। तो वो सबसे बड़ी चीज वो है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपका 36% सब्सिडी है,
1: जी
0: मतलब 100 में आपका 36 रुपया न दिए पड़ी बाकी दिए पड़ी। और अगर आप औरत हो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करत हो। अब इसमें यह है कि 18 से लेके 60 साल तक के लोग जो हैं वे
1: जी
0: पात्र हैं, तो कम से कम 18 से जो ज़्यादा है और 60 साल से कम है वे सारे लोग इके पात्र हैं।
1: का मतलब भैया ये कि उम्र जोन हो कम से कम 18 हो चाहिए और 60 साल ज़्यादा ज़्यादा हो,
0: जी
1: और साथे में ये पढ़ाई लिखाई में ये है कि भाई खेती किसानी से संबंधित बाग बागवानी से संबंधित कोनो डिप्लोमा डिग्री हो के चाहिए,
0: जी
1: हाँ
0: जी
1: तबे जाए के ये जो न ऋण वाली बात कहें आप
0: जी जी
1: और
0: जी
1: योजना वाली बात बताएं
0: जी जी
1: तबे एक लाभ मिल पाए।
0: जी
1: एक बात ये होती कि भैया कि जब से मान ले कोनो वो किसान भैया रे पढ़ा लिखा है
0: जी
1: और
0: जी
1: उद्यम शुरू करे चाहती
0: जी
1: और उनका ऋण ले के वह
0: जी जी
1: तो मैं कागजात जोन दाखिल करे को होते
0: जी जी जी
1: का कहती का भैया की विस्तृत रिपोर्ट
0: जी
1: परियोजना
0: जी
1: रिपोर्ट
0: जी जी
1: रिपोर्ट का
0: जी
1: होता
0: जी
1: वो
0: जी
1: मैं का चीज आवत।
0: अब उमा यू है कि जब हम कौनो भी किसान भाई स्कीम के लिए या ट्रेनिंग के लिए जब अप्लाई करी तो बताएं जैसे हम कि जो उन्हें अपन जो हैदराबाद में है राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन संस्थान, वो आपका पूरे भारत भरे में स्टेट वाइज अलग अलग अपन अपन नोडल इंस्टीट्यूट बना दे। जैसे अपने अगर इलाहाबाद के कोई है तो KVK कौशाम्बी में जाए के अपन फार्म भर सकत है। और मान लियो अगर बगल के जिला के बात करो जैसे सुल्तानपुर हुआ तो हुआ KNI KVK में है हुआ जा सकत है। अगर बात करो प्रतापगढ़ की अपने बगल तो हुआ RDS KVK सेंटर है हुआ जा सकत है। तो लखनऊ के हिसाब से

0: केंद्रीय उपोषण बागवानी
1: मतलब
0: संस्थान
1: जहाँ जोन
0: है।
1: क्षेत्र है, जहाँ जहाँ जोन केवीके हैं या जोन भी परियोजना वो सेंटर है वहाँ पे
0: हुआ
1: जा
0: जाए
1: सके।
0: के अप्लाई कर सकत है।
1: जी जी जी
0: अब अप्लाई करे के बाद यू है कि उके बाद इंटरव्यू हुई, टीम इंटरव्यू ले कि तुम का करा चाहत हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जब तुम बता दे हो कि हाँ हम यू करा चाहे थे, तब तुमका अप्रूव करी कि अब तुम जहाँ से हो तो उके इंस्टीट्यूट में जाकर तुम ट्रेनिंग लियो पहले 45 दिन की। तो जब तुम ट्रेनिंग कहके आई हो उके बाद तुमका बनावे पड़ी, या जो हाँ ट्रेनिंग तुम जहाँ ले हो हुआ पर जोन इंस्टीट्यूट है वो तुमका एक दस्तावेज बनाए के दे कि तुम्हारा अत्ता खर्चा लागी, अत्ता तुमका वापस हुई, अत्ते साल लगी हैं तुमका। तो यू जो दस्तावेज हुआ थे यही का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कहा था। यहाँ है बैंक में जाते है तब है बैंक वाले जनी है ना कि हाँ यू करा चाहत है और इतना समय लागी, तब जाके उके हिसाब से भी तुमका लोन वापस
1: देखिए
0: दिया है।
1: एक बात और भैया, कि जो 45 दिन के वो प्रशिक्षण वाली बात बताएं,
0: जी
1: तो क्या वो प्रशिक्षण के बाद कुछ प्रमाण पत्र तो भी मिले थे?
0: हाँ, प्रमाण पत्र मिलत है
1: अच्छा
0: 45 दिन का सर्टिफिकेशन कोर्स का, तो उका आप कहूँ भी लगा सकत हो, तो उके थ्रू आपका जो है पैसा मिल सकता
1: भैया चतुर्वेदी जी, एक बात हो तो मान लीजिए उद्यम लगा दें, सरकार से भाई ऋण भी मिल गया,
0: है। जी
1: सारी व्यवस्था उनके ठीक हो गई और उद्यम शुरू हो गए,
0: जी जी
1: जो एक समस्या गांव ग्राम में खेती किसान के सामने आवत है वो ये आवत है कि भाई बाजार वाली
0: जी जी
1: भाई जो उद्यम से जो उपज पैदा की न हो
0: जी जी
1: वो भाई अगर बिके ना तो उनका लाभ ना होए।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ठीक, तो ओकरे लिए भी कुछ मार्गदर्शन यहाँ योजना में बा, या आप कुछ बतावे चाहत है किसान भैया रंग?
0: अब इमा यू है कि जैसे जैसे मान लो योजना में तो नहीं लेकिन जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं,
1: जी जी
0: जैसे
1: जी जी
0: अब सरकार डेवलप करे है ई नाम पोर्टल बनाए है,
1: जी जी
0: तो ऊपर अगर आप ज़्यादा अगर खेती है आपकी या कोनो आपके किसान के समूह है तो अपन ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कर दियो, आप फसल कौन बेचा चाह तो उके रजिस्ट्रेशन कर दियो, तो उके थ्रू जो है आपके फसल के लगभग अपने हुआ यूपी में लगभग 100 मंडी जो है लगभग लगभग वो जो नहीं है रजिस्टर हो चुकी है, जिके थ्रू आप अपन उत्पादन जो है वो बेच सकत हो।
1: जी
0: और बहुत अगर ज़्यादा जानकारी अगर है तो उके टोल फ्री नंबर है अपन एक, तो वो टोल फ्री नंबर भी है, तो उनका अगर कोई नोट करा चाहे तो नोट कर लिए, नंबर है 1800425156।
1: ये नंबर केकर है भैया?
0: ई नंबर है कृषि प्रसार जो मैनेज हैदराबाद के है वहाँ से है, तो ये ट्रेनिंग से रिलेटेड, DPR से रिलेटेड, कब वैकेंसी आवत है ट्रेनिंग की तई, कौन इंस्टीट्यूट है, जैसे किसान का कहाँ पता कि हम यहाँ रही थे और
1: हाँ
0: हमारे इंस्टीट्यूट कहाँ है, कहाँ हमका
1: बिल्कुल
0: ट्रेनिंग
1: बिल्कुल
0: करे थे,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: वहाँ से वो पूछ सकत है
1: जी।
0: यह सारी
1: का एक
0: चीज़ें।
1: मतलब ये कि अगर वहाँ से यहाँ टोल फ्री नंबर पे बात करी हैं किसान भाई, अरे
0: जी
1: जिनका
0: जी
1: पूरी जानकारी
0: जी
1: प्रशिक्षण से लई के उद्यम लगावे से लई के बाजार तक के व्यवस्था के बारे में
0: मिल जाए।
1: वो जानकारी मिल जाएगी।
0: जी
1: अच्छा, तो भैया और जो ये किसान भैया हरे हैं जो ये एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस
0: जी
1: स्कीम के लाभ ले चाहते हैं, तो ऐसे संबंधित या ऐसे हर्ष के सामान्य रूप से आपका कुछ संदेश दे चाहते?
0: बस एक चीज और हम जोड़ा चाहबे इमा कि
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जैसे अब इके अलावा भी अगर वो किसान मुद्रा योजना के थ्रू भी जावा चाहें तो उमा 10 लाख तक के यू सर्टिफिकेट या 45 दिन की ट्रेनिंग लगा के बाद आपके मुद्रा योजना जो है मुद्रा लोन के हुआ तक 10 लाख रुपया तक के मुद्रा लोन के थ्रू भी वो पैसा ले सकत है।
1: ये मुद्रा लोन कैसे मैया?
0: मुद्रा लोन सरकार का योजना है, तो उमा यू है कि कोई अपन अगर कोई कुछ सेटअप करना चाहे, वो
1: अच्छा
0: वेंचर सेटअप करना चाहे, तो वो 10 लाख तक के रुपया ले सकत है लोन
1: अच्छा,
0: या
1: ओका लेके अपन वो काम शुरू कर
0: काम शुरू
1: सकत।
0: कर सकत।
1: हम
0: जी
1: कहे थे कि आशुतोष चतुर्वेदी जी आप बहुत अच्छी जानकारी दें,
0: जी
1: निश्चित बात कि किसान भैया हरे ये जानकारी से और इस स्कीम से लाभ ले ही,
0: जी
1: आपके आवे के लिए जानकारी दे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
2: भैया रानू।
3: हाँ हो भैया,
2: हम कही देखा किसान भाई भाई सुनत रहन है बात बत कही में,
3: हाँ हाँ
2: कृषि
3: हाँ
2: व्यवसाय में एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस की महत्ता आशुतोष चतुर्वेदी से दिनेश चंद पांडे की बात बत कही। हम कही
3: हाँ
2: सुनें तो जे युवा वर्ग हैं किसान भाई हैं
3: हाँ हाँ हाँ
2: वो भाई देखा उनका का व्यवस्था बा, प्रशिक्षण का व्यवस्था बा का बा, ये सब भाई सुनें तो का अगर फायदा लेके हो तो भाई संपर्क करें।
3: एकदम सही कह भैया। अच्छा एक बात और है, ऐसे ये है कि सरकार की तरफ से भैया का नाम से छूट भी मिलत है,
2: हाँ हाँ
3: भैया
2: हाँ
3: बताएं कि 35% तक SC ST जे एहनों के और मिलते
2: जी
3: हैं।
2: जी

0: तो ऐसे ये है कि जेकरे पास भैया देखे पूजी पसार ना आए हैं वह चाहें तो भैया कम से एक व्यवस्था कई के एक अपन पूरा ले सकत हैं। अच्छा एक बात और है भैया कि देखे एक ठे लोक भाषा कविता पाठ है नंदलाल शर्मा भैया के, तो हम सोचे थे किसान भैया बहनी हरण के सुनवा दिया जाए।
1: धानी रंग चुंद

धनवा खेत पहिरे धानी रंग चुंदरिया गोरिया गईली धनवा खेत खुरपी लैके खेत निरावई खन के हाथ कंगनवा छम छम पाँव की पायल बाजे कजरा सोहे नैनवा करधन चमकेला कमरिया गोरिया गईलिन धनवा खेत पहरे धानी रंग चुंदरिया गोरिया गईलिन धनवा खेत मांग में से धुरा कान में बाली सोहे ओंठ में लाली मन ही मन खुश भैलिन धनिया देख धान की बाली खेतवा देख चारू ओरिया गोरिया गईलिन धनवा खेत पहिरे धानी रंग चुंदरिया गोरिया गईलिन धनवा खेत अब की धान बहुत खूब होए छाई खुशी अपार और धान ले भी में बेचब लैले सरकार बाकी धनवा धरब बखरिया गोरिया गईलिन धनवा खेत पहिरे धानी रंग चुंदरिया गोरिया गईलिन धनवा खेत कृषि केंद्र से पैसा पाऊ जमा करब के सी सी रुपया और बचे जो रसिया गाय खरीदब देसी दूधवा खाबई बेचब डेरिया गोरिया गईलिन धनवा खेत पहिरे धानी रंग चुंदरिया गोरिया गईलिन धनवा खेत। हाँ भैया, एक किसान की पत्नी अपने पति से कहती है, आप लोग सुनाएं। बात सुना सासु के ललनवा हमार पिया माना कहनवा बात सुना सासु के ललनवा हमार पिया माना कहनवा

दिल में बा इहर मनवा हमार पिया माना कहनवा, दिल में बा इहर मनवा हमार पिया माना कहनवा। खर कतवार सबले बई निराई करहर बरधा से

टिबुल यौन हरिया से करबै सिंचाई, पैदा बढ़े सब दुख मिटि जाई, बनैलेब पक्का मकनवा,

बजरी यो जनरी हम बो बई मकाई, काकुन यो कोदब दे मकरा लगाई। ये सब पुराना या हिंदनवा हमार पिया माना कहनवा, ये सब पुराना या हिंदनवा हमार पिया माना कहनवा। हम दुई यही दुई रही हैं हमारे, छोट परिवार रहे नैया किनारे। रसिया का सुनब कविता गनवा हमार पिया माना कहनवा, रसिया का सुनब कविता गनवा हमार पिया माना कहनवा। हाँ भैया, ये कविता आप लोग वृक्षारोपण पे सुने। देश प्रदूषण से बचावा मोरे भैया हो, देश प्रदूषण से बचा

आधा खेत खेती करा, आधा ए में बारी करा, खूब विकास माना बतिया हमारी। आम या मरूद अब, आम या मरूद अब सजावा।

भैया हो। आऊं राय अनार करा नेबू की खेती, बिचवा में सबे जी लगावा सोवा में थी। छोटी छोटी क्यारी अब, छोटी छोटी क्यारी अब,

भैया हो, मनुष्य फल खइहें और सोग्गा चिरैया, मंडी में बेचा फल आए घर रुपैया। बतिया हमार गठी आवा मोरे भैया हो।

पेड़ जब लगौबै अच्छी होए बरसात हो, रसिया से आपन भाई बनैले हा साथ हो। घर

पेड़ लावा मोरे भैया हो, माई के नाम पेड़ लावा मोरे भैया हो। देश प्रदूषण से बचावा मोरे भैया हो, माई के नाम पेड़ लावा मोरे भैया हो, माई के नाम पेड़ लावा मोरे भैया हो। हाँ भैया, एक कविता सुने आप, ये चुंदरी पे रा

रांग रेज भाई छापी दुदरिया हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छाप हम है चारो भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छाप हम है चारो भाई, चारो भाई मन की छाप खुशखबरिया हो, चारो भाई मन की छाप खुशखबरिया हो, रांग रेज भाई छापी द

बाइबिल गुरु ग्रंथ मान छाप ज्ञान शान मान की जिकरिया हो, छाप ज्ञान शान मान की जिकरिया हो, रंग रेज भाई छापी द चुदरिया हो, छाप मथुरा और काशी सूरबीर सन्यास

0: कबीर सन्यासी राम जन्म भूमि, राम जन्म भूमि अयोध्या नगरिया हो, राम जन्म भूमि अयोध्या नगरिया हो, रंग रेज भाई छापिदा चुदरिया हो, छापा मक्का ओ मदीना हो मोहम्मद का पसीना, छापा मक्का ओ मदीना हो मोहम्मद का पसीना, बाबा आदम आई हुआ माँ तारिया हो, बाबा आदम आई हुआ माँ तारिया हो, रंग रेज भाई छापिदा चुदरिया हो, सावन भादों की बरसात धान खेत लहरात, सावन भादों की बरसात धान खेत लहरात, रसिया मक्का फूटल ज्वार यऊ बजारिया हो, रसिया मक्का फूटल ज्वार यऊ बजारिया हो, रंग रेज भाई छापिदा चुदरिया हो।
1: हाँ भैया, ये कविता आप सब हमारे देश की बिटिया हैं, बिटिया के ऊपर सुनाई।
0: नैहर सासुर दूनौ कुल का, नैहर सासुर दूनौ कुल का, राखई पर्दा पानी, भैया जब गजब हैं हमारे देश की बिटिया रानी, भैया जब गजब हैं हमारे देश की बिटिया रानी, बेटवा से बढ़ चढ़ के बिटिया अच्छी करई पढ़ाई, घर का करई वो चूल्हा चौका खाना।

0: कहानी भैया अजब गजब है हमारे देश की बिटिया रानी। भैया अजब गजब है हमारे देश की बिटिया रानी। ससुरे में पति सास ससुर से खूब संबंध बनाए लीन। ननद बुआ देव रानी से मिली काम में हाथ बठाए लीन। काम काज सब देख के न कर काम काज सब देख के न कर खुश खूब रहें जेठानी। भैया अजब गजब हैं हमारे देश की बिटिया रानी। भैया अजब गजब हैं हमारे देश की बिटिया रानी। दुर्गावती की दुर्गावती और कर्णवती को जानत सब संसार यही। झांसी की रानी को देखा गजब ई देश हमारे यही। इंद्रजी किरण बेदी को कितना भाई बखानी। भैया अजब गजब हैं हमारे देश की बिटिया रानी। भैया अजब गजब हैं हमारे देश की बिटिया रानी। अधिकारी कर्मचारी बनी राखे भारत की शान यहाँ। जज वकील बनी बिटियन ये बनी पुलिस कप्तान यहाँ। गांव में रह के खेत में बिटिया गांव में रह के खेत में बिटिया अच्छी करें किसानी। भैया अजब गजब है हमारे देश की बिटिया रानी। भैया अजब गजब हैं हमारे देश की बिटिया रानी।
1: हाँ देखा हो बैजू भैया देखे लोक भाषा कविता पाठ रहन नंदलाल भैया के और देखे सबके बारे में भैया बतायन हो।
2: सही कहे भैया चाहे धान के
1: बारे में देश समाज के बारे में और खेती बारी के बारे में
2: अच्छा के बारे में भी।
1: हाँ भैया देखे एक बात और है देखे जब बात चलत किसान चर्चा के तब भैया देखे समय समय पे सरकार जो है किसान भैया बहनी हरण विद्या किसान कॉल सेंटर खोले हैं जौन भैया कृषि से जुड़ा क्षेत्र है ओकर कौनो भी जानकारी किसान भैया बहनी हरण के चाहत तो ओकर जौन टोल फ्री नंबर है वो भैया राष्ट्रव्यापी नंबर है पूरे भारत में वो नंबर काम करत है और जौने में ये है कि जौन सेवा है हो बैजू भैया सवेरे 6 बजे से लेके राती के 10 बजे तक है।
2: आपका कहा है कि मतलब

0: भैया कि हमारे खेती किसानी में जौन भी दिक्कत आवत बा, कौनो फसल बाग बागवानी कुछ भी हो,
1: हाँ
0: ओकरे संबंधित कौनो चीज़ जानकारी चाहथिन, समाधान चाहथिन,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: ई किसान कॉल सेंटर पे फोन कैके ओकर समाधान ले
1: लई
0: सकथिन।
1: सकथिन। अच्छा एक बात और है भाई जो भैया, ई जौन कॉल सेंटर है ओमन 22 भाषा में किसान भैया बहनी हरे बात कह सकथिन। एक मतलब ये है कि चाहे जहाँ किसान हो उन अपने भाषा में बात कह
0: यानी
1: सकथिन,
0: जौने भाषा में पूछी ही उही भाषा में उनका जवाब मिले,
1: जवाब मिले।
0: यही
1: अच्छा
0: समझ आ जाए।
1: हाँ हाँ हाँ दूसरी चीज़ यह है जैसे फसल का बुवाई यह है, बीज यह है, खाद के जानकारी यह है। कुछ किसान भैया बहनी हरन के जरूरत पड़त कीट नियंत्रण और रोग
0: हाँ,
1: प्रबंधन
0: माने
1: के।
0: फसल में कोनो रोग दोख बेरामी लागत
1: हाँ
0: ओकर
1: हाँ ओकर
0: समाधान के
1: भी
0: लिए।
1: समाधान। अच्छा एक बात और है, मौसम के पूर्वानुमान भी बतावत हैं कि भैया कब बारिश होए, कब तक आदमी के संभावना है। और सबसे बड़ी भी बात यह है कि भैया अपने फसल के बीमारी की के साथे साथे सरकारी योजना के, और साथे साथे भैया जैसे कौन चीज़ में कितना सब्सिडी या होता है, छूट मिले तय किसान भैया बहनी हरन के सब जानकारी देते
0: वही
1: हैं।
0: तो बहुत बढ़िया। ओकर नंबरवा भैया बता देता तो लिख ले हमार किसान भाई।
1: देखे भैया ओकर जो नंबर है 1800 1551 नंबर भैया हम फिर से बताई देते
0: हाँ
1: हैं,
0: बता दे भैया,
1: 1800 1551।
0: 5-1। तो भैया किसान भैया, अरे कौनो भी खेती किसानी में समस्या आवत बे, वो इस सब पे समाधान मिले, कौनो भी भाजोने भाषा में पूछी वही भाषा में
1: वही
0: जवाब
1: भाषा
0: मिले।
1: में भैया उन्हें जानकारी मिली। अच्छा एक बात और है, देखे भैया कहा है कि इस समय किसान भैया बहनी हरे धान के फसल लगाए हैं, तो किसान भैया बहनी हरे के एक बात का और ध्यान देवे के है, खेती के साथे साथे उनकर भी ये गोरु चौवा जौन है ओकर भी ध्यान रखे, काहे कि यह समय जौन है किसान भैया बहनी हरन के जानवर के भैया जैसे मुंह पका भय, खुर पका भय,
0: बरसात में बीमारी
1: बरसात
0: होए की
1: में बीमारी
0: संभावना
1: होए के
0: रहत है।
1: संभावना बहुत रहत है।
0: सही कहे
1: तो
0: भाई।
1: उसे ये है कि भाई अगर जौन किसान भैया बहनी हरे टीका ना लगवाए हैं टीका लगवा लें, और साथे साथे भैया और जोन लड़किया गदेला है, देखे ये समय कहा है कि ताल तलैया भैया भरा है,
0: सही कहे
1: नदी नार
0: भैया।
1: में भैया पानी है, तो कहा है कि भैया लड़किया गदेला भैया बिना बताए नहाए धोए चला
0: हाँ,
1: जाते
0: और
1: हैं।
0: दिक्कत हो तो
1: हाँ
0: भैया
1: तो
0: के।
1: उन्हें भी ध्यान दें कि उन रहें।
0: अब भैया रानू देखा हमारो सब चले के भी बेला होएगी, तो भी पंचन से आज्ञा भी ले जाए।
1: हाँ
0: तो
1: भैया
0: पंचो
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

हमारी ग्रामीण भाई अभी अपना कार्यक्रम सुन रही थी पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं, कभी भी कहीं भी। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संवेद स्वरों में ये देशभक्तिपूर्ण रचना।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी प्रयागराज का प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को है। वक्त हो चला है आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का। अब से थोड़ी ही देर में

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा का किया ऐलान। 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट देने की भी की घोषणा। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त संगठन के स्वर्ण जयंती समारोह में की शिरकत। कहा, संवैधानिक संस्था में नागरिकों का विश्वास है लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका रोज एपल अलूपो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की खूबसूरती और स्थापत्य कला को सराहा। और श्रद्धा और उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। गणेश चतुर्थी पर प्रदेश भर में सजाए गए भव्य पंडाल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की है। इसका लाभ हाईकोर्ट और जिला अदालतों में सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को मिलेगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने 400 राज्य विधि अधिकारियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए टैबलेट देने की भी घोषणा की।
1: आधुनिक तकनीक आज की आवश्यकता है, इस जिससे उन्हें जानकारी मिल सके कि कौन से शासन से जुड़े हुए मामले माननीय न्यायालय के पास आ रहे हैं। इसके लिए 400 ऐसे राज्य विधि अधिकारियों को हम लोग टैबलेट की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। और जो यहाँ पे सक्रिय प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उन सभी अधिवक्ताओं को हम लोग कैशलेस की 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा भी उपलब्ध करवाने के लिए यह भी हम आज यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त संगठन के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवैधानिक संस्थाओं में सामान्य नागरिक का विश्वास है। उन्होंने कहा कि अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति भी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास और गौरव की अनुभूति करे, यही लोकतंत्र की कसौटी है।
1: लोकतंत्र के जो सबसे बड़ी ताकत है वह किसी भी संवैधानिक संस्था में एक सामान्य नागरिक का विश्वास। गुड गवर्नेंस एक पब्लिक ट्रस्ट पर निर्भर करता है। अगर जनता का विश्वास नहीं है तो हम सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी हमारी विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं पर उसी विश्वास के साथ गौरव की अनुभूति कर सके।
0: आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में ईवीएम वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग एफएलसी की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज लखनऊ में 33 जनपदों के निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और एफएलसी सुपरवाइजरों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा भी मौजूद रहे। कार्यशाला में अधिकारियों को ईवीएम की जांच से लेकर मॉक पोल और एफएलसी की पूरी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग आगामी चुनाव की तैयारियों का पहला महत्वपूर्ण चरण है।
2: इस कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि अब यहाँ से जाने के बाद कुछ ही दिनों में इन जिलों में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं जिससे चुनाव होता है उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग एफएलसी शुरू हो रही है। फर्स्ट लेवल चेकिंग पहला कदम है चुनाव की तैयारी का। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का सवाल है, एक एक मशीन का, चाहे वो कंट्रोल यूनिट हो, बैलेट यूनिट हो या वीवीपैट हो, विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निकली देखा जाएगा सारे पैरामीटर्स सही है कि नहीं।
0: प्रदेश के नगर विकास व ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की अध्यक्षता में आज जौनपुर में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इस मौके पर नगर विकास मंत्री ने बताया कि अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के निरंतर सेवाकाल के दौरान किए गए जन कल्याणकारी कार्यों, नीतिगत सुधारों और विकास कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही नागरिकों को विकसित भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ना है।
3: जन जन तक अभियान को पहुंचाने का जो कार्यक्रम एक महीने चलने वाला है, विशेष रूप से जो व्यक्तिगत लाभार्थी वाली योजनाएं हैं उनका, जैसे दिव्यांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, अनाथ आश्रमों की सेवा है, गौशालाओं की सेवा है, ऐसे तमाम जो हमारे समाज के ऐसे वर्ग हैं जिनकी सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए, उन तक पहुँचने का भी पूरे अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
0: उधर वाराणसी में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांग जोशी ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर को वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा का फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होगा। यात्रा के दौरान वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, लाभार्थियों से संवाद, अस्पतालों में फल वितरण, पोषण किट वितरण और क्षय रोग उन्मूलन से जुड़े सेवा कार्य किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने भारत आई युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका रोज एपल अलूपो ने आज आगरा में ताजमहल का दीदार किया। पेश है एक रिपोर्ट।
4: युगांडा के उपराष्ट्रपति के आगरा पहुंचने पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच युगांडा की उपराष्ट्रपति ताजमहल परिसर पहुंची, जहां उन्होंने स्मारक की खूबसूरती को निहारा और डायना बेंच पर फोटो सेशन भी कराया। इस दौरान गाइड ने उपराष्ट्रपति को ताजमहल के इतिहास, स्थापित कला और संगमरमर पर की गई बारीकी पच्चीकारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने ताजमहल की खूबसूरती और स्थापित कला की प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति के आगरा दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी

0: दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी।
0: हिंदी दिवस के अवसर पर आकाशवाणी लखनऊ में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुनीश कुमार ने हिंदी के महत्व और वर्तमान में उसके प्रयोग पर जानकारी साझा की। संगोष्ठी में आकाशवाणी लखनऊ की कार्यक्रम प्रमुख सुमोना एस पांडे उपस्थित रहीं। हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुहागिने अपने पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और दांपत्य जीवन की सुख समृद्धि के लिए व्रत रख रही हैं। हमीरपुर में कजरी तीज पर्व पर सुमेरपुर कस्बे में 176 वर्ष प्राचीन तीजा मेले का शुभारंभ मनमोहक झांकियां निकालकर किया गया। गणेश चतुर्थी के पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील की है। वहीं गणेश चतुर्थी पर विभिन्न जनपदों में भव्य पंडाल सजाए गए हैं। इन पंडालों में भगवान गणेश के विभिन्न स्वरूपों की स्थापना की गई है। प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 18 सितंबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 14 और 15 सितंबर को कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा का किया ऐलान। 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट देने की भी की घोषणा। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त संगठन के स्वर्ण जयंती समारोह में की शिरकत। कहा, संवैधानिक संस्था में नागरिकों का विश्वास है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका रोज एपल अलूपो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की खूबसूरती और स्थापत्य कला को सराहा। और श्रद्धा और उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। गणेश चतुर्थी पर प्रदेश भर में सजाए गए भव्य पंडाल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। और अब वक्त हो चला है हिंदी कार्यक्रम का। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ पांडे से दीपक कुमार राय की ये विशेष बातचीत। बातचीत का विषय है तकनीक के दौर में हिंदी भाषा के प्रसार में चुनौतियां। आइए सुनिए ये बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आज 14 सितंबर है और पूरे देश भर में इसे आज हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज हिंदी भाषा जो कि राजभाषा का भी दर्जा मिला हुआ है, आज उसके सामने चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में तकनीक का विस्तार जो जितनी तेजी से हो रहा है उससे भाषा की पहुंच तो बढ़ रही है लेकिन उसकी शुद्धता, उसकी प्रासंगिकता में कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमने शहर के प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी को आमंत्रित किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
4: धन्यवाद।
3: सर, सबसे पहला सवाल कि हम राजभाषा के रूप में हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा में तो अपना लिया है लेकिन क्या हम अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हो पाए हैं?
4: बिल्कुल नहीं। पहली बात, राजभाषा का उद्देश्य क्या रहा? यह तय किया गया था कि चूंकि हिंदी भाषा विश्व और देश में, यानी कि भारत और शेष विश्व में प्रचुर मात्रा में व्यापकता के साथ हर व्यक्ति के भीतर समाई हुई है। यदि अपने राज्यों को ले लें तो सर्वाधिक राज्य ऐसे हैं या हिंदी भाषा का व्यवहार होता है। यह तय किया गया कि चूंकि हिंदी का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर है इसलिए राजभाषा की जो कार्य प्रणाली हो, कार्य पद्धति हो, कार्यशैली

0: हिंदी में ही हो। जितने शासकीय कार्यालय हैं, चाहे हिंदी भाषाभाषी राज्य के हों या हिंदी भाषाभाषी राज्य के, सब जगह हिंदी भाषा में, हिंदी माध्यम में जो कार्य है उसका निष्पादन किया जाए। लेकिन खेद का विषय है कि हर जगह ऐसा नहीं देखा जा रहा है। उदाहरण के रूप में आप हिंदी भाषाभाषी किसी राज्य में चले जाइए तो जो वहाँ के कार्यालय हैं, विभाग हैं, वहाँ अंग्रेजी में आवेदन पत्र आते हैं, अंग्रेजी में ड्राफ्ट आते हैं, फिर उसका हिंदीकरण किया जाता है, तो कैसी राजभाषा। तो जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि मौलिक रूप में जब हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक भाषा का उत्थान नहीं होगा। यही कारण है कि आज जो राजभाषा की स्थिति है शोचनीय है और दयनीय भी। तो शासन स्तर पर भी यदि इस पर विचार किया जाए तो बेहतर हो सकता है। इसको राजनीति का विषय न बनाया जाए, ये लोक धर्म है, इससे जन जन जो है प्रभावित है। आप यह कहें कि हमारा ये राज्य है, यहाँ अंग्रेजी है या और अन्य भाषा है लेकिन हम हिंदी को नहीं मान्यता देंगे, उचित नहीं है। सामंजस्य की भावना होनी चाहिए और समन्वय की भावना होनी चाहिए। इन दोनों के मध्य जो एक रेखा निकलती है, पतली सी रेखा है, वो बतलाती है हिंदी जो है सर्वग्राह्य है, इसको अंगीकार करने की आज आवश्यकता है।
1: सर, आपने अपनी बातों में कहा कि हिंदी का मौलिक रूप में प्रयोग अनिवार्य या उसका प्रचलन किया जाना चाहिए।
0: हाँ,
1: एक वर्ग देश में ऐसा भी है जो कहता है कि अगर मौलिकता की बात करें हिंदी भाषा में, अनेक शब्द ऐसे हैं जिनको उच्चारण में, जिनके प्रयोग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो क्यों न हम उसके जो है जो तद्भव शब्द हैं, जो आसान है, जो प्रचलित है, जन भाषा में प्रचलित हैं, समाज में प्रचलित, उन शब्दों को अपनाया जाए। क्योंकि अगर उनका कहना है कि अगर भाषा को व्याकरण के नियमों में बांध दिया जाएगा तो भाषा का विस्तार नहीं होगा, आप इस पे के बारे में क्या सोचते हैं?
0: इसके लिए एक विकल्प है, वो एक ही विकल्प है, वो ये कि जहाँ पर लगे कि इसके लिए अगर आप किसी हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं या वो कठिनाई के मार्ग को ले जाता है तो वो उचित नहीं है, उसके लिए होना चाहिए कि मान लीजिए कोई अंग्रेजी का शब्द है, आप उसका हिंदीकरण करना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी जो कहते हो लिखिए अंग्रेजी शब्द, कोष्ठक में आप उसके विषय बता दीजिए। कई से शब्द हैं कि आप उसका हिंदी कर ही नहीं सकते हैं, अब ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो इनका सर्वग्राह्य जो एक मानक शब्द प्रयोग होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए मिल बैठ करके यह तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर एक मानकीकरण का प्रश्न उभर करके आता है, मानक क्या होता है, स्तर होता है, हम किसे स्तरीय रूप में लाएं, किसको हम माने, मानने योग्य कौन सा शब्द है जो सर्वग्राह्य हो, तभी हो पाएगा जे शासकीय स्तर पर, वैधानिक स्तर पर एक समिति या आयोग का गठन किया जाए और स्थायी रहे, उसके सदस्य बदलते रहे, तो सुयोग्य लोग रहे, ये नहीं कि हाँ ये है तो हाथ उठा दिया, हाँ हाँ ठीक है। यही कारण है कि आज जो कई संस्थान है जैसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, अब वो स्थिति पैदा कर चुका है कि हम यहाँ जाएं कि यहाँ जाएं, और या हमारी बात ही मानो, जैसे गया है, गया से आपने कह दिया कि गए हो जाएगा यानी ये हो जाएगा, प्रश्न उठता है आप गया कहते हैं तो गए कहाँ से आ जाएगा, वहां पर तो यह है ना, गया, गई, गये, य में दीर्घ की मात्रा और य में ए की मात्रा, यह शुद्ध होता है, ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, तो इन पर हमको विचार करना पड़ेगा। मानकीकरण बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं आपका निदेशालय होता है, कहीं संचालनालय होता है, तो ये एक राज्य, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में निदेशालय कहते हैं, मध्य प्रदेश में संचालनालय हो गया, तो यहाँ का विद्यार्थी अगर वहां जाता है तो भ्रम किस पर जाएगा कि भाई हम तो अपने राज्य में निदेशालय पढ़ रहे थे और निदेशालय सर्वव्यापक शब्द है तो संचालनालय कहाँ से आ गया। फिर वहां प्रश्न उठता है कि वो निदेशक है निर्देशक है, दोनों में संचालन है, तो ये जो भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है वो संदेह तक जा रही है। तो हमको समझना होगा कि वास्तव में जो शब्द लिया जा रहा है उसका सार्थक उपयोग कहाँ है। यदि अंग्रेजी का शब्द है, अरबी फारसी का शब्द है, सर्वग्राह्य है, उसमें भाव है, उसका चरित्र लिख रहा है, उसका आचरण सभ्यता दिख रही है, तो हम उसको ज्यों का त्यों प्रयोग कर लेंगे। कैफियत है, फितरत है, साहिब है, हुजूर है, काबिलियत है, कबूल है, शुक्रिया है, ये तो हम इसका हिंदीकरण क्यों करें भाई। अगर ये है जनमानस में इसकी लोकप्रियता है तो हमको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें किसी तरह कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए, या आम की भावना नहीं होनी चाहिए, पूर्वाग्रह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो हमको समझना होगा कि जो शब्द हमने लिया है वो किस भाषा का है, और उस भाषा का अगर हम हिंदी करना चाहते हैं, अगर सहजता से हिंदी हो तब तो ठीक है, जैसे बॉल है, बॉल की गेंद है, सर्वस्वीकारी है, जैसे अंपायर है, अंपायर का अंपायर की क्या टिप्पणी करता, टिप्पणी करता हम कहते हैं तो वो प्रयोग में नहीं आ पा रहा है, प्रचार प्रसार नहीं आ पा रहा है, वो तब आ पाएगा जब हम उसको जनमानस तक लाएं। जैसे आपका ये कोरोना, तो कोरोना में कई शब्द अंग्रेजी के थे जो लोकप्रिय हो गए क्योंकि एक एक दूसरे से टकराते रहे, उनका सरोकार था, उसके साथ उनकी संवेदना भी जुड़ी हुई थी, बीमारी की संवेदना थी, दुख दर्द की संवेदना थी, तो उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। तो जब तक हमारी सहज रूप से स्वीकार स्थिति नहीं बनती है तब तक हम

0: दुख के लपेट में ना आए। यदि हिंदी का शब्द है लोकप्रिय है तो जो कतो से स्वीकार किया जाना चाहिए, तत्सम शब्द है तो जो कतो स्वीकार किया जाना चाहिए। अंत्येष्टि है, क्या दिक्कत है, क्लिष्ट है, आप क्लिष्ट कहें, क्लिष्ट बहुत क्लिष्ट है, क्लिष्ट है, अरे क्लिष्ट तो तत्सम शब्द है ना, संस्कृत निष्ठ शब्द है ना, उसको तो आप ग्रहण कर लिया, आदर पूर्वक को ग्रहण कर लिया आपने, समादर को ग्रहण कर लिया आपने, कृपा कृपया को ग्रहण कर लिया। तो उसी तरह से यदि हमारी हिंदी भाषा तत्सम शब्द मिलते हैं हम उसको ग्रहण कर लें, कोई हिचक नहीं है, बशर्ते उसका प्रभाव दिखे जनमानस तक स्वीकार्य, तब वो उचित रहेगा। किसी भाषा का शब्द हो हम उसका हिंदीकरण तब करेंगे जब हमारे पास उपयुक्त शब्द हो। आप जबरदस्ती बना करके नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय निदेशालय बहुत सारे कोष निकाले हैं। प्रश्न है कि कोई ऐसा उपकरण बना हुआ है जो तारों की गणना कर सके, इसलिए उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो स्वाभाविक हो। स्वाभाविक जब होंगे तो रच बस जाएंगे।
1: जन भाषा में जो है ये माना जाता है कि भाषा कैसे बनती है, ज्यादातर जो है भाषाएं संचार के माध्यम से जो है फैली हैं और उसमें जो अखबार एक प्रमुख स्थान रखता है। ज्यादातर लोग ये देखा गया है कि अखबार से ही भाषा सीखते हैं या उसकी व्याकरण को सीखते हैं पुस्तकों की तुलना में, लेकिन जब अखबार ही जब उस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ पे आपने कई अखबार देखे होंगे जहाँ पे कि इंग्लिश एक टर्म आया कि कुछ शब्द हिंदी के भी और अंग्रेजी के भी मिला के एक नया टर्म वो दे देते हैं और वो प्रचार प्रसार में जो है अखबारों में छपने लगा है और वो भाषा हमारे जनमानस में धीरे धीरे बैठने लगी, तो कहीं ना कहीं जो मौलिक हिंदी थी वो कहीं ना कहीं तो पिछड़ती जा रही है। इसको लेके आपका क्या राय है?
0: संचार सम्यक रूप से उच्चारण करता हो, पहले क्या होता था, शब्दों का आदान प्रदान किया जाता था, भाव प्रधान हुआ करते थे। आप पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल आप लेते हैं तो होता क्या था, संकेतों की भाषा हुआ करती थी। जब कहते भाषा कितने प्रकार की है तो सबसे पहले सांकेतिक, जब लिखने पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी, साधन नहीं थे, तब संकेत हुआ करते थे। संकेत के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता था, वही संप्रेषण का माध्यम हुआ करता था। समय के साथ विकास क्रम बढ़ता गया। आप अखबार की बात कर रहे हैं, जो विज्ञापन है बाजार है, उसको बाजार मिल रहा है। जब उसको बाजार मिल रहा है, विज्ञापन मिल रहे हैं, भरपूर मिल रहे हैं, उसको जगह नहीं मिल पा रही है, कहाँ कितने छापे, तो उसको शुद्धता से कोई लेना देना नहीं है। जब तक उसका मालिक उसका सिर पर डंडा नहीं रखता है तब तक वह कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज का संपादक कहता है कि मैं पत्रकारिता नहीं नौकरी कर रहा हूं। जो नौकरी कर रहा हूं, पत्रकारिता नौकरी, पत्रकारिता कर्म हो गया, नौकरी क्या हो गया, व्यवसाय हो गया। तो जो कर्म है और व्यवसाय है इन दोनों में तो पड़ती नहीं है, 36 के आंकड़े होते हैं। कर्म जहां पर होता है वहां त्याग है, देने की चाह है, समाज के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्ति करने की ललक है। लेकिन आज है क्या, बाजार है, हमको शब्द से क्या लेना देना। दो दिन ही कहें, चार दिन ही कहें, धराए गए खर्चे गए कहें, हाँ आप वहाँ पर बहुत सारे वहाँ महिलाएं और पुरुष सब बैठे हुए हैं, भीड़ है, आप कह दे कि नरमुंड दिख रहा है, बहुत सारे नरमुंड दिख रहे हैं, अरे नारी भी तो है, नारी मुंड नहीं दिख रही है, तो नर को आपने तो बना दिया, यानी स्त्रीलिंग और पुंगलिंग दोनों के साथ कर लिया, तो कैसे कहेंगे। शब्द है आरोपी आरोपित, आरोपी मैंने होता जो आरोप लगा रहा है, और आरोपित मैं जिस पर आरोप लगाया जाए, आवाज उल्टा हो गया है
1: जी।
0: दो आरोपी पकड़े गए, जो आरोप लगा रहा उसे पकड़ लिया गया, दो आरोपित पकड़े गए, यदि कोई दोषारोपित है, दोषारोपित ही कहते हैं ना, दोषारोपित कहते हैं, प्रत्यारोपित कहते हैं, प्रत्यारोपित कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसलिए कि उस पर वो लागू होता है। आरोपित मैंने जिस पर आरोप लगाया जाए, तो दो आरोपी पकड़े गए। फिर आप कहते हैं चार दिनी कार्यक्रम, चार दिनी कहां से, दिन से दिनी बन जाएगा क्या, चार दिवसीय, चार दिन के कार्यक्रम कहिए या चतुर्दिवसीय कहिए, एक दिवसीय द्विदिवसीय होती, जब तत्सम तत्सम ले रहे हैं तो एक साथ लेकर चलिए। जैसे आप कहते हैं हमारे यहाँ महादेवी वर्मा की पुण्य स्मृति की पूर्व संध्या में, पूर्व संध्या पर हो जाता है कि अभी पूर्व संध्या पर किया जा रहा है। अब मैं प्रश्न करता हूँ पत्रकारों संपादकों से कि आप कहते हैं पूर्व संध्या पर, तो आप दिन पर कहते हैं दिन पर कार्यक्रम होगा, रात्रि पर कार्यक्रम होगा, कहते हैं कि रात्रि में कार्यक्रम होगा, दिन में कार्यक्रम होगा, तो पूर्व संध्या में कार्यक्रम होगा, पर नहीं होगा। मैं अपने समाचार में बराबर लिख करके देता हूँ कि पूर्व संध्या में, और कोष्ठक में कर देता हूँ कि पूर्व संध्या पर अशुद्ध है। अब यह कि कुछ चेतना जागृत हुई है, जागृत नहीं होता, जागृत नहीं जागृत होता है, होता में हलचिन लगता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत है ना, तो जागृत हम देखिए संस्कृत श्लोक तो याद है ना, लेकिन अपने जीवन में नहीं लाते हैं। तो ये जो स्थिति है दो तरह की है।

0: तो दो तरह की स्थितियां जो है ना घातक होती है।
1: हमने दो तरह की स्थितियां और बाजार की बात की। हिंदी भाषा के हम जब विकास और विस्तार पे बात करते हैं, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि वैश्वीकरण का दौर आया, तकनीक का दौर आया और हिंदी जो है अब वैश्विक भाषा के तौर पर देखी जा रही है। विश्व हिंदी सम्मेलन दुनिया भर में हो रहे हैं, यानी हिंदी की पहुंच यहाँ से निकल के दुनिया के कई पश्चिमी देशों में भी वो देखी। लेकिन क्या वो शुद्धता भी वहां गई, क्या वो मौलिकता भी वहां गई? क्योंकि आपने तो बाजार का नाम लिया, तो जब हम वैश्विक होते जा रहे हैं, हम तकनीक पे निर्भर हो जा रहे हैं, तो क्या वो मौलिकता बची रह जाती है या मौलिकता से छेड़छाड़ होती है?
0: उत्तम प्रश्न है। पहली बात, जितने विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं
1: जी,
0: सब में कहा गया है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए
1: जी,
0: हिंदी राष्ट्रभाषा बनाई जानी चाहिए। प्रश्न है कि आपने जब पहला सम्मेलन किया या दूसरा जब किया, तो क्या आपने ये ध्यान किया या बताया उपस्थित जन को, जनों नहीं होता, जन को, कि हमने जो प्रथम सम्मेलन में ये प्रारूप तैयार किया था या प्रस्ताव तैयार किया था और शासन को या जाओ जो संबंधित विभाग वहाँ भेजा था, क्या हुआ? कुछ सकारात्मक पक्ष मिला, पहलू मिला? इस पर चर्चा नहीं होती है। आज भी कहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ।
1: लेकिन सर एक बात और, क्या राष्ट्रभाषा बनने से हिंदी की मौलिकता वापस आ सकती
0: है? नहीं, मैं वही उसी पर आ रहा हूँ जो मौलिकता की बात आपने की है। अब जो बाजार इतना विस्तार पा चुका है, शुद्धता नहीं रही। मेरा प्रश्न है, क्या गंगा नदी का जल शुद्ध है, मौलिक है?
1: नहीं।
0: तो उसी तरह भाषा की स्थिति भी है ना। गंगा जल को तो बाजार बना दिया गया, व्यवसाय किया जा रहा है उसके नाम पर। फिर उसी तरह से भाषा के नाम पर व्यवसाय किया जा रहा है। फिल्म में इस तरीके से हवा से हवाओं होगा?
1: नहीं, बहुवचन कैसे हो?
0: मेरे खुदाओं, खुदा से खुदाओं बनेगा? हम असुरों का किसने कहा है? फिराक साहब ने। मैं पढ़ रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, नामचीन को कहा जाता है शाही, शायर अशुद्ध शब्द होता है, शायर होता है, शायरों को इतना अशुद्ध आश्चर्य होता है कि शब्द का बहुवचन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए समझ ही नहीं है। तो आप जो बता रहे हैं कि वैश्वीकरण हो गया है, तो वैश्वीकरण का ही मतलब थोड़े कि एक लाइन में लिखी तो चलती चली जा रही है, लाइन जब चल रही है तो देखिए कहाँ टेढ़ी हो रही है, कहाँ मध्यम हो रही है। जो लाइन हमने खींची है, जिस रूप में खींची है, वो उसका स्वरूप कहीं विकृत तो नहीं हुआ है? आप लाइन छोड़ दिए हैं कि कट रही है, बढ़ रही, इधर जाए उधर छेड़खानी की जा रही है। और इस भाषा की भी है, भाषा के साथ बल प्रयोग किया जा रहा है। आज जो पांडुलिपि तैयार की जाती है, लोग कहते हैं पुस्तकें लिखी गई हैं, मैंने पुस्तकें लिखी हैं, गलत है। पांडुलिपि तैयार होती है, फिर मुद्रण के लिए जाती है, फिर जब फिर प्रकाशित होती है, जब प्रकाशित होती तब होता है पुस्तक, तब पुस्तक रूप में है। तो हमें समझना होगा कि हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका विस्तार किस रूप में है और प्रभाव किस रूप में है। आज यही कारण है कि हम जब कहते हैं सम्मेलन समारोह में, मैं भी जाता हूँ, देव जैसे जाता हूँ, कहता हूँ, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वृद्ध वयोवृद्ध या प्रौढ़ होते हैं, कहते हैं अरे भाई अब बूढ़े तोता को राम राम क्या पढ़ाओगे। अब यह जो मानसिकता आ गई है, जो बता रहा है, अब उसका मनोबल भी क्षीण कर रहे हैं, आप तो क्षणित है ही। तो सवाल उठता है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसके लिए कुछ होना चाहिए। शासन स्तर पर मैं आग्रह करना चाहता हूँ, जो हिंदी को परिष्कृत रूप में समाज के दर्पण पर रखना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन किया जाए, प्रोत्साहित नहीं होता, प्रोत्साहन किया जाए, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। किस रूप में? उनको साधन दीजिए, सुविधा दीजिए, उनको कह दीजिए इतने आपको विद्यालय दिए जा रहे हैं, आप जाइए, बताइए, समझाइए। अनिवार्य रूप से कर्मशाला होनी चाहिए, मैं बताऊँ आपको, कर्मशाला होनी चाहिए। ये जो प्राथमिक शाला है, ये मूल है, जड़ है
1: जी।
0: हम जब तक अध्यापक अध्यापिकाओं और छात्र छात्राओं को नहीं समझाएंगे, तब तक बात नहीं बनने वाली है।
1: अभी हम लोग बात कर रहे थे सर कि बाजार का विस्तार जिस तरह से हो रहा है, बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि हमें रोजगार की भाषा चाहिए, हिंदी जो है उस पैमाने पे जो है पूरी तरह से जो खरी नहीं उतरती। लोग ये कहते हैं, या जो भी एक परिवार है या समाज है, वो ये कहता है कि हिंदी, या एक रिपोर्ट भी कहती है कि हिंदी जो है राजकाज की भाषा या राजभाषा तक तो ठीक है, लेकिन वो रोजगार की भाषा नहीं बन पाई है। इस वजह से उसमें बहुत सारे प्रयोग भी हो रहे हैं, विस्तार हो रहा है, लेकिन वो विकृत रूप में हो रहा है। तो एक तरफ जो भी आपने प्राथमिक शाला की बात की, जो भी बच्चा पढ़ रहा है या जो भी परिवार अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, उसको कैसे ये बताया जाए कि शुद्ध हिंदी या शुद्ध भाषा का उच्चारण पढ़ना, और इसमें भी कैरियर एक

0: देखा जा सकता है।
1: हाँ
0: आप इसको कैसे लोगों तक बताएंगे कि हिंदी में भी रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं जो कि
1: हाँ
0: अन्य भाषाओं में भी
1: हाँ
0: हैं,
1: बहुत सारी संभावना है।
0: उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। ये एक जो कहा जाए कि भ्रम कहें या इसको जो है अज्ञानता कहें, कि जो गढ़ा गया है या रचित है, चाहे वो किसी भी माध्यम के द्वारा हो, कि हिंदी भाषा में करियर या रोजगार के अवसर सीमित हैं, इससे एक बहुत बड़ी जो संख्या है, पीढ़ी
1: नहीं,
0: है,
1: बिल्कुल सही
0: वो
1: आपने
0: भाषा
1: कहा।
0: से जो है कटती जा रही है। वो सामान्य हिंदी तो पढ़ रही है, लेकिन व्याकरण और उसकी शुद्धता में जाकर
1: हाँ
0: शोध प्रवृत्ति को जो है
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: ज़्यादा उसमें उत्साह नहीं दिखा
1: उत्साह
0: रही
1: नहीं
0: है।
1: दिखाती।
0: इसके बारे में आप हम बताएंगे कैसे वो रोजगार से जुड़े, कैसे हिंदी भाषा से अपना रोजगार जो है वो ले सकता है और अपने करियर को भी, अपने उस भाषा के प्रति अपने प्रेम को भी बरकरार रख सकता है।
1: इसके लिए हमें सबसे पहले शासन को देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई कार्य होता है तो जब तक शासन के दृष्टि उस पर नहीं पड़ती है, शासन पर बल नहीं देता है, तब तक बात समझ में नहीं आती है, और उसका तब तक तो महत्व भी नहीं दिया जाता है। आज सरकार ये कह दे कि शुद्धता के साथ प्राथमिक शाला से लेकर के उच्च स्तरीय शिक्षालयों तक, जब तक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण नहीं करता है तब तक तो उसको हम ये उपाधियाँ नहीं देंगे। लेकिन
0: लेकिन
1: उसके लिए वो जो अध्यापक हैं उनको सुयोग्य होना चाहिए, जो
0: लेकिन
1: परीक्षक
0: सर
1: होते
0: शासन का
1: हैं।
0: तो कहना है कि हम अगर आपको सामान्य हिंदी का हम एक परीक्षा आयोजित करवाते हैं, अगर वो बच्चा पास कर लेता है, इसका मतलब
1: नहीं
0: कि वो
1: नहीं
0: हिंदी का
1: नहीं
0: ज्ञान
1: नहीं
0: है
1: नहीं वो साम
0: जो रोजगार की भाषा है आप जिस
1: वो
0: पे बात
1: देखिए
0: करें।
1: वो सीमित है।
0: जी
1: आप जो रोजगार की भाषा कर रहे हैं, आप प्रकाशन शुरू कर दीजिए,
0: जी
1: हिंदी अधिकारी बनने की संभावना है। जितने जितने आपके ये
0: राजभाषा नीति।
1: कार्यालय हैं वहाँ
0: जी
1: राजभाषा अधिकारी हो सकते
0: जी
1: हैं, हिंदी अधिकारी हो सकते हैं।
0: जी
1: आप में अनुवाद करने की क्षमता भी होनी चाहिए,
0: जी
1: हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। आप किसी भाषा के प्रति दुराग्रह नहीं रख सकते हैं, सभी भाषा समान है। कब हमारे जीवन में किस भाषा का महत्व आ जाए, उपयोगिता सामने आ जाए, कोई जानता नहीं है। तो प्राथमिक शाला से हम बच्चों को शुद्ध हिंदी बताएं, भाषा का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। आप हिंदी विभाग लिखवा लीजिए, जहाँ जहाँ देखेंगे हिंदी हक ऊपर बिंदी दबे बड़ी की मात्रा, विभाग अशुद्ध है। आधा न करें तो नहीं,
0: आधा।
1: आधा न करें तो भी अशुद्ध है। हिंदी का विभाग संबंध बोधक कारक है, और हिंदी का विभाग षष्ठी तत्पुरुष समास है। हिंदी विभाग के बीच में योजक चिन्ह लगाइए, जोड़ने वाला, या हिंदी विभाग को मिला दीजिए, तब शुद्ध माना जाएगा। तो हम शुरू से बच्चों को बताएंगे कि अध्यापक किसे कहते हैं, अध्यापिका किसे कहते हैं, आगे बढ़ोगे तो प्राध्यापक बनोगे तो उसको किस रूप में समझोगे। ये जो क कह रहे हो, क ख कह रहे हो, जिसे सुनाओ, क ख क ख ग घ अंग गलत है, क ख ग घ ङ ङ अंग कहाँ से आ गया, न अंग है न ग है। अलंकार, अलंकार जब आप कह रहे हैं, जो अंत में जो ये आपका जो ये अनुस्वार आ रहा है
0: जी
1: उसकी ध्वनि आनी चाहिए ना। अब विज्ञान कहते हैं और फिर कहते हैं संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त अक्षरों की ध्वनि तो नहीं आती ना।
0: नहीं
1: विज्ञान कहते, विज्ञान आप कहते हैं तो वी आधा ग या न कर विज्ञान कर, वही तो विज्ञान हुआ। अंतर क्या रहेगा उच्चारण में? तो हमें प्रारंभिक पाठशाला से ही बच्चों को सिखाना होगा, लिखाना होगा, समझाना होगा, और उन्हें कंठस्थ कराना होगा, ताकि वो आगे बढ़ करके अपनी शुद्धता को बनाए रखें। और यह जो क्रम है, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, उच्च स्तरीय शाला और तकनीकी शाला, इनमें जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है, प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण है, इनमें भी हिंदी माध्यम में उसकी जो परीक्षा की जानी चाहिए, शिक्षा की जानी चाहिए। और पुस्तकें तो हैं ही नहीं,
0: सीमित
1: आप
0: है, सीमित
1: नहीं के बराबर है।
0: है।
1: तो उस तरह से जो सुयोग्य लोग हैं, है ना, उनसे लिखवाने की कोशिश करनी चाहिए।
0: सर एक सवाल मेरा सबसे आखिरी सवाल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने में भी आसानी है
1: हाँ
0: और जन जन तक ये शब्द जो है फैला हुआ है, हर व्यक्ति उसके पीछे का विज्ञान नहीं जानता लेकिन उस शब्द से परिचित है। इस तकनीक ने जो है कहते हैं कि कार्य को आसान कर दिया है। आप कोई भी उसमें शब्द डालें वो उसका तुरंत जवाब, या कोई भी लेख लिखें उसका वो तुरंत अनुवाद कर देता है। तो ये जो चैलेंज आया है हमारे सामने, जो चुनौती आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये भाषा के विकास में सहायक होगा या उसके विकास में अवरोधक सिद्ध होगा?
1: राय साहिब साहब, साहेब अशुद्ध होता है,
0: जी
1: साहिब साहिबा साहिबजादा होता है ना,
0: जी
1: तो राय साहिब। यह प्रश्न बहुत ही विकट है इस दृष्टि से कि हम यह सोचते हैं कि एआई ने बता दिया वो सही है।
0: जी लेकिन वो डिस्क्लेमर एक देते हैं सर कि ये पूरी तरह से
1: नहीं तो हम
0: शुद्धता की
1: देखिए जो आप डिस्क

0: प्रेम करते हैं, जो आप अंत में जो बताते
1: जी वो
0: हैं
1: एक छोटे
0: वही तो
1: से
0: लोग नहीं
1: जी
0: समझते हैं। जल्दी जल्दी पत्र पढ़ा, ये कर दिया, या पत्र बहुत बारीक लिख दिया,
1: जी
0: पहले उसको समझिए क्या है वो। मैं
1: जी
0: उदाहरण के लिए बताऊँ, कल रात्रि में
1: जी
0: एआई का सहयोग, इसे मैं यंत्र मानव कहता हूँ,
1: जी
0: एआई का सहयोग लेने के विचार किया और मैंने शब्द लिखा। मैंने लिखा कि मैं आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ पांडे और ये मेरा चित्र है और मैं अध्यापक अध्यापिकाओं को बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? शुद्ध शब्द अनधिकार अनधिकृत, अशुद्ध शब्द अनाधिकार अनाधिकृत। तो उसने वहां पहली बात तो दोनों शुद्ध लिखा, फिर बाद में दोनों को अशुद्ध कर दिया।
1: जी
0: और उच्चारण भी मैंने आपको सुनाया हुआ था,
1: जी जी आपने बताया था
0: अगर
1: कि
0: यहाँ पर दूरदर्शन का ऐसा होता
1: हाँ
0: सब मैं दिखाता भी, बताता भी, लिखाता भी। तो फिर वो कह क्या कर, फिर उस कहता है अनाधिकार अनाधिकृत शुद्ध है, फिर कहता है अनाधिकार अनाधिकृत अशुद्ध है। तो यदि मान ली उसको मैं अगर सार्वजनिक करता भेजता
1: जी
0: तो लोग क्या कहते, तो अपने भाषा विज्ञानी व्याकरण वेत्ता बनते हैं, खुद अशुद्ध लिखते हैं, तो
1: जी
0: ये हमारे लिए भी लज्जाजनक स्थिति बनती और जो समाज को देते उसके लिए भी घातक सिद्ध होती। तो हम चाहते हैं जो ये आप जो कुछ यंत्र या आपको जो यंत्र मानव से या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जो या तंत्र है इससे जो कुछ आप ग्रहण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो ग्रहण करना चाहते हैं उसके विषय में आपको बारीक जानकारी होनी चाहिए, ताकि एआई कोई अगर गलती करता है, त्रुटि करता है या भयंकर गलती करता है, तो आप उसके पर सजग हो जाएं, क्योंकि ये पूरे समाज तक जाता है।
1: जी
0: तो ये जो है बहुत ही घातक है। उसी तरह से अनुवाद का भी आ गया है, आप हिंदी का अनुवाद करके देखिए, वहाँ भी विसंगति ही है।
1: जी
0: तो हमें जब तक स्वयं के प्रति विश्वास नहीं होगा, हमारे जो ज्ञान है और विवेक है बुद्धि है उसका हम सदुपयोग करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तब तक आश्रय लेते हैं, और जब तक उसका उपयोग नहीं करते हैं तब तक घातक सिद्ध होगा। इसलिए मैं श्रोता वृंद से कहूँगा कि आप एआई या किसी भी कृत्रिम जो या यंत्र मानव है किसी तरह सा है उसका जब उपयोग करते हैं, तो जो विषय होता है उसकी परख और परस आपके
1: जी
0: भीतर रहनी चाहिए, तभी वो किसी तरह के तकनीकी त्रुटि करता है या किसी तरह की उसमें अशुद्धि होती है, विसंगति आती है, तो आप उससे स्वयं को दूर कर सके, क्योंकि आप जो लिख करके तैयार करके भेजते हैं वो सार्वजनिक हो जाता है। तो आप जो क्यों क्यों लिखते हैं, आप समाज को देने के लिए लिखते हैं ना,
1: जी
0: तो जो कुछ आप लिख करके दे दिया और समाज तक संप्रेषित हो गया तो समाज भी दूषित हो जाएगा।
1: समय की हमारी जो है बाध्यताएं हैं। आखिरी में मैं जो है आपसे ये अपने श्रोताओं के लिए एक संदेश जो है जानना चाहूँगा कि हिंदी दिवस पे हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में जो भी चुनौतियाँ हैं उसको लेके आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे कि वो किस तरह से हिंदी को अपने रोजगार की भाषा भी बना सकते हैं और उसकी शुद्धता को भी बरकरार रख सकते हैं।
0: हमारे श्रोता वृंद बिल्कुल न घबराएं, जितनी हिंदी आती हो उसको संप्रेषित करते जाइए, और कहीं भी लगता हो कि हाँ हमारे संप्रेषण में कुछ अशुद्धि है, गलती कुछ है, तो आप जो सुयोग्य लोग हैं उनके पास जाइए, उसे कहिए कि हमने ये तैयार किया है, इसमें बताइए क्या क्या शुद्धि है, तो वो बताएंगे। जब बताएंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा, फिर आप लिख करके उनको दिखाइए, जब आपका पीठ थपथपाएंगे तो आपको लगेगा कि आप पारंगत होने की दिशा में आप अग्रसर हैं। तो आपको जो कुछ आता है, छोटे छोटे शब्द लीजिए, विषय लीजिए, जैसे आप ले लिया विद्यालय, आप ले लिया कंप्यूटर, अब जैसे कंप्यूटर लिया तो कोशिश कीजिए कि आप उसकी हिंदी करने की कोशिश कीजिए, और हिंदी नहीं होता है तो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, तो उसको जो कचो रहने दीजिए, उसमें किसी तक छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं। इनपुट है, आउटपुट है, इसकी हिंदी बन चुकी है तो आप उसको ग्रहण कर लीजिए। माउस है तो माउस को जो कचो रहने दीजिए, जो प्रचलन में है,
1: जी
0: जो जिसको जो सर्वस्वीकार्य है उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। आप लिखते जाइए, बिल्कुल मत डरिए, क्या लिखते जाइए, कहते जाइए, उच्चारण शुद्ध कीजिए, स्वर क्या है, व्यंजन क्या, किस तरह से उच्चारण करते हैं, कैसे शब्द बनते हैं। सबसे पहले ध्वनि आती है, जो ध्वनि होती है ये प्रथम इकाई है, तो ध्वनि को समझिए, अक्षर को समझिए, वर्ण को समझिए, फिर व्याकरण के जो जितने उसके जो अंग उपांग है उनसे आप पारंगत होइए, तो धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे। आप छोटी कक्षा अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं, कक्षा एक की पुस्तक लीजिए, व्याकरण कक्षा की पुस्तक पढ़िए, उसमें बहुत गंभीरता है, तो समझने की कोशिश कीजिए, रोचकता के साथ विषय पुस्तकों में विषय प्रस्तुत किए जाते हैं, तो आप उसको समझिए और पारंगत होने की दिशा में कृत संकल्प होइए।
1: धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आप विस्तार से जो है हिंदी भाषा के शुद्धता मौलिकता और उसके विस्तार पर हमें हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताबिंद जरूर लाभान्वित होंगे इससे। धन्यवाद सर आकाशवाणी स्टूडियो में आने के लिए।
0: साधुवाद।

हिंदी दिवस के अवसर पर अभी आप सुन रहे थे आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ पांडे से दीपक कुमार राय की ये बातचीत। बातचीत का विषय था तकनीक के दौर में हिंदी भाषा के प्रसार में चुनौतियां। इसी के साथ अब आज का हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है। शिक्षा व्यक्ति में आत्मबल और आत्मविश्वास पैदा करती है। खुद साक्षर बनिए और दूसरों को भी साक्षर बनाने में अपना अमूल्य योगदान कीजिए। हमें यह नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई। आइए सांप्रदायिक सौहार्द का व्रत लें। श्रोताओं, आप हमारे प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी सुन सकती हैं। हम आपको याद दिला दी, अब से कुछ क्षणों बाद सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक JP सिप्पी पर केंद्रित फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 9:30 पर कहकशा कार्यक्रम, जो कि गजलों पर आधारित होता है, और रात्रि 10:30 शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में क्लेरिनेट वादन पंडित राम कृष्ण राय का हम आपको सुनवाएंगे।

कल रात 10 बजे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हम रिले करेंगे खेल दर्पण कार्यक्रम। किसान भाइयों के लिए प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कृषि जगत कार्यक्रम में सुबह 6:35 पर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत प्रसारित की जाएगी। बातचीत का विषय होगा इस पखवाड़े के कृषि कार्य। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम सुबह 6:45 पर, जिसमें डॉक्टर आशुतोष राय की वार्ता होगी ईयरफोन के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाली हानियां। कल के शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में हम आपको बता दें, सुबह 7:30 पर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र और रात्रि 10:30 पर पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन सुनवाया जाएगा। इसके अलावा दिन में 12:15 पर पंडित गोपाल दास का क्लैरियोनेट वादन आप सुन सकेंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8 बजे ही वक्त हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आकाशवाणी प्रयागराज के प्लेबैक स्टूडियो से मैं संतोष श्रीवास्तव इस विशेष फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज है 14 सितंबर। आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय सिनेमा की उस शख्स का जिसने हमें सिखाया कि देयर इज नो बिजनेस लाइक फिल्म बिजनेस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय श्री गोपाल दास परमानंद सिप्पी, यानी हमारे अपने जीपी सिप्पी साहब की। वकालत की डिग्री, कराची से मुंबई तक का सफर और फिर एक मिस्त्री साहब के साथ दोस्ती ने उन्हें फिल्म सजा, जो कि 1951 में आई थी, बनाने की प्रेरणा दी। वहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो शोले तक गया और इतिहास बन गया। तो आज हम उनकी ही फिल्मों के कुछ चुनिंदा यादगार नगमों के जरिए उन्हें याद करेंगे। चलिए सबसे पहले उनकी सबसे यादगार फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा का मुहावरा ही बदल दिया, फिल्म अंदाज, जो कि 1971 में आई थी, और वो गाना जो आज भी हर सफर में गुनगुनाया जाता है।

0: वाह क्या फिलॉसफी है। और यही फिलॉसफी जीपी सिप्पी जी की फिल्मों में थी। इसके बाद आई 1972 में एक ऐसी फिल्म जिसने हेमा मालिनी को डबल रोल में अमर कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म सीता और गीता की। मस्ती और शराब से भरा ये गाना।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे रे,
1: घटा के संग संग,
2: संभालना।
1: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग।

और अब वो फिल्म जिसका नाम लेते ही पूरा हिंदुस्तान एक साथ बोल उठता है। 1975 जीपी सिप्पी साहब निर्माता और उनकी बेटी रमेश सिप्पी निर्देशक शोले, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया, संजीव कुमार और गब्बर सिंह। इस फिल्म ने 70 mm और स्टूडियोफोनिक साउंड को भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पेश किया। इस फिल्म का एक गाना जो दोस्ती की मिसाल बन गया, आइए सुनिए।

वाकई दोस्तों, दोस्ती जो शोले की आत्मा थी, शोले के बाद सिप्पी साहब ने हमें दी एक और मल्टी स्टारर स्टाइलिश फिल्म शान।

क्या बात है, शान नाम ही काफ़ी था। और अब उनकी एक बहुत ही रोमांटिक संवेदनशील फिल्म जिसे भारत की तरफ से ऑस्कर में भी भेजा गया था। फिल्म का नाम सागर, जो कि 1985 में आई थी। ऋषि कपूर, कमल हसन, संगीत आर डी बर्मन साहब का। फिल्म का नाम सागर और गाने के बोल सागर किनारे दिल ये पुकारे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ भी।

जी हाँ दोस्तों, सागर किनारे और सिप्पी साहब के सपनों का किनारा कभी खत्म नहीं हुआ। अंत में एक और सुपरहिट फिल्म जिसने शम्मी कपूर को नया अवतार दिया, 1968 में प्रदर्शित फिल्म ब्रह्मचारी। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की मिली।

तो श्रोताओं, ये थे जीपी सिप्पी साहब के कुछ चुनिंदा नकबी, एक वकील से बिल्डर, बिल्डर से फिल्म निर्माता और फिल्म निर्माता से एक संस्था बन जाने तक का सफ़र। 25 दिसंबर 2007 को वे हमें छोड़कर चले गए, पर उनकी फिल्में, उनका जादू आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आज उनकी जयंती पर आकाशवाणी प्रयागराज की ओर से हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं।

ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें, शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में कल के शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में सुबह 7:30 पर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र और रात्रि 10:30 पर पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन सुनवाया जाएगा। इसके अलावा दिन में 12:15 पर भी आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का प्रसारण, जिसमें पंडित गोपाल दास का क्लेरिनेट वादन हम आपको सुनवाएंगे। सुबह 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज। सुबह 10:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे उदय राज सिंह और उनके साथी। इसके अलावा दिन में 2:30 पर हम आपको सुनवाएंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें सुनेंगे रश्मि टंडन के गाय लोकगीत। के अलावा पूर्णिमा जेटली से की गई बातचीत, बातचीत का विषय है माँ बाप को सम्मान दें सामान नहीं। श्रोताओं, अभी आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। एक बार फिर हाजिर होते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर अब से थोड़ी देर में।

आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन भगवान गणेश की आराधना का दिन है, गणेश चतुर्थी। भगवान गणेश जी ने हमें विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति और बुद्धि विवेक के देवता के रूप में पूजते हैं। भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ भगवान गणेश के स्मरण के साथ करने की परंपरा रही है। मान्यता है कि गणपति जी का आशीर्वाद जीवन के मार्ग में आने वाले विघ्नों को दूर करता है और नई शुरुआत को शुभता प्रदान करता है। आइए आपको सुनाते हैं फिल्म बाजीराव मस्तानी से वो संगीत जिसको सुर दिया है सुखविंदर सिंह ने, बोल प्रशांत इंगोले की और संगीत श्रेयस पुंडरीक का।

महाराष्ट्र से लेकर देश के अनेक हिस्सों तक गणेश उत्सव आज हमारी सांस्कृतिक एकता और सामूहिक उल्लास का प्रतीक बन चुका है। घरों और पंडालों में गणपति की स्थापना, आरती और भक्ति संगीत के बीच वातावरण शोभा में उठता है। अगला संगीत आपके समक्ष प्रस्तुत है फिल्म अग्निपथ से, आवाज है अजय की, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत अजय अतुल का।

तो आइए इस गणेश चतुर्थी पर हम भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर हों, बुद्धि और विवेक का प्रकाश बढ़े और हमारे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे।

अगला संगीत सुनिए फिल्म डॉन टू से, आवाज़ है शंकर महादेवन की, बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान रॉय का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या का, अब से थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था

0: आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित दो दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा हैं। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
6: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
7: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब

0: सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिष्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखौ स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
4: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी

0: कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग सराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hails successful conclusion of BRICS summit in New Delhi, says India showed strong convening power. Global leaders praise BRICS summit for strengthening cooperation among developing nations and advancing priorities of Global South. US-based analyst says New Delhi declaration reflects India's ability to build consensus. India approves 18-hour power supply to flooded Nepal till December end amid hydropower crisis. Human Rights Council of Pakistan occupied Jammu and Kashmir expresses concern over prolonged protest and unrest in the region. And Ganesh Chaturthi been celebrated across the country with grandeur, devotion and festive gaiety. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today lauded the successful conclusion of the BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent the countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it is important to recognize that this BRICS summit was taking place in a very polarized world.
3: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts where there are very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian infrastructure.
2: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning the terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it.
3: The BRICS was very clear that any act of terrorism is criminal, and they in fact explicitly recognized Pahalgam attack. They condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism, and emphasized the zero tolerance for terrorism, rejected double standards in countering it.
2: India's leadership of BRICS has won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18 BRICS summit in New Delhi. The two-day summit held in the national capital under India's chairmanship concluded.

0: initiative adopted in several districts. This year, the focus is on traditional celebrations and reducing noise pollution. Health, blood donation, cultural and welfare programs are also being organized alongside the festivities. Madhuri Pange, Akashwani News, Mumbai.
1: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Haryana, Chandigarh and Delhi tomorrow. Similar weather conditions also expected to prevail over Kerala, Mahe, Punjab, South Interior Karnataka, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for tomorrow. The Met Department said that thunderstorms and lightning conditions will continue over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha and Rajasthan to the next 2 to 3 days. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi tomorrow. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hails successful conclusion of BRICS Summit in New Delhi, says India showed strong convening power. Global leaders praise BRICS Summit for strengthening cooperation among developing nations and advancing priorities of Global South. US-based analyst says New Delhi declaration reflects India's ability to build consensus. India approves 18-hour power supply to flooded Nepal till December end amid hydropower crisis. Human Rights Council of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir expresses concern over prolonged protests and unrest in the region. Ganesh Chaturthi has been celebrated across country with grandeur, devotion and festive gaiety. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And that is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है. जमीर रजवी से खबरें सुनिए. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां. वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनेकाद की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि भारत ने कायल करने की जबरदस्त सलाहियत का मुजाहरा किया है. आलमी रहनुमाओं ने भी तरक्की पजीर मुल्कों में इश्तराक को मुस्तहकम करने और आलमी खत्ते जुनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने पर ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की सताइश की है. अमरीका में मुकीम तजिया निगार ने कहा है कि नई दिल्ली एलामिया इत्तेफाक राय पैदा करने की भारत की सलाहियत की अक्कासी करता है. भारत ने पनबिजली पैदा करने के बहरान के दौरान सैलाब से मुतासरा नेपाल को दिसंबर के आखिर तक 18 घंटे बिजली फराहम करने को मंजूरी दी है. इंसानी हकूक से मुतालिक पाकिस्तान की काउंसिल ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में तवील अरसे से जारी मुजाहरों और बदमनी पर तशवीश का इजहार किया है. और गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क भर में अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है. अब खबरें तफसील से. वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग 2026 के कामयाब इख्तिताम की सताइश की. उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत की मौसर सिफारतकारी और क़यादत का बखूबी मुशाहिदा किया क्योंकि ज़्यादातर ममालिक के सरबराहान अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी के लिए मीटिंग में मौजूद थे. सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह समझना ज़रूरी है कि ब्रिक्स सरबरा मीटिंग ऐसे वक्त मुनक़िद हुई जब दुनिया में इख्तलाफात और ग्रुपबंदी मौजूद है. इसके अलावा दुनिया में दो बड़े तनाज़ात के साथ बड़े पैमाने पर इख्तलाफ राय और मफादात भी कारफरमा हैं. उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक अमन व सलामती, इस्तेहकाम, तवील मुद्दती बाहमी मफाहमत, आलमी तिजारत में आसानी, सप्लाई चेन तवानाई और शहरियों नीज सिविलियन बुनियादी ढांचे के तहफ़ के हवाले से एक मुश्तरक बयान पर इत्तेफाक करने में कामयाब रहे. डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मीटिंग में 32 वफूद शरीक हुए जिनमें 11 रुकन ममालिक, 10 शराकत दार ममालिक, 4 इलाकाई तंजीमें और 7 बैनुल अक्वामी तंजीमें शामिल थीं. वजीर खारजा ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई एक मुजरिमाना अमल है. उन्होंने मजीद कहा कि ब्रिक्स ने वाज़ेह तौर पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को नाकाबिल कबूल करार दिया. नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनेकाद पर कई रुकन ममालिक ने भारत की ब्रिक्स क़यादत की तारीफ की है. भारत की सदारत में मुनाकिद हुई 2 रोज़ा सरबरा मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ कौमी राजधानी में इख्तिताम पज़ीर हुई. इस दौरान हफ्ते के रोज़ ब्रिक्स ममालिक ने मुत्तफ़िका तौर पर नई दिल्ली एलामिया 2026 अपनाया. इस सरबरा मीटिंग में रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन और

0: चीन के सदर शी जिनपिंग समेत कई आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के दौरान जनूबी अफ्रीका, रूस, चीन, ब्राज़ील और मुत्तहद अरब इमारात ने ब्रिक्स में इश्तराक मस्तहकम करने और आलमी खत्ते जनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने की भारत की कोशिशों का खैर मकदम किया। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने भारत की ब्रिक्स सदारत की तारीफ करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने कामयाब तरीके से सरबराह मीटिंग की मेज़बानी की और इत्तफाक राय पर पहुँचने से मुतालिक खदशात के बावजूद नई दिल्ली आलामी पर रुकन ममालिक को आमादा करने

0: बारिश से खरीफ की फसलों में दोबारा जान पड़ गई है। अहमदाबाद से मयूर सोलंकी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक केरला, माहे, पंजाब, कर्नाटक के जुनूबी अंदरूनी इलाके, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कल इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान निकोबार जजायर, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनका की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत ने कायल करने की जबरदस्त सलाहियत का मुजाहरा किया है। आलमी रहनुमाओं ने भी तरक्की पजीर मुल्कों में इश्तराक को मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जुनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने पर ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की सताइश की है। अमरीका में मुकीम तजिया कार ने कहा है कि नई दिल्ली एलामिया इत्तेफाक़ राय पैदा करने की भारत की सलाहियत की अक्कासी करता है। भारत ने पन बिजली पैदा करने के बहरान के दौरान सैलाब से मुतासर नेपाल को दिसंबर के आखिर तक रोजाना 18 घंटे बिजली फराहम करने को मंजूरी दी है। और गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क भर में आज अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रही हैं। प्रस्तुत है गजलों का प्रोग्राम कहकशा। प्रस्तुति कार्यक्रम गजलों की कहकशा। सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का आदाब। दोस्तों, रात के इस पहर जब शहर की रोशनियां थोड़ी धुंधला जाती हैं और दिल अपने आप से बातें करने लगता है, तब कहीं एक गजल, एक शेर, एक आवाज सुकून बनकर उतरती है। आकाशवाणी प्रयागराज के प्लेबैक स्टूडियो से आपके लिए लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम कहकशा। तो चलिए इस खूबसूरत रात की पहली गजल से आगाज करते हैं। कभी कभी एक लम्हा एक एहसास बनकर पूरी जिंदगी को लपेट लेता है। भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में यही एहसास है।

क्या कहने को, भूपिंदर सिंह जी की गहराई और मिताली जी की नजाकत, वाह। इश्क का अपना ही दस्तूर है जनाब, ये पूछ कर नहीं आता, बस हो जाता है। और जब होता है तो शायर कहता है, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। इसी इश्क को फरमाने की गुजारिश लेकर आ रही हैं गजल की शहजादी पंकज उदास साहब।

आइए इश्क फरमाइए। कितनी नफासत से कहा है पंकज जी ने, इश्क वाकई फरमाइशी तो है। और अब जरा आंखों की बात कर ली। कहा जाता है कि आंखें वो कह देती हैं जो लब कह नहीं पाते। लबों से छोलूं तुझे इस ख्याल से, लबों से छोलूं तुझे इस ख्याल से, आंखों ने क्या कुछ नहीं कहा इस सवाल से। आवाज है

बेहतरीन। चंदन दास जी की इस गजल में वो कशिश है जो सीधे दिल में उतरती है। दोस्तों, इंतजार इश्क का सबसे हसीन और सबसे तकलीफदेह हिस्सा। कोई आए ना आए, पर इंतजार खत्म नहीं होता। इसी कैफियत को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है।

वाह, वादे पर एतबार और फिर इंतजार, यही तो गजल है। और अब आज की इस महफिल की आखिरी गजल, शाम जो अजीब भी है, उदास भी है और हसीन भी, जब शाम ढलती है तो कई यादें अपने साथ लाती है। शाम से आंख में नमी सी है, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। इसी शाम को अपनी आवाज दी है शोभा मुद्गल जी ने।

तो दोस्तों वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। ये पांच गजलें पांच एहसास आज की रात आपके नाम रहे। श्रोताओं आप सुन रहे थे प्रोग्राम कहकशा आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 800-492-6250 पर जरूर बताइएगा। अगले कार्यक्रम में कुछ और हसीन गजलों के साथ आपकी सेवा में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गजलों को सुनते रहिए और आकाशवाणी से जुड़े रहिए। और अब अपने रेडियो हम सफर संतोष श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको पंडित रामकृष्ण का क्लेरियोनेट वादन सुनवाएंगे। और अब वक्त हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। एक बार फिर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर आपसे कुछ क्षणों में।

आसमान से छनछन कराती चांद की रोशनी से रोशन हो रहा है मन का कोना कोना। छत की मुंडेर पर बजता रेडियो और रेडियो पर बजता पसंदीदा गीत। ख्यालों की महफिल सजी है, गानों के सुर दिल पर मरहम लगा रहे हैं। सुहानी रात और गीतों की मिठास।

दिल के कोने कोने में ठहरी है तुम्हारी याद, तुम्हारे होने का एहसास, तुम्हारे मिलन का लम्हा। मोहब्बत के लम्हों को थाम लो, हर खुशी और गम के पल को अपनी मुट्ठी में ख्वाबों की तरह

कई बरसों से खुद को अपनी कोई खबर नहीं, कई बरसों से अपनी ही धुन में रमा है ये दिल, कई बरसों से ख्वाबों की महल बना रहा है दिल, कई बरसों से दिल को सुकून नहीं। एक रोज जब हमने दिल से कहा सुकून का कोना खोज, तसल्ली से बैठो, तो दिल मुस्कुरा उठा। बस उस दिन से सुकून ने पहरा डाला है जिंदगी में।

0: वो आई तो सैकड़ों फूल खिल गए मन की कमली भी। जैसी माझी को मिल जाए किनारा, ऐसी दिया उन्होंने जिंदगी को सहारा। वो मिले उस मोड़ पर जहां था घोर अंधेरा, लेकिन आते ही उनकी जैसे कोई रोशन हुआ हो तारा। जैसे खिल आई हो चांदनी, सैकड़ों फूलों की खुशबू बिखर गई उनके आने से।
1: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत,

0: जब भी उनकी याद आती है महक उठती है फिजाएं, हसीन हो जाती है शाम। याद आता है वो मंजर जब दिल का मामला बयां करने चले थे, याद आते हैं वो लम्हे सामने वो कहने चले थे कुछ और, कह गए कुछ और, उनके सामने बदल गई थी बात। न जाने क्या हुआ कि जुबां से नहीं फूटे अल्फाज, ठगी से रह गए हम, नहीं कह पाए वो जो कहने चले थे।
1: दिल खुश है।

दोस्तों, दुखों को बिसरा जाने की ताकत है प्यार। प्यार की आंच में नफरत सुलग कर नष्ट हो जाती है, लेकिन प्यार में डर सबसे ज्यादा हावी होता है, जो कमजोर बनाता है प्यार करने वालों को।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। हम अपने सुनने वालों को याद दिला दी, कल रात 9:30 पर गजनों का प्रोग्राम नशर किया जाएगा कहकशा। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हम रात्रि 10 बजे रिले करेंगे खेल दर्पण कार्यक्रम।

कल के स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में हमारी प्रातःकालीन सभा में 6:45 पर डॉक्टर आशुतोष राय की वार्ता होगी ईयरफोन के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाली हानियां। सुगम संगीत के प्रोग्राम में सुबह 9:50 पर विभा विश्वास और शाम 7:45 पर कीर्ति चौधरी की गाई भजन और गीत प्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। कुछ ही पलों में प्रसारित होगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का, बस थोड़ी प्रतीक्षा।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रामकृष्ण का राग मारू बिहाग में बजाया क्लेरियोनेट। आपके साथ तबले पर संगति की है सुदर्शन राम ने। तो आइए सुनते हैं राग मारू बिहाग में क्लेरियोनेट वादन, कलाकार पंडित रामकृष्ण।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप पंडित रामकृष्ण का राग मारुभिहाग में क्लेरियोनेट वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगति की सुदर्शन राय ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
1: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
2: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं समाचार, पहले हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में। समाचारों की बस थोड़ी प्रतीक्षा।
4: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देश, 10 साझेदार देश, 4 क्षेत्रीय संगठन और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
6: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
5: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
7: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
5: राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रूपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है।

0: Narendra Modi have extended their greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Modi today attended the Ganesh Chaturthi celebration at the residence of Union Minister Piyush Goyal in New Delhi. The government has approved export of power for 18 hours a day to Nepal Electricity Authority till the 31st of December this year. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi tomorrow. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। इस स्टूडियो की घड़ी में 11:10 और 5 सेकंड हुए हैं। अब आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। सुबह 5:53 पर अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।